सुप्रभात। मीडियम वेव 483.6 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आज शनिवार है। शक संबत 1948 के वैशाख मास की तिथि 26, तदनुसार 16 मई सन 2026। इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:49 होने को हैं और हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ।

0: ये आकाशवाणी पटना है, लीजिए सुनिए चिंतन।
1: मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और चिंता करना उसका प्राकृतिक स्वभाव। चिंता क्या है? वास्तव में चिंता करने का मतलब क्या है? जब कोई विचार निश्चित स्तर से आगे बढ़ जाता है तो उसे चिंता कहते हैं। जब तक कोई विचार आपको तनाव या परेशानी न दे तब तक यह सामान्य है, परंतु जब कोई विचार सीमा से बाहर जाकर वृहद रूप ले ले तो यह चिंता कहलाती है। जब कई बातें हमारे अनुसार नहीं होती या कुछ ऐसी बातें जो हमारे दिल दिमाग पर गहरा असर डालती हैं, तो हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। अगर हम इस पर सकारात्मक सोचे कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो आगे होगा वह भी अच्छा ही होगा, तो हमारे दिमाग में फिर वो बात आएगी ही नहीं। प्रकृति ने मनुष्य को बुद्धिमत्ता प्रदान कर सोचने समझने की शक्ति देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया है। चिंता एक स्वाभाविक मनोदशा है जो व्यक्ति के मन में संभावित संकट की आशंका से भय और तनाव उत्पन्न कर देता है। किसी भी बात पर अधिक सोचने के कारण व्यक्ति दुश्चिंतता का शिकार हो जाता है। मन के चिंतित होने पर स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है जैसे सागर के भीतर आग लगी हो। इसमें न धुआं निकलता है और न ही यह आग किसी को दिखलाई पड़ती है। इसे सिर्फ वही अनुभव कर सकता है जो स्वयं इससे गुजरता होता है, मगर कमजोर इच्छा शक्ति वाले इस आग में जलकर राख हो जाते हैं। कहते भी हैं कि चिंता और चिता एक समान होती है, इसमें मात्र एक बिंदु का फर्क होता है। चिता तो मानव के निर्जीव शरीर को जलाती है, परंतु चिंता

0: मनुष्य को जीवित अवस्था में ही जलाती रहती है। जैसे एक छोटी सी चींटी एक विशाल काय हाथी की नाक में दम कर सकती है, उसकी मौत का कारण बन सकती है, ठीक उसी प्रकार चिंता हमें चिता तक पहुंचा सकती है। रोजमर्रा की भाग दौड़ भरी जिंदगी में चिंता होना एक आम बात है, परंतु यही चिंता यदि आपके मन में घर बना ले तो घातक हो जाती है। हम सभी अपने जीवन में प्रारंभ से ही किसी न किसी रूप में छोटी या बड़ी चिंताओं से जूझते रहते हैं। चिंताओं का अंतहीन सिलसिला जीवन पर्यंत चलता ही रहता है और स्वाभाविक रूप से स्वतः निर्मित होता रहता है। कभी कभार होने वाली चिंता कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन लगातार चिंता में घिरे रहना हमारी शारीरिक स्थिति कमजोर कर स्वास्थ्य को छीन कर देती है। इसका सीधा असर हमारी बुद्धिमत्ता पर पड़ता है, क्योंकि स्वस्थ विचार स्वस्थ शरीर में ही पनपते हैं और विकसित होते हैं। चिंता हमारी चतुराई को घटाकर सकारात्मक सोच को नकारात्मक विचारों में बदल देती है। चिंतित व्यक्ति सदा चिंता के भंवर में ही फंसा रहता है, जो उसकी चतुराई अर्थात बुद्धिमत्ता को और ज्ञान की दृष्टि को अंधा बना देती है, जिससे वह स्वयं की समझने की क्षमता तथा अन्य के दृष्टिकोणों को समझने की क्षमता भी खो देता है, क्योंकि चिंता बुद्धि और विवेक पर हावी हो जाती है। मानव जीवन में अगर चिंताएं अपरिहार्य हैं तो प्रकृति ने उसका निराकरण भी दिया है। जब भी व्यक्ति स्वयं को किसी संकट से या समस्याओं से घिरा पाता है तो दो ही परिस्थितियां उसके सामने होती हैं, या तो वह संघर्ष करे या पलायन कर ले। प्रकृति के समस्त जीव अपने आप को बदल नहीं सकते, परंतु मनुष्य को प्रकृति ने स्वयं को परिवर्तित करने की एक क्षमता प्रदान की है, तो क्यों ना हम अपनी इसी विशेषता से अपनी चिंताओं को चिंतन में बदल दें। चिंता करते रहेंगे तो भटकते ही रहेंगे और चिंतन करेंगे तो भटके हुए लोगों का मार्गदर्शन भी कर सकेंगे, क्योंकि पलायन से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, चिंतन से समस्याओं का समाधान का मार्ग प्रशस्त होता है। चिंतन स्वयं के विचारों और निर्णयों को सही दिशा में विकसित करने की प्रक्रिया है। चिंतन करने से बुद्धि का विकास होता है और यह किसी भी विकट परिस्थितियों में मानसिक असंतुलन को संतुलित कर व्यक्ति को स्वयं को सामान्य और सकारात्मक बनाए रखने में सहायक होता है। किसी एक बात को पकड़कर लगातार उस पर सोचते रहना चिंता है और उसी प्रकरण को सही दिशा में सोचने की प्रक्रिया चिंतन कहलाती है। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसका जंग ही उसे नष्ट कर देता है। इसी तरह व्यक्ति को कोई और नहीं बल्कि उसकी चिंता ही उसे नष्ट कर सकती है। कभी कभी जब परिस्थितियां समझ में न आए तो जो कुछ भी जीवन में घटित होता है उसे शांत चित्त भाव से तटस्थ होकर बस अवलोकन करते रहना चाहिए। समय आने पर परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगे। हमारी समस्या का समाधान तो सिर्फ हमारे पास ही होता है, दूसरे तो हमें सिर्फ सुझाव ही दे सकते हैं। चिंता भटकाव है, चिंतन रास्ता है। चिंता अपने आप में एक संकट है और चिंतन समाधान की कुंजी है। इसलिए चिंता करना छोड़िए, चिंता करके खुद को क्यों जलाना। इस दुनिया में कुछ भी चिंता करने लायक नहीं है, बल्कि वास्तविकता समझें कि कोई भी स्थिति परिस्थिति अस्थाई नहीं होती और जो वर्तमान आपके पास है इसी के साथ जीवन जीना सीखें।
1: आकाशवाणी पटना से अभी आप चिंतन सुन रहे थे और अब सुनिए कार्यक्रम कृषि सूचनाएं।
2: किसान भाइयों नमस्कार। हमारे घरों के आसपास जो भी थोड़ी बहुत खाली जमीन उपलब्ध है उसमें योजनाबद्ध तरीके से आप साग सब्जियां और फल उत्पादन कर सकते हैं और इसे ही किचन गार्डन या पोषण वाटिका गृह वाटिका हम कहते हैं। पोषण से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति जिन फलों से जिन सब्जियों से होती है और जहां पर उनको हम लगाते हैं उसे ही पोषण वाटिका का नाम देते हैं। वैसे तो संतुलित आहार के लिए प्रत्येक सामान्य व्यक्ति को कुछ हरी सब्जियां कुछ फल और कुछ अनाज दूध दही का प्रयोग करना चाहिए, तो ये साग सब्जियां जो हैं और फल जो हैं जो कि छोटे क्षेत्र में हो सकते हैं उन्हें आप अपने पोषण वाटिका में लगा सकते हैं। पोषण वाटिका के कुछ लाभ और कुछ उद्देश्य भी होते हैं। परिवार को पोषण सुरक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को उनकी आवश्यकता अनुसार पसंद इच्छा अनुसार संतुलित भोजन इससे उपलब्ध होता है। फल और सब्जियां विटामिन ए और खनिज लवण के अच्छे स्रोत होते हैं। गृह वाटिका द्वारा हम भोजन में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं। घर के समीप की खाली पड़ी भूमि का सदुपयोग हो पाता है। घर के उपयोग से प्राप्त व्यर्थ जल एवं भोजन अवशेषों का सदुपयोग हो पाता है। वर्ष भर स्वास्थ्य वर्धक गुणवत्ता युक्त सस्ते फल एवं सब्जियों की सुलभता बनी

0: जाती है। रसायन सहित सब्जियों के उत्पादन एवं सेवन को बढ़ावा मिलता है। गृह वाटिका लगाकर महिलाएं परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में अपना योगदान दे सकती हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्वयं उगाई गई सब्जियां बाजार की फल और सब्जियों से अधिक स्वादिष्ट लगती है। अब बात आती है कि गृह वाटिका का निर्माण हम कैसे करें। तो गृह वाटिका हेतु ऐसी जगह का चयन करें जहां पर कम से कम 6 घंटे से अधिक सूर्य की रोशनी प्राप्त हो। जहां तक संभव हो गृह वाटिका का निर्माण घर के नजदीक किया जाए ताकि इसका प्रबंधन भली भांति किया जा सके। गृह वाटिका हेतु ऐसी जगह का चुनाव करें जहां पानी का स्रोत बराबर बना रहे और जहां किसी भी प्रकार छाया का पड़ाव नहीं हो, यानी कि छाया वहां पर न पड़ती हो। गृह वाटिका हेतु चयनित भूमि की मृदा जांच प्रत्येक 3 साल के अंतराल पर भी करानी चाहिए। गृह वाटिका हेतु चयनित भूमि समतल होनी चाहिए क्योंकि ढलवा होने पर पोषक तत्वों के क्षय होने की आशंका होती है। अब बात ये आती है कि इसमें किस किस तरह की सब्जियां लगा सकते हैं। तो खरीफ मौसम वाली सब्जियां जो हैं जून जुलाई के महीने में आप लगावें। इसमें भिंडी, लौकी, करेला, तोरई, बैंगन, टमाटर, ग्वार, लोबिया, मिर्च, अरबी इत्यादि है। रबी मौसम में जो सब्जियां लगाएंगे वो सितंबर अक्टूबर माह में लगाते हैं। इस समय बैंगन, सरसों, मटर, चना, प्याज, लहसुन, आलू, टमाटर, शलजम, फूलगोभी, बंद गोभी आदि सब्जियां होती हैं। गृह वाटिका हेतु जो जमीन की तैयारी होती है वो आप यदि क्षेत्र बड़ा है तो मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें, नहीं तो कुदाल या खुरपी से उसका प्रबंधन आप कर सकते हैं। कंकड़ पत्थर उसमें से हटा दें, गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट का ही प्रयोग करें। मिट्टी भुरभुरी रहती बना लें और उसमें कार्बनिक खाद और जीवांश तत्वों से भरपूर मिट्टी है उसमें ही गृह वाटिका लगाने का आप प्रयास करें और आवश्यकता अनुसार अपने क्षेत्र को छोटी छोटी क्यारियों में बांट लें। प्रत्येक क्यारियों में अलग अलग सब्जियां आप लगावें, जैसे किसी में आपने प्याज लगाया, किसी में लहसुन लगाया, किसी में मटर लगा दिया, किसी में टमाटर लगा दिया, किसी में भिंडी लौकी। तो इससे ये होगा कि आपको जो है हर तरह की सब्जी उपलब्ध हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि कुछ सब्जियां होती हैं जो एक साथ तैयार हो जाती हैं, जैसे कि गोभी है, तो आप एक ही दिन में पूरी क्यारी में गोभी की फसल अपनी नहीं लगावें, बल्कि 2-4 पौधे 2-3 दिनों के अंतराल पर लगावें ताकि लंबे समय तक आपको उससे गोभी की सब्जी मिलती रहे।
1: अभी आपने कृषि सूचनाएं सुनी। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेनसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में 3रा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात UAE की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
3: युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है।

0: धंधा मिला कर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट UG परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनिए संवेद स्वर में देश वंदना।

अभी आप ये देशभक्ति गीत सुन रहे थे। कहते हैं भक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जिसके बल से भक्त भगवान को अपने वश में कर लेता है, लेकिन ऐसी भक्ति शाश्वत प्रेम से ही संभव है, और प्रभु से प्रेम करने का एक माध्यम भजन सुनना भी है।

दीपक के नीचे अंधेरा ही रहता है, उसका प्रकाश दूर पड़ता है। इसी प्रकार साधु महात्माओं को उनके आसपास वाले लोग समझ नहीं सकते, दूर रहने वाले उनके भाव से मुग्ध हो जाते हैं।

कहते हैं प्रभु श्री राम के भजन करने वाले को राम जी का दर्शन अवश्य होते हैं।

इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। लीजिए अब सुनिए रामचरितमानस से पाठ, मुख्य स्वर शिप्रा बोस का है।

विधि के विधान के अनुसार श्री राम तथा जानकी का विवाह शिव के धनुष के अधीन था, जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। किंतु लोकाचार का अपना ही महत्व होता है। प्रत्येक कुल की अपनी मर्यादा तथा परंपरा होती है, जिसका परिपालन ऐसे शुभ अवसरों पर ही होता है। अतः वेदों में वर्णित तथा राज पुरोहितों द्वारा अनुशंसित आचार के लिए राजा जनक ने महाराज दशरथ के पास शुभ संदेश लेकर अपने दूत भेजे। संदेशवाहक पत्र लेकर श्री राम की पवित्र नगरी अयोध्या पहुंचे। पाती बांचते हुए महाराज दशरथ का हृदय पुलकित हुआ और नैनों में आनंद के आंसू छलक आए। जनकपुरी से आए दूतों का समाचार सुन मित्र मंडली के साथ खेलते हुए भरत तथा शत्रुघ्न दौड़े आए। अपने प्राणों से भी प्रिय भाइयों श्री राम तथा लक्ष्मण का कुशल क्षेम जानने के लिए। जब से ऋषि विश्वामित्र के साथ राजा दशरथ के दो पुत्र ऋषि मुनियों की यज्ञ रक्षा के लिए गए थे, तब से आज पहली बार उन दो किशोरों के कुशल क्षेम का समाचार मिला था। दूतों ने धनुष यज्ञ में श्री राम के पराक्रम की कथा सुनाई, जिसे सुनकर सभी गदगद हो गए।

0: आकाशवाणी पटना से अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ, मुख्य स्वर सिप्रा बोस का था। और अब सुनिए हमारे केंद्र से कार्यक्रम स्वास्थ्य सूचनाएं।
1: श्रोताओं नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कमर दर्द और गर्दन दर्द में फिजियोथेरेपी की भूमिका के बारे में। आप सभी जानते हैं स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन और मस्तिष्क का निवास होता है, इसलिए हम सबका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आए दिन हम देखते हैं हम में से कई लोग, हमारे आसपास में हमारे परिजन कमर दर्द या गर्दन दर्द की समस्या से परेशान रहते हैं। तो क्या कारण है, क्या इससे बचाव के उपाय हैं और इसमें फिजियोथेरेपी कैसे कारगर है, इस पर हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम डॉक्टर साहब का कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। हमारे स्टूडियो में हैं आज जाने माने पटना के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रवि प्रकाश। सर कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद अजय साहब।
1: सर जैसा कि हमने बताया कि आज हम बात करने वाले हैं कमर दर्द और गर्दन दर्द के बारे में, और इस दर्द के निवारण में आपकी जो पैथी है यानी फिजियोथेरेपी कैसे कारगर है।
2: देखिए आज कमर दर्द और गर्दन दर्द इतना कॉमन हो गया है, हर चौथा पांचवा आदमी को सर्वाइकल या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, कमर के दर्द को हम लोग लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं और गर्दन दर्द को सर्वाइकल के नाम से जानते हैं। तो सर्वाइकल और लंबर बहुत कॉमन हो गया है ड्यू टू पोस्चर मेंटेन नहीं करने के कारण, दूसरा बहुत ज्यादा देर तक बैठ करके काम करने के कारण, तीसरा सर झुका करके काम करना, लैपटॉप यूज करना, मोबाइल यूज करना, ज्यादा देर तक स्कूटर ड्राइव करना, मोटरसाइकिल ड्राइव करना, कार ड्राइव करना, और उसके बाद जूता चप्पल सही से नहीं पहनना, क्योंकि जूता चप्पल के कारण भी स्पाइन पे बहुत ज्यादा भार पड़ती है, और खाने का सही मात्रा में नहीं होना, क्योंकि आज लोग ज्यादातर फास्ट फूड खाते हैं, तो फास्ट फूड खाने से कैल्शियम का जो और मिनरल्स का जो मात्रा में मिलना चाहिए वो हम लोग को नहीं मिल पाता है। तो ये सारा भार हमारे हड्डी पे पड़ता है, जो सर्वाइकल हड्डी और लंबर हड्डी, उसमें जो नर्व रहती है उस पे भार पड़ती है, इसके कारण सर्वाइकल और लंबर बहुत ज्यादा कॉमन है।
1: जी तो ये तो ही समस्या, ये समस्या आखिर कैसे उत्पन्न होती है, फिर अगर हम इसके निदान की बात करें उपचार कैसे संभव है और फिजियोथेरेपी से।
2: देखिए अगर आपको सर्वाइकल या लंबर हो गया है तो डेट मीन्स कि आपको पेन होने लगता है गर्दन और कमर में
1: जी।
2: तो अगर आपके प्राइमरी कोई डिजीज

0: नहीं है। अब उसके बाद अगर ये दर्द हो रही है तो सिंपल सा जो एक्सरसाइज है, स्टेटिक नेक मसल्स एक्सरसाइज, मतलब कि अपने हाथ को गर्दन के तरफ रख करके गर्दन को उधर ठेलिए 15 से 20 सेकंड, फिर इसके बाद उसके दूसरे साइड में 15 से 20 सेकंड ठेलिए, फिर उसके बाद ऐसा ऐसा बारीक बारीक कर करके 6 बार से लेकर 10 बार तक इधर कर कीजिए और 6 से 10 बार दूसरे तरफ कीजिए, और दोनों हाथ को फिर सर के नीचे पीछे ले जा करके सर को ठेल करके अपने केहुनी को सटाना है। इसको स्टेटिक नेक मसल एक्सरसाइज कहते हैं। फिर दोनों हाथ को अपने केहुनी से शोल्डर पे रख करके राइट घुमाइए 10 बार और लेफ्ट 10 बार घुमाइए। इसको स्टेटिक नेक मसल एक्सरसाइज कहते हैं।
1: जी
0: इसी के लिए कि बहुत बार क्या होता है ना कि हड्डी और जो नस है उसमें ओस्टियोफाइट का फॉर्मेशन होता है, तो कुछ लोग गर्दन को इधर हिलाते हैं इधर हिलाते हैं, तो ऐसा ना करें, ताकि इस करने से जो उधर एक्स्ट्रा मसल्स और बोन का फॉर्मेशन होता है तो स्पाइनल कॉर्ड का वो डिजॉल्व मतलब कि डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसी कारण दूसरा प्रॉब्लम बढ़ सकती है।
1: जी तो सर ये तो हुई कि किस तरीके से कौन से एक्सरसाइज करें हम गर्दन को लेकर के और कमर को लेकर के। सर अगर कमर को विशेष रूप से ध्यान दिया जाए कमर दर्द की समस्या से, और आजकल जाड़े का सीजन चल रहा है और ऐसे में हमारे सोसाइटी में आजकल देखिए कि डायबिटिक होना आम बात हो गया है और कुछ कुछ तो मतलब जेनेटिक बीमारी भी लोगों में है, तो ऐसे में अगर इस तरह के दर्द हो और आप जो बता रहे हैं तो हमारे कई श्रोता हैं जो कि या तो बेहतर समझ नहीं पा रहे होंगे या देख नहीं पा रहे होंगे, तो किसी फिजियोथेरेपिस्ट के मार्गदर्शन में ये करना चाहिए या स्वतः कर लेनी चाहिए?
0: नहीं देखिए, अगर अगर आपके अगल बगल में कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं या सरकारी हॉस्पिटल हैं या
1: जी
0: पीएससी है या आपके कोई बगल में कोई फिजियोथेरेपिस्ट है तो उनके मार्गदर्शन में एक्सरसाइज करें,
1: जी
0: और उनके मार्गदर्शन में कमर के एक्सरसाइज और गर्दन के एक्सरसाइज सीख ले और घर में करें। और इसके साथ साथ अगर आप हीट थेरेपी लेते हैं, अगर गर्म पानी का में डाल करके एक तौलिया को गर्म करके उसमें से कर सकते हैं, या आप शहर में रहते हैं तो एक हीट पैड आता है उसको लेकर के गर्दन में और कमर में सिकाई करने से बहुत ज्यादा आराम मिल सकती है।
1: निश्चित रूप से तो बचाव के लिए आपका सजग रहना बहुत जरूरी है, और एक कुशल चिकित्सक कहें या फिजियोथेरेपिस्ट जिनके मार्गदर्शन में अगर आप ये कुछ नुस्खे जो डॉक्टर साहब बताए एक्सरसाइज करते हैं तो आप कमर दर्द और गर्दन दर्द की समस्या से निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आप हमारे स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने स्वास्थ्य सूचनाएं सुनी। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हालचाल।

7:15 पर हम आपको सुनवाएंगे सूफी संगीत और 7:25 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राम प्रकाश मिश्रा का राग भटियार में ख्याल गायन।

उर्दू कार्यक्रम अंजुमन होगा 9:10 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी सुनिएगा 10 बजे। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 11 बजे से।

बिहार का लोक संगीत ये कार्यक्रम होगा दिन में 12 बजे। महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत आप सुनेंगे 12:30 पर। किसलय ये कार्यक्रम होगा दिन में 1:05 पर। फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे दिन में 1:30 पर और दोपहर 2:30 पर।

2:10 पर रोजगार सूचना प्रसारित की जाएगी। शाम 4:30 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे और मगही कार्यक्रम मागधी का प्रसारण किया जाएगा शाम 5:30 पर।

0: ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम चौपाल होगा शाम 6:30 पर और हमारे किसान भाई खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनेंगे शाम 7:00। शाम 7:52 पर होगा हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा। रात्रि 8:07 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। रात्रि 9:30 पर होगा राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती। और रात्रि 10:00 होगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम जिसमें आप सुनेंगे पंडित केवल्य कुमार गौरव का ख्याल गायन, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। इस समय 7:55 होने को है, 6:55 होने को है। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी संयुक्त अरब अमीरात देशस्य अल्पकालावधिकां यात्रां सम्पूर्य यूरोपदेशैः सह भारतस्य सामरिक आर्थिक सम्बन्धान् प्रगाढतरं कर्तुं पञ्चराष्ट्राणां भ्रमणस्य द्वितीये चरणे गतरात्रौ नीदरलैण्ड देशं प्राप्तवान्। एम्स्टर्डम इति विमानस्थानके डच देशस्य विदेशमन्त्रिणा टॉम बेरेन्सन इत्यनेन श्रीमोदिनः स्वागतं कृतम्। इतः पूर्वं सः आबुधाबीनगरे यूएई देशस्य राष्ट्रपतिना मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान इत्यनेन सह चर्चां कृतवान् आसीत्। डच देशस्य हेग नगरे भारतीय प्रवासिनः सांस्कृतिक संगीत प्रदर्शनैः प्रधानमन्त्रिणः भव्यतया स्वागतं कृतवन्तः। डच सैनिकाः अपि तम् औपचारिक रूपेण अभिनन्दितवन्तः। भ्रमणावधौ प्रधानमन्त्री मोदी डच देशस्य प्रधानमन्त्रिणा रॉब जेट्टन इत्यनेन सह द्विपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति, राष्ट्रप्रमुखाञ्च मिलिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तमस्ति यत् देशवासिनां कृते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अथ ईज ऑफ लिविंग इत्येतयोः परिष्कारे सर्वकारः प्रतिबद्धः अस्तीति। एकस्मिन् सामाजिक प्रसार माध्यमे श्रीमोदी प्रसार संस्थानां प्रतिवेदनं निराकृतवान् यत् जनानामुपरि कथमपि अधिभारम् आरोप्यते इति। सर्वकारेण पेट्रोल निर्याते 3 रूप्यकाणां प्रतिलीटर इति विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कम् आरोपितमस्ति। वित्तमन्त्रालयेन अद्य प्रकाशिते आधिकारिक राजपत्रे उक्तमस्ति यत् अधिसूचनानुगुणं डीजल निर्याते प्रतिलीटरेति परिमितौ विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कं 23 रूप्यकाणां अपेक्षया 16.5 रूप्यकाणि कृत्वा न्यूनीकृतमस्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः कार्यभारग्रहणानन्तरम् अद्य सिक्किमराज्यस्य प्रथमवारं भ्रमणं करिष्यति। स्वयात्रायाम् उपराष्ट्रपतिः गैंगटोक नगरे सिक्किमराज्यस्य राज्यत्वदिवससमारोहे

0: प्रसादं ग्रहीष्यति। राज्यपालः ओम प्रकाश माथुरः, सिक्किम राज्यस्य मुख्यमंत्री प्रेंग सिंह तवांगः, केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इत्यादयोपि उत्सवेस्मिन् भागं ग्रहीष्यन्ति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE इत्ययम् अवदत् यत् ये छात्राः स्वस्य परिणामैः असन्तुष्टाः सन्ति ते संरचित समीक्षा व्यवस्थां प्राप्तुं शक्नुवन्ति, या हि द्विचरणीय समीक्षा प्रक्रिया अस्ति। प्रथमचरणे छात्राः स्वमूल्यांकितानां उत्तरपुस्तिकानां स्कैन इति प्रतिबिम्बितप्रतयः याचयितुं शक्नुवन्ति, एताः अन्तर्जालीय माध्यमेन उपलभ्यन्ते। द्वितीयचरणे छात्राः विसंगतानां प्रश्नोत्तराणां सत्यापनाय आवेदनमपि कर्तुं शक्नुवन्ति, उतोवा अंकन योजनायाः आधारेण विशिष्टानां उत्तराणां पुनर्मूल्यांकनार्थं याचना कर्तुं शक्नुवन्ति। इजराइल लेबनान देशौ वाशिंगटन नगरे संजातायाः वार्तायाः अनन्तरं युद्धविरामस्य पुनः 45 दिवसपर्यन्तस्य विस्ताराय सहमतौ अभवताम् इति अमेरिका देशस्य विदेश विभागः अवदत्। विदेश विभागस्य प्रवक्ता टॉमी पिगोट अवदत् यत् वारद्वयकृत वार्तालापेन फलदायकं युद्धविरामम् आगच्छदति। इतः अनन्तरं जून मासस्य द्वित्री दिनांकयोः आधिक्येन वार्तालापो भविष्यतीति निश्चितमस्ति। IPL क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडांगणे लखनऊ सुपर जायंट्स इति दलेन चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं 7-0 पराजितम्। CSK इत्यनेन प्रदत्तस्य 88.1% धावनांकस्य लक्ष्यम् आतिथीयेन LSG इति दलेन 17 क्षेपणचक्रेषु सम्प्राप्तम्, यत्र केवलं 38 कन्दुकेषु मिचेल मार्शल इत्यस्य 90 धावनांकानां भूमिका निर्णायिका अभवत्। मार्शः उत्तम क्रीडकत्वेन पुरस्कृतः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल रात नीदरलैंड्स पहुंचे। नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने हेमस्टरडम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। हेग में प्रवासी भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। डच सैनिकों ने भी उनका औपचारिक रूप से अभिनंदन किया। यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। ये यूरोप का करीब 60 सबसे बड़ी औद्योगिक और तकनीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का मंच है। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया के साथ मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उनको फ्री ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंटेनमेंट संख्या

0: भारत और संयुक्त अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोलियम के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को ₹23 से घटाकर ₹16.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को ₹33 प्रति लीटर से घटाकर ₹16 कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक में मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हालचाल। श्रोताओं, इसमें सबसे पहले जानेंगे इतिहास में आज का दिन के बारे में। आज के दिन सिक्किम अपना राज्य दिवस मना रहा है क्योंकि 16 मई सन 1975 को यह भारत का 22वां राज्य बना था। और आज है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। यह दिन डेंगू के प्रति जागरूकता फैलाने, इससे बचाव के उपायों को बढ़ावा देने और उपचार की अहमियत बताने के उद्देश्य से मनाया जाता है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस की शुरुआत भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सन 2010 में की गई थी। और आज यानी 16 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सहयोग को मजबूत करना और शांति एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी क्षमता का लाभ उठाना है। प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकियां, शिक्षा, विज्ञान, कला, संस्कृति, सतत विकास, संचार, ऊर्जा और चिकित्सा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह दिन वर्ष 1960 में भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मैमन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की याद में मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस वर्ष 2018 में मनाया गया था। यह दिन प्रकाश के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। जानकारियां श्रोताओं अभी और भी हैं, पहले सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, व्रत त्योहार की बात करें तो आज शनि जयंती और वट सावित्री व्रत का विशेष संयोग है। शनि जयंती के दिन शनि देव का जन्मोत्सव मनाया जाता है और वट सावित्री व्रत में महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करती हैं। यह व्रत सावित्री और सत्यवान की अमर कथा से जुड़ा है। मान्यता है कि सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस छीन लिए थे। बरगद के पेड़ को अमरता का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। इस दिन महिलाएं सुबह स्नान करके निर्जला बिना पानी के व्रत का संकल्प लेती हैं।

इसके साथ ही कार्यक्रम हालचाल का वक्तव्य होता है समाप्त। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, लीजिए अब सुनिए सूफी संगीत।

अभी आप सूफी संगीत सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज सुनिए राम प्रकाश मिश्रा का राग भटियार में ख्याल गायन। विलंबित की रचना एक ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं हे बनबारी, जबकि द्रुत की रचना तीन ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं जागो जागो रे। तबले पर इनकी संगति की है शिवम मिश्रा ने।

0: अभी आप राम प्रकाश मिश्रा का राग भाटियार में ख्याल गायन सुन रहे थे। तबले पर विलंबित की रचना एक ताल में निबद्ध थी, जिसके बोल थे हे बनवारी, जबकि द्रुत की रचना तीन ताल में निबद्ध थी, जिसके बोल थे जागो जागो रे। तबले पर इनकी संगति की थी शिवम मिश्रा ने। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
5: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन।

0: गई। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: और इस गीत के बाद
3: छाया गीत।

0: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है।

0: ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बात हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
5: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है, जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमरीका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज

0: नितिन चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महाआवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
1: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि 2 लाख बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
0: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह सेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोक सत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय।

0: है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है, साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी सुरक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: गोजी फी की जोड़ी से होगा। इस दौरान पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन समेत दीगर भारतीय खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। सिंधु खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की आलमी नंबर 3 खिलाड़ी अकाने यामागुची से 21-19, 18-21, 15 से हार गई है, जबकि मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन को थाईलैंड के कुनलावुत वितित्सर्न से 19-21, 16-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ के एकाना स्टेडियम में मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 188 रन के निशाने का पीछा करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर 4 गेंदों में ये मैच जीत लिया। आज शाम ईडन गार्डन में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी शह से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुत्तहदा अरब इमारात दौरे को शह सुर्खी बनाया है। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के साथ हुई दो तरफा मीटिंग के दौरान कई अहम मुआहदे तय पाए, जिनमें LPG की सप्लाई और 15 अरब डॉलर की सरमायाकारी काबिल जिक्र हैं। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत मगरबी एशिया में अमन के लिए हर मुमकिन तआवुन देने को तैयार है। ब्रिक्स ममालिक ने ग्लोबल साउथ और कसीर कुतबी आलमी निजाम की अहमियत पर जोर दिया। ब्रिक्स ममालिक के उदराय ख्वाजा के इजलास में जारी एक सदारती बयान में ये बात कही गई। इस खबर को रोजामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप ने खसूसी तौर पर शाया किया है। अखबारों ने नीट UG 2026 का इम्तिहान दोबारा 21 जून को कराए जाने की खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग की पीछिंग में हुई मीटिंग में चीन ने मशरक वस्ता में अमन इस्तेकाम के लिए फौरी और जामे जंगबंदी पर जोर दिया। इस खबर को रोजनामा इनकलाब ने नुमाया तौर पर शाया किया है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने बहुत से माहदों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें भारत में पेट्रोलियम और गैस के अहम जखायर कायम करना भी शामिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बैरून मुल्क सफर पर टैक्स आयद करने की मीडिया की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा की आंसर शीट्स को दोबारा जांचने का अमल शुरू करने का ऐलान किया है। इसराइल और लबनान में जंगबंदी में 45 दिन की तौसीह कर दी है। और बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया की जोड़ी से होगा। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: इधर आइए, इधर
5: इधर।
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
6: शुभ वाणी,
5: लाभ वाणी,
6: आकाशवाणी।
7: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल्प।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित मीडिया रिपोर्टों को खारिज किया। राज्य सरकार ने निजी विद्यालयों में पुनर्नामांकन शुल्क लेने पर रोक लगाई। विद्यालयों को सभी प्रकार के शुल्क की जानकारी करनी होगी सार्वजनिक। नेपाल की सर्वोच्च अदालत ने भारत में 100 रूपये से अधिक के सामान की खरीदारी पर भंसार वसूली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का दिया आदेश। और बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर दारोगा तक के 37,978 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज किया। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। शिक्षा विभाग ने निजी विद्यालयों में पुनर्नामांकन शुल्क लेने पर रोक लगा दी है। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर पी राजेंद्र ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि यदि शुल्क वृद्धि अनिवार्य हो तो विद्यालय सुसंगत प्रावधानों के तहत ही ऐसा करेंगे। उन्होंने अन्य प्रतिबंधित शुल्कों पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है। निजी विद्यालयों को सभी प्रकार के शुल्कों का विवरण विद्यालय के सूचना पट और वेबसाइट पर प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। आदेश में कहा गया है कि विद्यालय पाठ्य पुस्तक और यूनिफॉर्म का पैटर्न बार बार नहीं बदलेंगे। आवश्यकता होने पर विद्यालय स्तर पर गठित शिक्षक अभिभावक संघ से इसकी अनुमति लेनी होगी। अभिभावक सुविधा अनुसार किसी भी दुकान से पुस्तकों और पठन पाठन सामग्री खरीद सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि किसी भी छात्र छात्रा को शुल्क बकाया रहने की स्थिति में कक्षा परीक्षा अथवा परिणाम से वंचित नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग अपने कार्यों का रिपोर्ट कार्ड जारी करेगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि इसके तहत विभाग के 100 दिनों के कार्यों की पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। पटना में पत्रकारों से बातचीत में श्री तिवारी ने कहा कि TRE4 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। उन्होंने जनगणना कार्यों के साथ अध्यापन की अनिवार्यता पर विचार करने की भी बात कही। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने अस्पतालों की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए पटना स्थित विभागीय कमांड कंट्रोल सेंटर से वैशाली और अररिया जिला अस्पताल की ऑनलाइन लाइव मॉनिटरिंग की। इसके साथ ही उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर चल रहे इलाज का फीडबैक लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों में आने वाले मरीजों को सुविधाओं की जानकारी नियमित रूप से देने और शिकायत तथा सुझाव के लिए IT आधारित फीडबैक व्यवस्था विकसित करने का अधिकारियों को निर्देश दिया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने संभावित बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए निर्धारित समय से पहले तैयारी करने का अधिकारियों को आदेश दिया है। पटना में जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री ने बाढ़ वाले संवेदन

0: शील क्षेत्रों में कटाव निरोधी कार्यों में तेजी लाने, तटबंधों की सुरक्षा बढ़ाने और बाढ़ सुरक्षात्मक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सुखाड़ वाले इलाकों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने पिछले वर्ष अगस्त सितंबर में चलाए गए राजस्व महाअभियान में प्राप्त सभी आवेदनों के निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने 31 मई तक प्राप्त सभी आवेदनों को वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया। साथ ही श्री जायसवाल ने एग्री स्टैक अभियान को देखते हुए 6,60,000 जमाबंदियों में सुधार करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि किसानों को बिहार कृषि ऐप से हिंदी और अंग्रेजी के साथ ही मगही, भोजपुरी, अंगिका और बज्जिका में भी खेती की जानकारी मिलेगी। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। श्री सिन्हा ने बताया कि ऐप पर इस साल के अंत तक 80 लाख किसानों को पंजीकृत करने का लक्ष्य है। राज्य के सभी सरकारी विभागों में किराए पर चलने वाले डीजल पेट्रोल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया। फैसले को अमल में लाने के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है। राज्य सरकार ने सभी जिलों में नए प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को पटना और नालंदा तथा बिजेंद्र प्रसाद यादव को सारण जिले का प्रभारी बनाया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को पूर्वी चंपारण और शिवहर, जबकि कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा को गया जी और गोपालगंज जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। 20 सूत्रीय जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष सह प्रभारी मंत्री के रूप में संबंधित मंत्री अपने आवंटित जिले में सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की निगरानी करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सुल्तानगंज नगर परिषद के पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की पत्नी को नियमानुसार सरकारी नौकरी दी जाएगी। श्री चौधरी ने कल पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। गौरतलब है कि कृष्ण भूषण कुमार की पिछले दिनों अपराधियों ने कार्यालय कक्ष में गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेपाल की सर्वोच्च अदालत ने भारत में 100 रूपये से अधिक के सामान की खरीदारी पर भंसार वसूली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह रोक इस संबंध में दायर रिट याचिकाओं के अंतिम निपटारे तक जारी रहेगी। नेपाल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हरि प्रसाद भुयाल और टेक प्रसाद की पीठ ने इस आशय का फैसला सुनाया। गौरतलब है कि नेपाल सरकार ने इस वर्ष 14 अप्रैल से 100 रूपये से अधिक के सामान पर अनिवार्य कस्टम ड्यूटी लागू कर दी थी। इसके विरोध में सर्वोच्च अदालत में रिट याचिका दायर की गई थी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: कहाँ चल जाइए? इधर तो
2: इधर आइए, इधर
3: इधर।
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल

0: aiarnews_patna को फॉलो कर सकते हैं। बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर दारोगा तक के 37,978 पदों पर जल्द ही नई नियुक्ति होगी। राज्य सरकार ने बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में इन पदों का सृजन किया है। गृह विभाग के अनुसार सबसे अधिक 27,510 सिपाही और समकक्ष पदों पर बहाली होगी। वहीं दारोगा के 20,937 पद हैं। इनमें से आधे पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे, जबकि 10,468 पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के तहत आर्मी भर्ती कार्यालय दानापुर ने ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की तिथियों की घोषणा कर दी है। परीक्षा पटना और आरा में आयोजित की जाएगी। भर्ती परीक्षा में पटना, बक्सर, गोपालगंज, वैशाली, भोजपुर, सिवान और सारण जिले के लगभग 48,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTE की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से हैं। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पंजाब के अमृतसर स्थित खालसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे बिहार के छात्रों पर आपराधिक तत्वों ने हमला कर दिया। इसमें कई छात्र घायल हुए हैं। घटना को लेकर 300 छात्रों ने पुलिस में लिखित शिकायत की है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व बिहार में अधिकांश स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है। विभाग ने कहा है कि इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ धूल भरी आंधी चलने की भी आशंका है।
1: दिनांक 16 मई राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर आज सुबह मधुबनी और सुपौल जिले में कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई है। और अब एक महत्वपूर्ण सूचना।
2: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
0: प्रदेश में आज श्रद्धा पूर्वक वट सावित्री पूजा की जा रही है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि सुबह से ही महिलाएं वट वृक्ष के पास पहुंचकर पूजा अर्चना कर रही हैं। पटना की NDPS एक्ट की अदालत ने मादक पदार्थ हेरोइन की तस्करी के दोषी अब्दुल करीम, चंदन यादव और प्रवेश कुमार को 13-13 साल कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सिंहासनी गांव से पुलिस ने रुपए दोगुना करने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 95 लाख रुपए के साथ अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। अलीनगर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर के विरुद्ध सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को बांका जिले के पंजवारा से गिरफ्तार किया है। पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल बॉर्डर के मैत्री पुल पर SSP और इमिग्रेशन विभाग की टीम ने एक सोमालियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान मोहम्मद अहमद फराह के रूप में हुई है, जो बिना वैध कागजात के सीमा पार नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। पूर्णिया जिले की मरंगा थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक वाहन से 91 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के बैरगाछी थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक वाहन से 585 लीटर शराब के साथ 1 तस्कर को गिरफ्तार किया। शिवहर की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में 2 दोषियों को उम्र कैद के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां।

0: आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रूपये से अधिक बढ़े। दैनिक जागरण लिखता है, निजी स्कूलों में री एडमिशन शुल्क पर रोक। प्रभात खबर ने लिखा है, नीट यूजी की दोबारा परीक्षा 21 जून को, अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित एग्जाम। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पीएम मोदी की मेगा डील, यूएई से 48,000 करोड़ निवेश, एलपीजी करार भी। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई सीनियर आईएएस अफसर का तबादला। आज अखबार लिखता है, सूबे में अब मध्यमा की भी होगी पूरक परीक्षा। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर करिया अधिभार लगाने से संबंधित मीडिया रिपोर्टों को खारिज किया। राज्य सरकार ने निजी विद्यालयों में पुनर्नामांकन शुल्क लेने पर रोक लगाई। विद्यालयों को सभी प्रकार के शुल्क की जानकारी करनी होगी सार्वजनिक। नेपाल की सर्वोच्च अदालत ने भारत में 100 रूपये से अधिक के सामान की खरीदारी पर भंसार वसूली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का दिया आदेश। और बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर दारोगा तक के 37,978 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अब उपभोक्ता आयोगों में शिकायतों की ई फाइलिंग करना हुआ और भी आसान।
2: घर बैठे ही ई जागृति पोर्टल www.e-jagriti.gov.in पर कहीं से भी खुद से रजिस्टर कर अपना केस दर्ज कर सकते हैं। 5 लाख रुपए तक के मामलों पर कोई शुल्क नहीं।
1: ई जागृति पोर्टल उपभोक्ताओं का अपना डिजिटल मंच। शिकायत दर्ज करें और त्वरित समाधान पाएं।
2: जागो ग्राहक जागो। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में जारी।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: कहाँ चलती है, इधर तो आओ।
5: इधर आइए, इधर।
6: इधर?
5: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
7: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
6: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
7: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
6: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
7: शुभ वाणी,
6: लाभ वाणी,
7: आकाशवाणी।
8: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
9: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी पटना दरभंगा है, पेश है उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

फसल के बाद दोबारा हाजिर हूँ अंजुमन लेकर। सामीन, जिंदगी में अमन सुकून के लिए इंसानों का आपस में मिलजुल कर रहना बेहद जरूरी होता है। मौशे की बात हो या खानदान की, हर जगह अमन सुकून इंसानी जिंदगी को बका बख्शती है। घर व खानदान और मौशे में बाहमी इत्तेफाक से दुश्मनी और नफरत खत्म होती है और मोहब्बत और इज्जत बढ़ती है। मिलजुल कर रहना दिल व जहन को सुकून बख्शता है तो तनाव को भी वो कम करने में बहुत मददगार होता है। सामीन हज़रात, हमारी गुफ्तगू चलती रहेगी, फिलहाल आइए एक खूबसूरत सी गजल से अंजुमन को मुअत्तर करते हैं। समाप्त कीजिए ये गजल।

0: एक बार फिर अंजुमन में आपका खैर मकदम है। सामिन, मिलजुल कर रहने से हम घरों, खानदान, मुआशरे और मुल्क और दुनिया में आई बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी सामना आसानी से कर सकते हैं। इतिहाद से रहना कामयाबी की जमानत देता है और साथ ही ताकत को जाहिर करता है। मिलजुल कर रहने की आदत इंसानों में एक दूसरे के दुख दर्द को समझने और साथ देने के जज्बे को पैदा करती है। हमारी गुफ्तगू चलती रहेगी, फिलहाल वक्त हुआ जाता है सामिन हजरात की आज की खास पेशकश ड्रामा समाप्त किया जाए। आइए रुख करते हैं आज की इस खास पेशकश की जानिब। उन्वान है मिर्जा गालिब की जिंदगी पर मबनी ये फीचर, अजब आजाद मर्द था मिर्जा गालिब। तहरीर अब्दुल समद की और पेशकश कमाल जाफरी की है।
1: के खुशी

पर रहते हैं। महलपुरा और दीवान खाना अलग अलग है। दीवान खाने में सफेद चांदनी का फर्श हो रहा है, सदर में कालीन और दो चार गांव तकिए रखे हैं। एक तरफ करीने से पेचवान रखा है, कालीन के किनारे पर चांदी का पानदान पड़ा है। कमरे में तीन चार पीतल के उगालदान है और एक कोने में बड़ी सी चिलमची धरी है। मिर्जा एक गांव तकिए का सहारा लिए कुछ लिखने में मशगूल है।

0: काली काल की एक किरण कुछ स्टेप से रह गए का जुफिशाई करती है कि लाहौल वलाखुत इसे कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू। हम और ईमानी यकान के दावे अगर हम ईमानदार हैं तो फिर जहन्नुम किस लिए बना है?
1: बेगम साहब याद फरमाती है।
0: आता हूँ मेरा ये खत खत्म कर लो।
1: जल्द चलिए जी। बेगम साहिबा ने फरमाया कि बस गुला हिला।
0: अरे भाई आता हूँ बेजानी बेगम साहिबा को भी मुझसे क्या दुश्मनी है? दो सत्रे लिखी नहीं कि शुरू हो गए उनके हुक्म आने। अब तुम चलो भी, मैं अभी आता हूँ।
1: क्यों पर जल्दी कीजिएगा, बेगम साहिबा के तेवर इस वक्त ठीक नहीं।
0: सुन लिया अभी आता हूँ।
2: बंदो ए वे बंदो, ये तुम कहाँ रह गई? आई बेगम साहिबा।
1: मैंने तुमसे कुछ कहा था जी? मैंने तो कहा से अर्ज कह दिया है। आए नहीं, अभी आ रही बेगम साहिबा, तो खत लिख रहे हैं। फरमाया है कि खत बुरा करूँ फिर आता हूँ।
2: फिर वो भी खत जान ही लोगों मन खतों से, सुबह खत शाम खत सोते खत जाते खत।
0: अरे रे रे रे, ये क्या शोर मचा रखा है? बाबा अजीज है, अकारिब है, दोस्त है, मुरब्बी है, मैं तो किसी गैर को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। फिर ये तो मेरे मेरे अपने हैं। अब किसी के खत का जवाब मुझ पर वाजिब हो तो कैसे चुप लगा जाऊं? कुछ खतों के जवाब लिखने अभी बैठा था कि नाक में दम कर दिया।
1: मैं जानती हूँ जैसे खत आप लिखते हैं, इन खतों में मेरी जिल्लत के क्या क्या सामान आपने नहीं किए। इन खतों में आपने मुझे गले का फंदा, पांव की बेली, मुसीबत, बला सभी कुछ तो कह डाला। अपने शागिर्दों और दोस्तों सबने ही दलील किया है मुझे।
0: ओहो बेगम, ये मेरी बदकिस्मती है कि घर में तुम मुझे नहीं समझती। और खैर छोड़ो, ये बताओ बुलाया किस लिए है?
1: इसलिए कि आज तुम्हें साफ साफ बता दूं कि जिंदगी किन किन मुसीबतों से कट रही है। कि अगर सुबह को मिल गई तो शाम की फिक्र है, और अगर शाम को मिल गई तो सुबह की। इधर उधर से कुछ आ गया तो दो दिन निकल गए, यहाँ तो बारह में खेती की सी बात है। बरस गया तो हरियाणा समय वीरानी और बंजर, कर्ज भी तो अब नहीं मिलता। मिर्जा साहब ये खत है।
0: खत
1: जी, अभी कल ही दारोगा ने दिया है, कहते हैं जरूरी खत है, सरकार हर कारा लाया था।
2: खत खत खत, इन खतों से मैं नाक में दम है।
0: जरा चुप भी करो, खत तो पढ़ लेने दो।
1: बनो ये खत पति से, तो इतना काम कर कि कल्लू को जरा महाजन के पास भेजते कि जाए और 10 रुपए और ले आए। महाजन से कहते कि हम जल्द ही सब चुका देंगे, रामपुर से महल आने ही वाला थी, अभी जाती हूँ।
0: अभी कोस रही थी मेरे आबाओ अजदाद और अपने मुकद्दर को। दिल्ली कॉलेज में फारसी के मीर मुदर्रिस का तकर्रुर होने वाला है। अंग्रेजी हुकूमत के सेक्रेटरी थॉमसन साहब ने मुझे इस नौकरी के लिए बुलाया है।

0: हसरात है, ये मौका अच्छा है, इज्जत आबरू का काम है, घर के घर नहीं मिल रहा है, क्यों बुलाया है?
1: कल ही तो, खैर जाऊंगा, देखिए क्या होता है, लेकिन ये साहब लोग मेरी फजीलत इल्मी क्या जाने।
0: ओह, फिर वही आलाकारी, फिर वही तकब्बुर, खुदा का नाम लीजिए और शुक्र बजा लाइए कि ऐसा मौका नहीं।

0: 내가 피부에 나가니 피부에 있다가 피 후자가 남은 지 슈크바자 나 이기에서 녹아내 시구와
1: 아 슈크바자 나타 후주술 슈크바자 나타 후자세 비 벨레 아프가 얼
0: बाहर
1: बैठक में
0: आपका कोई इंतजार कर रही है?
1: आया ही आया, अभी हाजिर
2: हुआ।
3: दूसरे दिन मिर्जा तामसन साहब से मिलने के लिए चले। राहिश सफाचट, नाजुक बारीक मूछें जिन्हें ताव दे रखा था, बड़ी बड़ी गिलाफी आंखें, सुर्ख सफेद रंग जिसमें चंपई दमक थी, सर पर लंबे लंबे पट्टे, कलमों पर लटके हुए बाल, सर पर एक पल्ले की हल्की सी टोपी जिस पर कशीदे का काम था, बदन पर तंजेब का अंगरखा, सफेद पाजामा और पांव में गुथीली जूती। ये है मुख्तसर से अल्फाज में उनकी तस्वीर,
1: अपने जमाने का काबिल तरीन जौहर, आबाओ अजदाद की शौकत पर नाज करने वाला, खुद को ताब में बर्क और बख्शिश में अब्र कहने वाला तुर्क दादा, खुद पर रोता और रोजगार पर हंसता हुआ खुद को बेचने के लिए घर से निकला। इधर मिर्जा ने पालकी में कदम रखे, उधर बेगम सजदे में गिर गए।
0: इलाही, तू बड़ा कारसाज है, तू ही आबरू रखने वाला है। वो जल्द लौटे और कॉलेज में नौकरी का मुस्टा सुनाए। आमीन।
3: उधर मिर्जा की पालकी थॉमसन साहब के बंगले के सामने रुकी। मिर्जा साहब पालकी में बैठे इंतजार करने लगे कि हस्बे दस्तूर कोई साहब उनके इस्तकबाल को आएंगे, लेकिन काफी वक्त यूं ही गुजर गया। इतने में एक जमादार आया और मिर्जा से कहने लगा,
4: सरकार को कैसा बहादुर से मिलना है?
1: हाँ भाई,
4: साहब अपने कमरे में बैठे हैं, आइए।
1: भाई दस्तूर तो ये है कि साहब लेने को आए, जब वो इस्तकबाल को आएंगे तभी तो उतरूंगा। जाओ उन्हें खबर कर दो।
4: जो हुक्म। लीजिए, साहब खुद ही इधर आ रहे हैं।
1: और मिर्जा साहब, क्या बात है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
4: हुजूर,
1: जब जब मैं आपसे मुलाकात करने आया हूँ, आप इस्तकबाल को खुद तशरीफ लाए। वैसे भी दस्तूर यही है, इसमें क्यों फर्क आए?
5: मिर्जा साहब, पहले जब आप आता था तो वो रस्मी मुलाकात होता था, हम आपका इस्तकबाल करता था, पर आज आप हमारे पास नौकरी के लिए आया है, इसलिए हम तुम्हारा इस्तकबाल करने कैसे आता।
1: जनाब का शुक्रिया। मैं तो मुलाजमत इसलिए करना चाहता था कि इससे मेरे गुरूर वकार में इजाफा होगा, मगर देख रहा हूं कि जो इज्जत पहले थी उसमें भी कमी आ रही है। अगर मुलाजमत के माना मर्तबे में कमी कहें तो ऐसी मुलाजमत को दूर से ही सलाम, हम वापस जाते हैं। खुदा हाफिज। मिर्जा ने कहारों को वापस चलने का हुक्म दिया। पालकी वापस जा रही थी। मिर्जा खुश थे कि उनका जौहर बिकते बिकते बच गया।
6: बंदगी में भी वो आजाद खुद भी है के हम उल्टे फिर आए दरे काबा अगर वाना हुआ।
3: बावजूदे के मिर्जा की आमदनी और मकदूर बहुत कम था, मगर खुददारी और हिफ्ज़े वज़ा को कभी हाथ से ना जाने देते थे। शहर के उमरा और अमायदीन से बराबर की मुलाकात थी। अमायदीन शहर में से जो लोग उनके मकान पर नहीं आते थे, वो खुद भी कभी उनके मकान पर नहीं जाते थे। मिर्जा की खुददारी और खुद एतमादी का एहसास उनके बहुत से अशार में साफ झलकता है।
7: मुझको तैयार गैर में

0: न सताइश की तमन्ना, न सिले की परवाह, न सही गर मेरे अशार में माने न सही।
1: आज मुसा

गए सुनिए है जबान मेरी।

0: शायरी की रविश का अंदाजा इस हिकायत से बखूबी होता है जो मिर्जा की अपनी जबानी सुनी गई है। मीर तकी मीर ने जो मिर्जा के हम वतन थे उनके लड़कपन के अशार सुनकर कहा था कि अगर इस लड़के को कोई कामिल उस्ताद मिल गया और उसने इसको सीधे रास्ते पर डाल दिया तो ये लाजवाब शायर बन जाएगा वरना मुहम्मल बकने लगेगा।
1: और मिर्जा लाजवाब शायर बने। उनके इब्तदाई अशार में फारसियत का रंग चढ़ा हुआ था। इस रंग को छोड़ने के लिए मिर्जा के दोस्तों ने बार बार इसरार किया। मिर्जा की बहुत सी गजलों में अपने दोस्तों के इन एतराजात की तरफ इशारा है।
0: मुश्किल है जिबस कलाम मेरा ऐ दिल, सुन सुन के इसे सुखन वरा बेकाबिल, आसान कहने की करते

नहीं आती नींद चोरा तुझे नहीं आती काबत समूह जागे गालिब शर्म तुमको मगर

0: खाली हाथ जाता हूं। अगर नाप सीधा बख्श दिया गया तो खैर, अगर बास पुरस हुई तो शेर मुकिब है और हाफिया साफिया है। दोज़खे जावेद है और हम है। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के विचार न पाया तो किधर जाएंगे।
1: वही मिर्जा जिनकी शगुफ्ता तबीयत कभी महफिलों की जान हुआ करती थी, जमाने के हाथों कुछ यूं परेशान हुए कि बजुज हसरत मर्द कुछ बाकी न रहा।
0: हो चुकी खालिद बलाए सब तमाम, एक मरते नागहानी और है।
1: 15 फरवरी 1869 ईस्वी को अदब और शेर का ये दरख्शंदा आफ्ताब हमेशा के लिए गुरूब हो गया। उस वक्त मिर्जा की उम्र 73 बरस की थी। मौत से पहले उनकी जबान पर ये शेर था,
0: दबे वापसी बरसरे राह है, अजीजो अब अल्लाह ही अल्लाह है।
1: जमाने ने उनकी वो कदर न की जिसके वो मुस्तहक थे, शायद इसलिए कि मिर्जा अपने जमाने से बहुत आगे थे। वो दरबारदारी और उमरा नवाजी की हुदूद को पार करके एक ऐसे आलम ख्याल में पहुंच गए थे जहां चांद और तारों की हकीकत खुल जाती है, जहां आसमान बेजाए मूर से ज्यादा वक्त नहीं रखता, जहां हस्ती वहम से ज्यादा कुछ नहीं। मिर्जा जमाने की बेकदरी को खातिर में ना लाते थे। वो जानते थे कि उनकी शोहरत मौत के बाद फैलेगी, इसलिए आज जब उनका जिस्म मिट गया है, उनकी रूह शेर का लबादा ओढ़े मौजूद है, उनकी आवाज आज भी हमारे कानों में गूंज रही है।
2: ये लाश बेकफन असदे खस्ता जहां की है।

उर्दू प्रोग्राम अंजुमन अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म झूम बराबर झूम का ये गीत राहत फतेह अली खान और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ों में। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने।

0: हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: गुड न्यूज, इस फिल्म का गीत सुनिए मंज मुसिक के हरवी सहारा और नेहा कक्कर की आवाज़ों में।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: अब आइए सुनते हैं मीत ब्रोस, अल्तमस फरीदी और पलक मुच्छल की आवाजों में फिल्म ड्रीम गर्ल का ये गीत।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: अब आइए शबाब साबरी, दिव्या कुमार और साजिद की आवाजों में सुनते हैं फिल्म दबंग का ये गीत।

कलंक। अब आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं, श्रेया घोषाल की आवाज में। अमिताभ भट्टाचार्य की रचना है, संगीत दिया है प्रीतम ने।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं फिल्म चिकन करीला का ये गीत जगप्रीत बाजवा की आवाज़ में। राजेश मंथन के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है शेखर सिरिन ने।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज सुनिए परमानंद मिश्रा के स्वर में गीत।

0: जीवन साथी आजा परमानंद मिश्रा के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। इस समय दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म द डर्टी पिक्चर का ये गीत सुनिधि चौहान की आवाज में। रजत अरोरा के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है विशाल और शेखर ने।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: फूल और कांटे, इस फिल्म का गीत सुनिए अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में। समीर की रचना है, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: अब सुनिए ऋतिक हरिहरन, उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म हम साथ साथ हैं का ये गीत।

अब आइए लता मंगेशकर को सुनते हैं फिल्म चांदनी में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है शिव हरि ने।

आइए लता मंगेशकर और राम लक्ष्मण को सुनते हैं फिल्म हम आपके हैं कौन में। देव कोहली की रचना है, संगीत दिया है राम लक्ष्मण ने।

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म राम तेरी गंगा मैली में। आइए एक बार फिर से लता मंगेशकर को सुनते हैं फिल्म प्रेम रोग में। संतोष आनंद की रचना है, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

दामिनी इस फिल्म का गीत सुनिए कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में। समीर की रचना है, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, ये अंतराल लेंगे, सुनवाएंगे अगला कार्यक्रम।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में आज कुछ मगही भाषा के लोकगीत सुनिए। सबसे पहले सुनिए रामचरण प्रसाद और साथियों के गाये लोकगीत।

0: रामशरण प्रसाद और साथियों को अभी आपने सुना। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में एक अंतराल लेंगे, सुनवाएंगे कुछ और लोकगीत।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
4: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
5: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
6: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
7: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
6: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
7: तो फिर सही नंबर,
6: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
7: आपने तो बचा लिया दीदी।
6: काम से नहीं।
8: RBI कहता है,
9: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

Tchau!

से छूटे छला साथ ले ले घरवा बेला लपकेला घरवा के ओर हो लपकेला घरवा के ओर अंजोरियाना।

0: खौरी नगेंद्र नारायण सिन्हा के गाए लोक गीतों के साथ ही बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हो रहे हैं। आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: बदलो बदलो आदत बदलो।
5: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
4: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: नारी जगत सुनने वाले सभी बहनों को संजय किशोर का नमस्कार। अक्सर हमें पढ़ाई नौकरी के सिलसिले में कहीं ना कहीं जाना आना पड़ता है और देखिए ना, आज आपके साथ मुखातिब होकर हम खुद ही ये बात कर रहे हैं, यानी मुझे आपके बीच आज आना पड़ा। तो हमें पढ़ाई हो, नौकरी हो या किसी भी सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में भी कई बार दूसरी जगह जाना पड़ता है। ऐसे में हम वहाँ समायोजन और संतुष्टि को लेकर चिंतित रहते हैं। जैसे आपको भी आज लग रहा होगा कि बहनों के साथ हमारी बातचीत हो रही है तो आपको भी अटपटा सा लग रहा होगा कि ये बदलाव है। तो कहना चाहूँगा कि जीवन में बदलाव जो है एक निरंतर प्रक्रिया है और बदलाव अगर सकारात्मक है तो ये बदलाव बहुत अच्छा भी लगता है। तो आप इस बदलाव को इस कार्यक्रम में बहुत ही सकारात्मक रूप से लेंगे, ये मुझे विश्वास है। तो अब हम बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं समायोजन करने की, तो आप भी और मैं भी, आप दोनों यानी मैं और आप समायोजन ही कर रहे हैं कार्यक्रमों के साथ में, और यह आपको शायद अच्छा लग रहा होगा, बेहतर लग रहा होगा और कुछ नहीं तो फिर अलग सा तो लग ही रहा होगा, क्योंकि मुझे भी कुछ अच्छा ही लग रहा है कि इस कार्यक्रम में आपको लेकर मैं आज आपसे बातें कर रहा हूं। तो ये अपनापन ही है जो हमें जोड़ कर रखता है। तो श्रोता हमारे लिए बराबर है, श्रोता किसी भी उम्र वय के हो सकते हैं, बच्चों से लेकर वरिष्ठ जनों तक के हमारे कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि आपका ये कार्यक्रम है और हम आपसे आज जुड़े हैं। तो चिंतित होने से बेहतर है कि हम खुश हों और आशावादी हों, ताकि हम भविष्य में किसी भी प्रकार के बदलाव को समायोजित कर सकें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वहाँ के लोगों से मिलते जुलते हैं, वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के खान पान, त्यौहार और सब कुछ जो स्थानीय लोगों से जुड़े होते हैं, उनसे एक अपना जुड़ाव पैदा करते हैं, यानी हम रुचि लेते हैं उन सब चीजों में जो वहां के स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होती हैं। कला संस्कृति, व्यवहार, खान पान, इसमें सब कुछ आता है। और फिर उसके बाद पड़ोसियों और सहकर्मियों के साथ हम सामंजस्य बैठाते हैं, मिलजुल करते हैं और कुछ ना कुछ पहल करते हैं ताकि हम उनके साथ समायोजन कर सकें। तो समायोजन होने के बाद में जीवन आसान होने लगता है। कैसे? कभी कुछ समस्या हुई तो उनसे चर्चा कर लिए, उनसे मदद ले लिए, या फिर वही आपको पूछ लेंगे कि क्या किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है आपको, और इस तरह हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण बना पाते हैं। और अगर हम

सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो हमें किसी भी जगह में, कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, बहुत अधिक तकलीफ नहीं होती, या यूं कहें कि चीजें आसानी से हम कर पाते हैं। तो अब हम बात कहेंगे कि ये जो समस्या है सकारात्मक सोच की वजह से सुलझ जाती है, तो इसको हम ताले की चाबी मान सकते हैं कि सकारात्मक सोच जो है वो समस्या

की वजह से सुलझ जाती हैं, तो इसको हम ताले की चाबी मान सकते हैं कि सकारात्मक सोच जो है वो समस्या के समाधान की एक कुंजी है। और अगर कुंजी पर ध्यान है तो समस्या यानी ताला अपने आप खुल जाएगा। देखिए, जब कभी भी आप किसी ताले को खोलने का प्रयास करते हैं और आपके पास में चाबियों का एक गुच्छा होता है, तो कई बार बार बार प्रयास करना पड़ता है और सही चाबी तक पहुंचनी होती है। 1, 2, 3, 5, 10 बार में हम उस ताले की चाबी तक पहुंच जाते हैं, यानी वो सही कुंजी हमें मिल जाती है। तो इसको कहते हैं सकारात्मक प्रयास। तो जीवन भी ऐसे ही है कि जब कभी समस्या हो और उसका समाधान न मिले तो हमें उत्तरोत्तर प्रयास करते रहना चाहिए। यानी कि जब तक हम उस ताले या तिजोरी या अलमारी की चाबी तक न पहुंच जाए, हमें अपना प्रयास करते रहना चाहिए। और अब बात आते हैं कुछ भौतिक चीजों के बारे में। तो यदि आपका घर है और आप उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो उचित कुंजी, उचित चाबी आप बहुत ही सुरक्षित रखें, अपने पास रखें, या ऐसे स्थान पर रखें जिसकी जानकारी सिर्फ आपको और आपके परिवार के सदस्यों को हो। यानी कि दरवाजा में ताले अच्छी तरह से लगाएं, घर की तिजोरी को अच्छी तरह से बंद करके रखें, अलमारी को भी बहुत सुरक्षित तरीके से। अक्सर महिलाओं की आदत होती है कि वो चाबी को उसी अलमारी या तिजोरी में लगाकर छोड़ देती हैं, तो इससे आपको कभी न कभी बहुत नुकसान होने की गुंजाइश रहती है। तो ऐसे विकल्प मत छोड़ें ताकि किसी की नजर हो आपकी चाबी पर और फिर आपका धन संपत्ति जो है उसमें हाथ साफ कर लें। क्योंकि मेरे परिवार में एक नहीं, कम से कम ऐसी 3 घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें कि चाबी लटके रहने से पैसे के साथ साथ सोने गहने के जो आभूषण आपके होते हैं वो गायब हो गए हैं। क्योंकि गर्मी का समय है अभी और कई बार सुनसान सड़कें हो जाती हैं, तो ऐसे लोग ताक पे रहते हैं। कई बार दरवाज़ा खोलकर ठंडी हवा के चक्कर में या कूलर के चक्कर में दरवाज़ा वगैरह को ठीक से नहीं लगाते हैं और हम लोग छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे में बाहरी लोगों की नज़र पड़ती है तो वो आपके अलमारी या तिजोरी में हाथ साफ कर सकते हैं। ऐसी घटना हो चुकी है और अक्सर भी होती रहती हैं, आप सुनते भी होंगे, अखबार में पढ़ते भी होंगे या ऐसे समाचार आते भी होंगे। तो इस तरह आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं ताकि आपका स्वास्थ्य, आपका मन और आपकी जो तिजोरी है वो सुरक्षित रहे। तो कुछ और बातें हम करना चाहेंगे आपसे कि ये गर्मी का जो मौसम है, इस मौसम में बहुत अधिक धूप जो है आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं और धूल भरी आंधी जब चलती है तो प्रदूषण भी बहुत फैलता है। तो आप जो है अनुचित रूप से धूप में ना निकलें, ये गुजारिश है आपसे। और एक चीज़ और है कि गर्मी के दिन में लोग देर तक जागते हैं। देर तक जागने से क्या है कि कृत्रिम प्रकाश जो है उसका प्रयोग हम बहुत ज़्यादा करने लगे हैं आजकल। देर तक जागते हैं तो हमारे अहाते में या घर में भी बत्तियाँ बहुत देर तक और चकाचौंध रोशनी वाली हम पसंद करने लगे हैं। ऐसे में जो प्राकृतिक रूप से जो वातावरण निर्मित है हमारे लिए, उसमें एक दखल पड़ता है। देखिए, याद कीजिए आप कि 150 साल पहले लगभग जब बत्तियों का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस समय लोग जल्दी सो जाया करते थे। पशु पक्षी और दूसरे जीव जंतु भी अंधेरे और प्रकाश से संदीपित होते हैं, यानी वो महसूस करते हैं कि सुबह हुई है या फिर शाम हो गई है। तो हम भी सुबह सूरज के साथ उगते, सूरज के साथ जागते रहे हैं और सूरज के डूबने के साथ ही हम भी अपनी दिनचर्या खत्म करके सो जाते रहे हैं। और ये जो है पिछले लाखों साल का अनुभव है, मानव का भी, पशु पक्षियों का भी और आज भी है। लेकिन बत्तियों के आने से उनकी चकाचौंध में हम अपना जीवन चक्र जो है उसको बाधित कर रहे हैं और अपने साथ साथ दूसरे जीव जंतुओं के जीवन चक्र को भी बहुत नकारात्मक रूप से प्रभाव डाल रहे हैं। इसीलिए मुंबई में अभी एक घटना हुई थी कि वहां पर पर्यावरणविदों ने इस LED लाइट जो बहुत आजकल हम लोग भी अपने शहर में देख रहे हैं, पेड़ में लटका देते हैं या किसी चौक चौराहे पर रात भर जलता रहता है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो
उस पर प्रतिबंध लगाने की बात उठी है, क्योंकि उससे जो पशु पक्षी और जीव जंतु हैं वो दिग्भ्रमित हो गए हैं या हो रहे हैं और उनके जीवन में बाधा उत्पन्न हो रही है। जैसे पक्षियों को अंडे देने में कठिनाई हो रही है या उनसे चूजे निकलने में।

समय अधिक लग रहा है या पहले निकल जा रहे हैं। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो हमारे जीवन चक्र को बाधित कर रही हैं। तो इसी वजह से हम कहना चाहेंगे कि जो लाइट है उसका प्रयोग उचित होना चाहिए, अनुचित ढंग से नहीं होना चाहिए, और उसके प्रकाश का महत्व भी हम समझें। जैसे अगर बहुत तेज प्रकाश है तो हमें भी नींद नहीं आएगी, तो हर व्यक्ति आज भी बत्ती बुझाकर ही सोता है या मध्यम प्रकाश में सोता है। तो हमारी त्वचा के साथ साथ हमारा मन मस्तिष्क भी है जो ये उसके प्रति सजग है, यानी लाइट के प्रति। तो इसका भी घर में और बाहर में प्रयोग सोच समझ कर ही करना चाहिए। और हमारी धरती जो है विविधता से भरी धरती है, और हम देखते हैं कि हमारी जो विविधता भरी धरती है इसमें अनेक रंग हैं, पेड़ पौधों से लेकर फूल सुगंध, सबकी अपनी अपनी विशेषता, अपने रंग हैं, अपनी खुशबू है। और हमारे देश में इतना विशाल देश है कि संस्कृति भी बहुत तरह की है। हमारी समुद्र के किनारे रहने वाले जो हमारे लोग हैं उनकी संस्कृति अलग है, पहाड़ों से जो लोग आते हैं उनकी संस्कृति अलग है, मैदानी भागों में रहने वाले लोगों की संस्कृति अलग है। तो इस तरह एक सुंदर मिसाल बनता है हमारा देश, जिसमें कि भौगोलिक रूप से इतनी विविधता होने के साथ सांस्कृतिक विविधताएं भी हैं, और आर्थिक रूप से भी हमारा देश बहुत विविधता वाला है। हर आय वर्ग के लोग हैं यहाँ पे, सामाजिक रूप से भी है, और सबसे बड़ी बात है कि इतनी विविधता होने के बावजूद हम एक रूप में यहाँ रह रहे हैं और भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस संस्कृति को बचाने में आप सबकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृति शिक्षा को बचाने में महिलाओं की जितनी भूमिका है वो पुरुषों के मुकाबले में कहीं अधिक मजबूत और आगे है। तो आज भी वट सावित्री की पूजा है, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं बहुत सज धज कर इस पूजा पाठ और संस्कृति को बहुत अच्छे तरह से वहन करके आगे बढ़ा रही है। तो हमें खुशी है कि हमारे इस मैदानी क्षेत्र में ये पर्व बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है, जो कई और क्षेत्रों में नहीं मनाया जाता, उनके यहाँ दूसरे तरह के त्यौहार हैं। तो इसकी भी बधाई आप सबको कि आप सबकी मनोकामनाएं इसी तरह से पूरी होते रहें और संस्कृति का वाहक बनकर आप इसे मजबूती से और अपने आगे की पीढ़ियों को देते रहें। तो बहुत सारी आपसे आज बातें हुई हैं, और लगेगा आपको भी कि सिर्फ बातें आज करेंगे या कि कुछ गीत संगीत भी होगा, तो ज़रूर होगा। आज शनिवार है और थीम पर आधारित जो गीत संगीत का जो साप्ताहिक कार्यक्रम आपका होता है ये बहुत ही मनोरंजक होता है, और थीम भी काम की थीम होती है। तो अब हम आपको इस थीम आधारित संगीत पर ले चलते हैं, और कहना चाहेंगे कि दुनिया ऐसे लोगों से चल रही है जो सकारात्मक और सृजनात्मक है। अभी तक हम लोगों ने इसी तरह की बात भी की है, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि दुनिया जो है सकारात्मक लोगों से भरी पड़ी हुई है, सृजनात्मक लोगों से भरी पड़ी हुई है। तो उनके प्रयासों से ही समस्याओं का समाधान मिलता है और हम सुख सुविधाओं का उपभोग कर पाते हैं। जीवन का चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कृषि किसानी हो, फिर बीमारियों से बचाव हो, या फिर सुख सुविधाएं हो, ऐसे लोग हमें राहत पहुंचाते हैं, और ऐसे लोगों का आत्मविश्वास जो है वो देखते ही बनता है। तो आज हम ऐसे लोगों के थीम पर ही आपको गाने सुनवाएंगे। तो आज का थीम है हमारा लोग। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं ऐसे संकल्पित लोगों को समर्पित ये गीत।

लोग ऐसे मिल जाते हैं इस दुनिया में जो अपने काम को लेकर बहुत संजीदा हैं, कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो जीवन को लेकर बहुत संजीदा होते हैं, और जाने अनजाने लोगों से मिलना जुलना उनका एक शगल भी होता है। तो ऐसे संजीदा लोग जो हैं वो किसी को भी अपना बना लेते हैं, या अपना बना लेने का उनका जो हुनर है वो औरों से अलग होता है। और जो जीवन में थोड़े संजीदा लोग होते हैं वो चाहकर भी ऐसे लोगों के संपर्क में कहीं ना कहीं कभी न कभी आ ही जाते हैं, और फिर वहां से शुरू होता है एक नया अध्याय, एक नई कहानी। अनजाने लोग कभी कभी टकराते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो एक तीसरी कहानी बनती है जो बहुत ही रोचक, मजेदार और ऐतिहासिक होती है।

कुछ लोग अनजाने भी अपने से लगते हैं, सही बात है। अनजाने लोग कई बार आपको अनायासी जीवन में मिल जाते हैं और फिर उसे आप अपना बना लेते हैं। अक्सर ऐसे लोग किसी उत्सव, त्यौहार या फिर शादी ब्याह या फिर किसी सफर में या पर्यटन स्थल पर मिल जाते हैं।

इन लोगों से आपकी जब बातचीत होती है तो सबसे पहले परिचय का दौर होता है, और फिर चाय पानी भी हो सकता है, कहीं बैठें थोड़ा समय गुजारें, और परिचय के बाद में फिर कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, और तब फिर आपको लगने लगता है कि व्यक्ति हमारे मन का है, सकारात्मक है, अच्छी सोच वाला है, व्यापक सोच रखता है। और इन सब में सबसे जरूरी बात होती है कि आपस में लोग मीठा बोलते हों।

इसी सकारात्मक गीत के साथ हम आपसे विदा चाहेंगे। किसी दिन इस कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी आशा के साथ नमस्कार।

0: श्रोता सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 487.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। एक बजने को है, अब समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
2: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं।
1: सेना प्रमुख की यह टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री की राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां के प्रमुख व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगे। वहां हजारों भारतीय समुदाय के उपस्थित होने की उम्मीद है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री की नीदरलैंड्स यात्रा का एक मुख्य आकर्षण होगा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड्स संबंधों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड्स पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन पर पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था, जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थी, साथ ही गरबा नृत्य भी था। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी से 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एक मुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। ये बटालियन साजो सामान और तैनाती के लिए मानक संघीय प्रोटोकॉल का पालन करेगी, उग्रवाद रोधी अभियानों और सीमा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाके डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा और इसके अंतर्गत राज्य में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना कर्मी मकानों के निर्माण में इस्तेमाल हुई सामग्री और उनमें उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित 33 प्रश्न पूछकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। राजस्थान में लगभग 15 लाख परिवारों ने जानकारी जमा करने का विकल्प चुना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा और तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा

0: में भी दिन भर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 1:05 हो रहे हैं और अब कार्यक्रम है किस लाए। इस कार्यक्रम में आज सुनिए भेंट वार्ता। विषय है युवाओं के स्वास्थ्य का रखें ध्यान। इस विषय पर डॉक्टर अंजलि प्रकाश से बातचीत कर रही हैं अलका प्रियदर्शनी।
2: किसले में आज हमने आमंत्रित किया है जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि प्रकाश को। डॉक्टर अंजलि, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
3: धन्यवाद।
2: डॉक्टर अंजलि से हम बात करेंगे कि किस तरह से किशोरों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। डॉक्टर अंजलि,

प्रोग्राम चलाई हुई हैं एडोलेसेंस हेल्थ को टारगेट करते हुए, यानी कि इन किशोरों के स्वास्थ्य को टारगेट करते हुए। और जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो यहाँ सिर्फ फिजिकल स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही, यानी कि सिर्फ बीमारी या शरीर

0: प्रोग्राम चलाई हुई हैं एडोलेसेंस हेल्थ को टारगेट करते हुए, यानी कि इन किशोरों के स्वास्थ्य को टारगेट करते हुए। और जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो यहाँ सिर्फ फिजिकल स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही, यानी कि सिर्फ बीमारी या शरीर का वजन या न्यूट्रिशन, सिर्फ इसकी बात नहीं होती है। हम फिजिकल हेल्थ के अलावा हम मेंटल हेल्थ की भी बात करते हैं। हम उनको जो आने वाली और तरह तरह की प्रॉब्लम्स है, इमोशनल प्रॉब्लम्स हो गई उनकी, या फिर सेक्सुअल हेल्थ को भी लेके अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी होता है।
1: किशोरों के स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो उसके कई आयाम हैं। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो बढ़ती उम्र में लड़कियों को जब पीरियड शुरू होता है, शारीरिक बनावट संरचना में बदलाव आने लगता है, शरीर बड़ा और भारी होने लगता है, तो उस वक्त खान पान और शारीरिक साफ सफाई का किस तरह से ध्यान रखा जाए?
0: खान पान का तो शुरू से ही देखना है कि न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन दोनों ही खराब है, यानी कि अगर किसी का वजन बहुत कम है या किसी के शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है, चाहे वो वजन कम के फॉर्म में हो या वजन नॉर्मल रहते हुए भी, आप एनीमिया देख लीजिए या अन्य चीज़ों की, कैल्शियम की कमी हो गई, खून की कमी हो गई, इन सारी चीज़ों की कमी हमें देखना है कि ये सारी चीज़ें ना हो। इसके लिए घर पे खान पान जो है वो माता पिता ध्यान रखें। इसके अलावा जो स्क्रीनिंग होती है वो एक होनी चाहिए, मतलब कि स्कूल में जैसे टीचर्स हैं या स्कूल में भी कई बार हेल्थ प्रोग्राम चलाया जाता है तो उसमें ये सारी चीजें देखी जाती हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से आपने सुना होगा कि रतौंधी की प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी सरकारी स्कीम में पहले से चलते आ रहे हैं, जिसमें हम एनीमिया के लिए वीकली टैबलेट दिया करते हैं आंगनवाड़ी के थ्रू, या फिर जो रतौंधी के लिए विटामिन ए का सप्लीमेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें जब किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा है बच्चा, तो ये सारी चीजें स्क्रीन हो जानी चाहिए कि इनमें से कोई दिक्कत तो नहीं है उसे। और इसी का एक दूसरा एस्पेक्ट हो जाता है न्यूट्रिशन का, ओवर न्यूट्रिशन, यानी जिसे हम मोटापा या ओबेसिटी कहते हैं, वो भी आज हमारे युवाओं में बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि जो लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए हैं और जंक फूड का इतना प्रचलन हो गया है इस वजह से। तो न्यूट्रिशन के बारे में समझाना, सिखाना, उन्हें अवेयर करना, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं उनके बारे में बताना, ये ज़रूरी है। जब हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियों में खून की कमी बहुत कॉमन है, और आज अगर हम अपनी एक किशोरी को खून की कमी के बारे में सिखाते हैं और उसकी खून की कमी दूर करते हैं, तो लॉन्ग रन में उससे कल को जो हमारी गर्भवती माताएं हैं उनमें एनीमिया नहीं होगा। तो ये बहुत एक अच्छा समय होता है हेल्थ के लिए अवेयर करने का। साफ सफाई जो जनरल हाइजीन होती है बचपन से ही सिखानी चाहिए एक्चुअली, तो हाइजीन के बारे में किस तरह हमेशा हाथ साफ रखना है, खाने के पहले हाथ धोना, डेली बाथ लेना, ये सारी चीजें। और फिर किशोरावस्था में एक स्किन में चेंजेस जो बहुत कॉमन है जिसको हम एक्ने बोलते हैं, कील मुहासे होना किशोरावस्था में बहुत ही कॉमन है, काफी बच्चों को ये होती है और इसके लिए वो बहुत अवेयर हो जाते हैं, तो इसका भी स्किन को साफ रखिए। आपके बालों में अगर गंदगी नहीं होगी, बालों की गंदगी से भी वो एक्ने जो है बढ़ता है, तो ये सारी चीजें सिखानी होती हैं। महावारी के दौरान जो है कि मतलब आप एक सैनिटरी पैड्स का यूज करना, गंदा कपड़ा नहीं यूज करना, ये सारी चीजें साफ सफाई के अंतर्गत आती हैं जो हमें सिखानी चाहिए।
1: सही शिक्षा देना बच्चों को बहुत जरूरी है। बढ़ती उम्र में अक्सर बच्चे नई चीजों को करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो किसी चीज के प्रति उनका ऐसा रुझान हो जाता है जो अतिरेक में बदल जाता है, चाहे वो टीवी के प्रति हो या कुछ विशेष खाने पीने के प्रति हो, एनर्जी ड्रिंक के प्रति हो या सिगरेट ही क्यों ना हो। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगी, इसको किस तरह से रोका जा सकता है?
0: बिल्कुल, सब्सटेंस अब्यूज, यानी कि जो मतलब किसी भी चीज का गलत प्रयोग है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक आता है एडोलेसेंट हेल्थ में, क्योंकि बच्चे इन्फ्लुएंस बहुत आसानी से होते हैं। उन्होंने किसी को सिगरेट, किसी हीरो को देखा फिल्म में पीते तो उनको लगता है ये बहुत अच्छी चीज है और वो उसको करने लगते हैं बिना ये समझे कि इसके क्या दुष्प्रभाव है। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे कवर किया जाना है। इसके लिए तो सबसे पहले सचेत रहना होगा माता पिता को घर में और स्कूल में शिक्षक को, क्योंकि यही पहले लोग हैं जो इन चीजों के को पकड़ सकते हैं। वो बच्चा कभी भी आके घर में आपको कहेगा नहीं कि मैंने ये चीज किया है, वो हमेशा वो छुप के करेगा, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो तंबाकू हो, किसी भी चीज के फॉर्म में हो सकता है। तो उसके बाद अगर आपका बच्चा दुर्भाग्यपूर्ण इस तरह के गलत रास्ते पे चला गया है, तो इसके लिए डी एडिक्शन प्रोग्राम्स होते हैं जिनके अंतर्गत आप डॉक्टर से मिलके उसको डी एडिक्शन की तरफ ले जा सकते हैं। अगर बात बहुत आगे बढ़ चुकी है तो, अगर बात बहुत आगे नहीं बढ़ी है, बहुत इनिशियल है, तो उसको काउंसलिंग के द्वारा, जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं उसके द्वारा, आप उनको जो है वापस लाया जा सकता है, नॉर्मल फिर से किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। और पहली चीज़ तो सबसे पहले घर में ही ये शिक्षा होनी चाहिए कि

0: ये चीज़ें गलत हैं, इनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। यानी हम जो टीवी पे देख रहे हैं कि कोई एनर्जी ड्रिंक पी के पहाड़ से कूद रहा है दूसरे पहाड़ पे, ये सब चीज़ें गलत है। ये बच्चों को हमेशा सिखाना होगा कि ये जो दिखा रहे हैं टीवी पे, इसका सच से कोई वास्ता नहीं होता है।
1: यानी माता पिता को घर में ऐसा वातावरण रखना चाहिए जिससे बढ़ते बच्चों को सही गलत का भेद पता चले।
0: बिल्कुल, और साथ में ऐसा भी कि अगर बच्चे किसी भी तरह से गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो वो खुल के अपने घर पे बात कर सके। जब बच्चा किशोरावस्था में जा रहा है तो आपको अपना अप्रोच चेंज करना चाहिए। ये मैं माता पिता से खास करके कहना चाहूंगी कि आप एक माता पिता की स्ट्रिक्टनेस को बदल के आप अपने में एक उसके दोस्त की तरह का व्यवहार लाइए, ताकि वो बच्चा अगर कुछ गलत कर रहा है तो वो आपसे बता सके। वरना अगर आप स्ट्रिक्ट ही रहेंगे तो वो कभी आपसे बताएगा नहीं, और आपकी जगह वो जाके अगल बगल किसी से गलत सलाह लेगा और उनकी गलत सलाह में फंसेगा।
1: बिल्कुल सही बात आपने कही। परिवार में जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे पहले उनके अभिभावक और परिजनों का काम है। इसे हम सिर्फ स्कूल के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। दूसरी बात, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ हमें मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। डॉक्टर अंजलि, जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल पढ़ाई और करियर का दबाव बच्चों पर बढ़ते जा रहा है, इसके लिए क्या किया जाए? क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य को बनाने और बिगाड़ने में इसका भी बहुत बड़ा
0: हाथ है। देखते भी हैं कितने कम उम्र में बच्चे आजकल सुसाइड जैसी चीजें कर रहे हैं, जो कि आज से अगर आप 20-25 साल पहले कहिए तो ये चीजें इमेजिनेबल ही नहीं थी कि एक 15 वर्ष का बच्चा सिर्फ इसलिए कि उसे मार्क्स कम आए वो सुसाइड कर ले। लेकिन आजकल ये चीजें बहुत आम हो गई हैं। तो जैसा आपने कहा, पढ़ाई लिखाई का दबाव, हाँ ये बहुत ज्यादा है, और इसमें कहीं ना कहीं गलती अभिभावकों से भी हो रही है, क्योंकि हर कोई एक रेस में लगा है कि इससे ज्यादा नंबर। जबकि इसकी जगह मुझे लगता है बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि पढ़ाई लिखाई आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, वो आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। और उनको ये एग्जाम्पल देना होगा आपको, समाज में ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं जिनकी शुरू की स्कूलिंग उतनी अच्छी नहीं थी, या वो बहुत अच्छे टॉप कॉलेजेस में नहीं पढ़े पर आगे चल के वो बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज बने। तो उनको ये सिखाना होगा कि एक तो आपके आज के मार्क्स से आपकी कल की जिंदगी का फैसला नहीं होता, दूसरे कोई भी चीज जो है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कुछ भी हो, ये सब आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, ये आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। मुझे लगता है कभी भी किसी बच्चे को फोर्स नहीं करना चाहिए। कई बार माता पिता अपने चॉइसेस बच्चे के ऊपर लादते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक 14-15 साल की उम्र, क्योंकि कॉलेज का चयन यूजुअली 15-16 साल की उम्र में ही बच्चे करते हैं, तो उस उम्र तक इतनी परिपक्वता होती है बच्चे में कि उससे अपने रुझान समझ में आते हैं कि मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है और किस में नहीं है, पहली चीज ये। दूसरा, अगर आप उनका परफॉर्मेंस देखेंगे कि कौन सा बच्चा किस विषय में कितने अंक ला रहा है, उससे भी समझ में आता है कि कोई बच्चा कलाकारी में अच्छा है, कोई गणित में अच्छा है, कोई विज्ञान में अच्छा है, कोई हिस्ट्री में अच्छा है। तो इस हिसाब से बच्चे को उनकी रुचि के हिसाब से चुनने देना चाहिए। और उसमें भी अगर कन्फ्यूजन हो तो करियर काउंसलिंग जैसी चीजें भी मौजूद है जिसका आप मदद ले सकते हैं।
1: जी, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी दुनिया विस्तृत होने लगती है, नाते रिश्तेदार परिवार से आगे बढ़कर वो समाज को देखने लगते हैं। बहुत सारी जानकारी बच्चों के पास है, कुछ ऐसी भी जानकारी है जिसको वो इस उम्र में नहीं प्रोसेस कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, लेकिन फिर भी वो उधर ध्यान लगा लेते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिल्म्स हो या वीडियो गेम्स हो। थोड़ा बहुत मनोरंजन तो सही है, लेकिन कभी कभी इसमें कुछ ज़्यादा ही डूब जाते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। भावनात्मक स्वास्थ्य की अगर बात करें तो भावनात्मक रूप से बच्चा किस तरह से सबल हो, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी?
0: जैसा कि आपने ठीक कहा कि आज की दुनिया में ओवर एक्सपोजर है, यानी कि हमारे बच्चे हर चीज़ से एक्सपोज्ड हैं, जो पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। आज एक मोबाइल में ही पूरी दुनिया है, एक मोबाइल ही अगर आपके बच्चे के हाथ में है तो आप फिर उसको कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है। तो एक्सपोजर को तो आप कंट्रोल अब नहीं कर सकते हैं, ये एक सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई है। तो इसमें है कि आप बच्चे को शुरू से एक इमोशनल स्ट्रेंथ, एक चीज होती है EQ, जिसे हम इमोशनल क्वोशेंट कहते हैं, और ये एक बहुत जरूरी चीज है, और इसका जो है माता पिता को बचपन से ध्यान देना चाहिए। आप बचपन से अपने बच्चे को सिखाएं कि अगर तुम टॉप नहीं आ रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर आपका बच्चा हमेशा फर्स्ट आता है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी दिन अगर वो थर्ड या फोर्थ आ गया तो उसके लिए उसको इतना इमोशनली डिस्ट्रॉय नहीं करना है कि वो बच्चा उस चीज को प्रोसेस ना कर पाए। उनको हमेशा अपनी पसंद की हर चीज नहीं मिलनी चाहिए, जैसे कि आजकल हमने देखा है कि आजकल बच्चे मुंह खोलते हैं और माता पिता वो चीज लाके दे देते हैं। उन्हें चीजों की कीमत पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजों से। आप देखिए, आप घर में

0: कि घर में अगर बच्चा कह रहा है कि मैं ये खाऊंगा, तो आज के माता पिता जो है वो वही खिलाते हैं उसको। पहले घर में जो बनता था बच्चे वही खाते थे, तो बच्चों को ये पता था कि हम हर चीज जो चाहेंगे वो हमें नहीं मिलती है, हमें दुनिया के हिसाब से चलना होता है, जो हमारे आज के बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं और जिस वजह से इमोशनल प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हो रही है।
1: जी, ऐसा समाचार पत्रों से पता चलता है कि स्कूल में भी लड़ाई झगड़े की घटनाएं बच्चों के बीच हो रही है। इस हिंसा के तरफ बच्चे का ध्यान नहीं जाए, इसके लिए क्या करना होगा?
0: इसके लिए तो बचपन से बच्चों को जो है मेडिटेशन की आदत डालनी चाहिए, योगा और मेडिटेशन, यानी कि माइंडफुलनेस जो जिसको हम कहते हैं ना, काम माइंड हो, ये चीज़ की प्रैक्टिस करानी चाहिए। और जो आपने कहा हिंसक बिहेवियर, सब्सटेंस अब्यूज़ यानी कि नशीली पदार्थों का सेवन, ये सब आपस में लिंक्ड है। और जो ओवर एक्सपोजर यानी कि ओवर स्क्रीन टाइम हो रहा है, अच्छी बात तो ये होगी कि हम बच्चों को शुरू से ये सिखाएं कि क्या देखना सही है क्या नहीं, पर फिर भी बच्चे गलती करेंगे, उस उम्र में हर बच्चे करते हैं, तो उसके लिए माता-पिता को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि बच्चे आप मोबाइल पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और एक जो बहुत अच्छी बात मैंने कहीं पढ़ी थी जो आज मैं कहना चाहूंगी कि अपने बच्चे को कभी फ्री टाइम मत दीजिए, यानी कि वो फालतू में फ्री बैठा है तभी वो फालतू की चीजें देखेगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा अपने बच्चे को पढ़ाते रहिए, लेकिन उनको पॉजिटिव चीजों में इन्वॉल्व करिए। उनकी कोई अच्छी हॉबीज है, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, कुछ भी हो, उनका अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो आप उसको उसमें लगाइए। तो इन सब चीजों से क्या होगा, बच्चे गलत चीजों की तरफ नहीं जाएंगे।
1: जी
0: ध्यान बहुत जरूरी है, मेडिटेशन तो मेरे ख्याल से बहुत कम उम्र से बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इससे इमोशनल ही नहीं, आप देखिए हर चीज में, बच्चा पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगा पाएगा, बच्चा गलत रास्ते पे नहीं भटकेगा, बच्चे की इमोशनल हेल्थ अच्छी होगी, उसको मेंटल हेल्थ वाली प्रॉब्लम यानी कि डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स और ये सब जो प्रॉब्लम होती है ये नहीं होंगी। तो मेडिटेशन तो बहुत ही अच्छा माध्यम है इन सब चीजों से डील करने का। किशोरों के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस उम्र में आपको ऐसा लगता है कि आपके दोस्त आपके सबसे सगे हैं और आपके माता पिता आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये बहुत ही कॉमन चीज है, पर ऐसा होता नहीं है। माता पिता ने दुनिया देखी है, उनकी बात को सुनिए, समझने की कोशिश करिए। और माता पिता से ये कहना चाहूंगी कि ऐसा आप रिश्ता बनाइए कि वो अपने प्रॉब्लम्स आपसे शेयर कर सके और आप उनका सही मार्गदर्शन कर सके। और अगर बात इससे ज्यादा बिगड़ चुकी है, बात ऐसी है कि अब वो माता पिता के लेवल पे या टीचर के लेवल पे नहीं डील हो रही है, तो हेल्प लेने में कभी भी कोई शर्मिंदगी की बात नहीं होती है। आप किसी भी अच्छे साइकोलॉजिस्ट उनसे काउंसलिंग करवाइए अपने बच्चे की।
1: जी, डॉक्टर अंजलि प्रकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप युवाओं के स्वास्थ्य का रखे ध्यान विषय पर डॉक्टर अंजलि प्रकाश से अलका प्रदर्शनी की बातचीत सुनी। कार्यक्रम किस लय संपन्न हुआ, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। और अब आइए सुनते हैं एक देशभक्ति गीत।

0: से है इज्जत वतन की हमसे है इंसान के हम
1: इधर आइए इधर
2: इधर
1: हाँ विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा ऐसी बात है तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
4: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी
2: लाभवाणी
1: आकाशवाणी।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: अंतराल से पूर्व श्रोता सुन रहे थे देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। दिन के समय आप हमारी पहली सभा के कार्यक्रम सुन रहे हैं और अब आइए सुनते हैं फिल्मी नगमे।

मेहरबान, इस फिल्म से ये गीत सुन पा रहे हैं। गीत की गीतकार माया गोविंद, संगीतकार दिलीप सेन, समीर सेन, और स्वर दिया है अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडिकर ने।

अनुराधा पाटवाल और सुरेश वाडेकर को आपने सुना फिल्म मेहरबा में। माया गोविंद की रचना थी, दिलीप सेन समीर सेन का संगीत, और अब इन्हीं के संगीत में अगला गीत दिलीप ताहिर का है। इस फिल्म बेटा के लिए हम सुन पा रहे हैं, जिसे स्वर दिया है अनुराधा पाटवाल और पंकज उदास ने।

0: फिल्म बेटा में भी आपने अनुराधा पटवाल और पंकज दास को सुना। दिलीप ताहिर की रचना थी, दिलीप सेन समीर सेन का संगीत। एक संदेश सुनवाएंगे, कुछ और गीत।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर।

कुमार शानू और साधना सरगम को आपने सुना फिल्म एक ही भूल में। तबिश रोमानी और सुनील झा के लिखे इस गीत को दिलीप सेन समीर सेन ने संगीतबद्ध किया था। इन्हीं के संगीतबद्ध गीत की रचना गुलशन बाबरा की है, जिसे फिल्म हकीकत से सुनवा रहे हैं। आवाज कुमार शानू और अलका याग्निक की।

बाबुल सुप्रियो और पामेला जैन को आपने सुना, असलम सानी के बोल, दिलीप सेन समीर सेन का संगीत और फिल्म मिशन मुंबई। अगली फिल्म है कर्तव्य। रानी मलिक के बोल हैं, दिलीप सेन समीर सेन का संगीत और आवाज कुमार शानू और अलका याग्निक की।

फिल्म कर्तव्य में अभी आपने कुमार शानू और अलका याग्निक को सुना, रानी मलिक के बोल, दिलीप सेन, समीर सेन का संगीत और इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 600 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में समय दिन के 2 बजने को है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुजफ्फरपुर और किशनगंज जिले में 2 सीमेंट इकाइयां लगाए जाने को स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी देते हुए कहा कि बिहार में औद्योगिक निवेश का नया अध्याय शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड SIPB की 67वीं बैठक में सीमेंट की 2 बड़ी फैक्ट्री स्थापित किए जाने को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्ष पर युद्ध जनित स्थितियों को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री कुशवाहा ने कहा कि दुनिया भर में घटनाक्रम के कारण तेल के दाम बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। श्री कुशवाहा ने कहा कि विपक्ष को अनर्गल बातें ना कर एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी चाहिए। आर्थिक अपराध इकाई ने जमुई के झाझा में पदस्थापित ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार के पटना और जमुई स्थित विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी आय से अधिक संपत्ति मामले में की गई है। जानकारी के अनुसार तलाशी के दौरान ज्ञात आय से 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ है। छापेमारी अभी जारी है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। श्री द्विवेदी ने नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति को सामने रखते हुए यह बात कही है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने का आह्वान किया है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया संदेश में लोगों से सरकार के डेंगू नियंत्रण प्रयासों में बढ़ चढ़ कर सहयोग की अपील भी की है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बनने और वातावरण में नमी के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में प्री मानसून की स्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद समेत प्रदेश के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भागों में अधिकतर स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश की आशंका जताई है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है। और अब एक महत्वपूर्ण सूचना।
2: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
0: प्रदेश में आज वट सावित्री पूजा पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं और सत्यवान सावित्री की कथा सुनती हैं। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि सुबह से ही महिलाएं वट वृक्ष के पास पूजा अर्चना कर रही हैं। रोहतास के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की नियुक्ति के लिए काउंसिलिंग की तिथि जारी कर दी गई है। जिला शिक्षा विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार 20 से 25 मई के बीच सासाराम के फजलगंज स्थित डायट सभागार में काउंसिलिंग की प्रक्रिया होगी। अररिया समेत राज्य के विभिन्न अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों और कैंप विद्यालयों में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी अब 30

मई तक आवेदन कर सकते हैं। रोहतास नगर के सासाराम थाना क्षेत्र अंतर्गत एसपी जैन कॉलेज मोड़ के पास ड्यूटी के दौरान एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से यातायात सिपाही मुकेश कुमार घायल हो गए। डेयरी पशुपालन और मत्स्य संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम ने आज अपने गृह जिला पश्चिम चंपारण का दौरा किया। इस दौरान उत्साहित लोगों ने जगह जगह उनका स्वागत किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: نے آج اپنے آبائی ضلع مغربی چمپارن کا دورہ کیا. اس دوران پرجوش لوگوں نے جگہ جگہ ان کا والہانہ استقبال کیا. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: इधर आइए, इधर
2: इधर.
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए.
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं.
2: अच्छा, ऐसी बात है. तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है.
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें.
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना. हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294. हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042. हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com.
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी.
4: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है. अब रोजगार सूचना सुनिए. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने कांस्टेबल टेक्निकल और कांस्टेबल ट्रेड्समैन के 9175 पदों पर भर्ती के लिए योग्य इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है. उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए. न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम पद के अनुसार 23 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है. आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी. आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा. अंतिम तिथि है 19 मई 2026. इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.crpf.gov.in. पता फिर से बता रहे हैं www.crpf.gov.in. रोजगार सूचना समाप्त हुई.
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर. हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर. नया भारत, नया आकाशवाणी.
1: कहाँ चलती है, इधर तो इधर आइए, इधर
2: इधर.
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए.
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं.
2: अच्छा, ऐसी बात है. तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है.
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें.
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना. हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294. हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042. हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com.
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी.
4: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर. ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है. दिन के समय हमारे स्टूडियो घड़ी में 2:15 होने वाले हैं. थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में दोपहर समाचार प्रसारित होंगे. दोपहर समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए.
6: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। दो हजार 25 में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी ही नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
0: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था।

0: जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थी, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, AI, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
4: इफ यू हर्ड मी अर्लियर,
3: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
2: ज्योग्राफी और हिस्ट्री और
0: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
5: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
6: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई।

0: शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री GUDC और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अरियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड स्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टागन ड्रग्स जब्त की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री KPV ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए AI के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीफ अली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, AI और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। CBSE ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के समय दो

बजकर 30 मिनट हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म देवदास से सुनिए नुसरत बद्र के बोल, स्माइल दरबार का संगीत और आवाज उदित नारायण और श्रेया घोषाल की।

देवदास फल में भी आपने उदित नारायण और श्रेया घोषाल को सुना, नुसरत बद्र की बोल इस्माइल दरबार का संगीत। अगला गीत श्रेया घोषाल और

को सुना, नुसरत बद्र के बोल इस्लामाइल दरबार का संगीत। अगला गीत श्रेया घोषाल और एमजी श्री कुमार के युगल स्वर में है। भूल भुलैया फिल्म से सुनवा रहे हैं, समीर की रचना है, प्रीतम का संगीत।

0: अभी आपने श्रेया घोषाल और पंडित बिरजू महाराज की युगल गीत को सुना। फिल्म बाजीराव मस्तानी से लिया था, सिद्धार्थ गरिमा के बोल और इसे संगीत से सवारा था टब्बी परीख, साहिल प्रदेश और संजीव सेन ने। इस कार्यक्रम में हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल और उसके बाद सुनवाएंगे कुछ और नगमे।
1: कहाँ चलती है, इधर तो
2: इधर आइए, इधर
3: इधर।
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
5: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभवाणी,
2: आकाशवाणी।

0: अतरंगी फिल्म से ये गीत था, इरशाद कामिल के बोल, यार रहमान के संगीत, हरिचरण, शेषाद्री और श्रेया घोषाल को आपने सुना। एक अंतराल के बाद सुनेंगे कुछ और गीत।
1: इधर आइए, इधर
2: इधर।
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभवाणी,
1: आकाशवाणी।

ब्लैक एंड वाइट फिल्म का ये गाना अभी आपने सुना, श्रेया घोषाल की आवाज़, इब्राहिम अश के बोल, सुखविंदर सिंह का संगीत, और इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। अपराह्न के 3 बज रहे हैं, संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। हमारी अगली सभा शाम 4:30 पर आरंभ होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार।

0: कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

आपके मनचाहे गीतों के साथ हाजिर हूँ मैं राजुल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म दा केस गाने से, जिसे पसंद किया है शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा और वाणी वर्मा ने। राजनाथ गांव से नारायण लाल साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, मिलिंद कुमार साहू, कुलवंतिन साहू, नेहा देवी, कुमारी टिकेश्वरी, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू ने। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म दा का ये गाना, साहिल लुधियानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

मोहब्बत से लिपटा ये दिल का अफसाना आपने सुना फिल्म दाग से। और अब मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गाना शंकर हुसैन फिल्म से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। जानिसार अख्तर के बोल और खयाम की संगीत रचना है, सुनना चाहते हैं? रामेश्वर नगर रायपुर से प्रियेश गुप्ता, श्रेयांश गुप्ता और शशांक गुप्ता। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू।

फासलों की खुशबुओं में महकती नज़दीकियों का ये तराना आपने शंकर हुसैन फिल्म से सुना, और अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो पसंद कर रहे हैं करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, हरिपाल कौर और मीनाक्षी तिवारी। सुन रहे हैं फिल्म उलझन का ये गाना किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ों में।

गीत में छुपा गुनगुनाता हुआ ये राज, किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित के स्वरों में आपने सुना। एम जी हशमत के बोल थे और कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म मिस्टर नटवरलाल से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं इस गाने को सुनना चाहते हैं। जूना तार फैल अकोला से राजेश वाघमारे, प्रिया वाघमारे, रोहन और नेहा। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर आनंद बख्शी का लिखा और राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म मिस्टर नटवरलाल का ये गाना।

ये थिरकता हुआ सा गीत मिस्टर नटवालाल फिल्म से सुना। और अब अगला मनचाहा गीत, बड़ी प्यारी सी पसंद चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा की। इसी गाने को सुनना चाहते हैं गांधी चौक रोपड़।

पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर दो चोर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। ये मीठी सी नोकझोंक मजरूह सुल्तानपुरी का गीत बना है और राहुल देव बर्मन का संगीत।

ये मीठी सी नोक झोंक और अब जो गीत आ रहा है वो दिल की हालत बयां करता हुआ सुनते हैं ये गाना जिसे आप सभी श्रोताओं ने पसंद किया है। खकल कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक गुर्जर और सत्यम गुर्जर की फरमाइश है। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख ने पसंद किया है ये गीत फिल्म साजन का। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं। समीर के बोलों को संगीत में सवारा है नदीम श्रवण ने। तो सुनते हैं ये मीठा सा गाना।

0: दिल के सुरीले हाल का ये आपने सुना गीत साजन फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में समीर के बोल नदीम श्रवण का संगीत था और यही गीत बना आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब दीजिए इस कार्यक्रम से राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: चाहे की
2: मन चाहेगी यह है विविध भारती। नाट्य तरंग, आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: हिरण ने तो हमें थका ही डाला।
1: चिंता न करें महाराज, कुछ ही क्षणों में हिरण आपके बाण की परिधि में होगा।
0: रथ को और तेज चलाओ सारथी।
1: महाराज ये धरातल ही कुछ ऊंचा नीचा है, समतल के आते ही हम हिरण को पकड़ लेंगे।
0: हाँ, रास बिल्कुल ढीली छोड़ दो सारथी।
1: ये लीजिए महाराज, आपका शिकार आपके सामने है।
0: अब इस हिरण के प्राण मेरे बाण से बच नहीं सकते।
1: ये आंखें वर्षों से आपके धनुष कौशल की साक्षी रही है महाराज,
0: तो आज एक बार और देखो इस कौशल को। ये
2: नहीं राजन, नहीं, ये आश्रम का हिरण है, इसे मत मारिए। दया कीजिए इस पर राजन, इस पर दया कीजिए।
0: अरे ये कौन लोग हैं?
1: ये आश्रम के तपस्वी हैं महाराज।
0: रथ को रोको सारथी,

0: हिरण का पीछा करते करते हम किसी आश्रम के निकट आ गए हैं।
1: हाँ राजन, तपोवन की शांत भूमि पर धनुष पर चढ़ा हुआ ये बाण शोभा नहीं देता।
2: आपके शस्त्र तो दुखियों के दुख दूर करने के लिए हैं राजन, निरपराधों को मारने के लिए नहीं।
1: उस निर्दोष हिरण के प्राणों का पीछा छोड़ दीजिए राजन।
0: तपस्वियों का आदेश शिरोधार्य है, लीजिए मैंने अपना बाण लौटा लिया।
2: पुरु वंश में उत्पन्न आप जैसे श्रेष्ठ राजा के लिए यही उचित है।
1: ईश्वर करे आपको अपनी ही तरह गुणवान, प्रतापी और चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
0: आशीर्वचनों की वर्षा करने वाले मुनि कुमारों का परिचय जान सकता हूँ?
1: हम कुलपति कर्ण के शिष्य हैं राजन, मेरा नाम शारंग्रव है।
2: और मैं हूँ शारद्वत।
0: महर्षि कर्ण के शिष्य हैं आप लोग?
1: हाँ राजन, मालिनी नदी के तट के समीप ही उनका आश्रम है।
2: यदि आप लौटने की जल्दी में ना हो तो वहां पधारकर आतिथ्य स्वीकार करें राजन।
0: अवश्य, कुलपति कर्ण के दर्शनों के सौभाग्य से कौन वंचित रहना चाहेगा।
1: कुलपति तो अभी आश्रम में नहीं है राजन, किसी काम से बाहर गए हुए हैं।
0: फिर?
2: किंतु आपके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी।
1: हाँ, इस दायित्व के निर्वाह के लिए वहाँ शकुंतला उपस्थित है।
0: शकुंतला?
2: हमारे कुलपति की कन्या है राजन।
0: कुलपति कब लौटेंगे?
1: उनका लौटना तो निश्चित नहीं है।
2: किंतु आप संकोच ना करें, सारा आश्रम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा।
1: आप आश्रम में पधारे राजन, हम अभी समिधा लेकर उपस्थित होते हैं।
0: ठीक है, इस पुनीत आश्रम में कुछ क्षण विश्राम कर हम भी अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहेंगे।
2: हम कृतज्ञ हैं राजन।

0: कितना सुंदर, कितना अलौकिक दृश्य है। वृक्षों के नीचे निश्चिंत पक्षियों की ये मनोहारी क्रीड़ाएं, निर्भय हरिण शावकों का ये सहज विहार, मन में शांति का संचार करने वाली हवन की ये पवित्र सुगंध, नवीन पल्लवों की ये आकर्षक लालिमा। सारथी, रथ को यहीं रोक दो, हम यहां से पैदल ही जाएंगे।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: सारथी, तपोवन की इस पवित्र भूमि में ये धनुष और ये आभूषण बोझ से लग रहे हैं, यहां हमें विनीत भाव से ही जाना चाहिए। लो, इन्हें संभालो।
1: लाइए लाइए महाराज।
0: मैं आश्रम वासियों के दर्शन कर अभी आता हूं, तब तक तुम अपने घोड़ों को विश्राम करा लो।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: अरे, ये मेरी दाहिनी भुजा क्यों भड़क रही है, वो भी आश्रम जैसे शांत स्थान में? यहां इस संकेत का क्या अर्थ हो सकता है? विधाता भी न जाने कैसे कैसे विचित्र खेल दिखाता है। अरे, ये मधुर स्वर लहरियां कहां से आ रही हैं? चलो उस वाटिका की ओर चलकर देखूं। क्या रूप, क्या सौंदर्य है। आश्रम बालाओं के इस लावण्य के सामने बहलों की महक तो कुछ भी नहीं। वन लताओं का यह अनूठा आकर्षण बड़े से बड़े उपवन में भी कहां दिखाई देता है। कुछ देर यहीं छुपकर इस रूप राशि को निहारना अनुचित ना होगा।
2: प्रियंवदा, इस वाटिका के वृक्षों को तो हमने सींच लिया, चलो चलो अब उधर की लताओं की प्यास बुझाएं।
3: ऐसी भी क्या

0: समझी?
1: मैं तो कुछ और ही समझी हूँ।
0: क्या समझी है तू?
1: यही कि पिता कण्व तुझसे भी अधिक इन पेड़ पौधों को चाहते हैं।
0: वो कैसे?
1: तभी तो तुझ जैसी कोमल कन्या से इनकी सेवा करवा रहे हैं।
2: सचमुच कुलपति कण्व कितने विवेकहीन हैं। ऐसे सुकोमल स्वाभाविक सौंदर्य से ऐसी कठोर तपस्या। शमी के वृक्ष को काटने का काम कमल के पत्ते से।
0: अरे अनुसुईया, ओह सरा इस कंचुकी को ढीली तो कर दे, बहुत कस कर बांधी है इस प्रियंवदा ने।
1: ए, मुझे क्यों दोष दे रही है?
0: क्यों, तेरा दोष नहीं है क्या?
1: दोष न मेरा है न इस बेचारी कंचुकी का, दोष तो तेरे यौवन का है।
2: सच ही तो कह रही है प्रियंवदा, नए पल्लव की लालिमा लिए हुए आकर्षक अधर, सुंदर शाखाओं से सजी सुकोमल बाहें, पूर्ण पके हुए फल की गरिमा से युक्त उन्मत्त अंग अंग में समाया हुआ यौवन।
0: प्रियंवदा, एक अच्छी बात कहूँ?
1: तेरे मुंह से तो बुरी से बुरी बात भी अच्छी लगती है रे।
0: परिहास ना कर।
1: अच्छा नहीं करती, बता।
0: देख वो सामने देख, कलियों से लदी माधवी लता कितनी जल्दी पड़ी हो गई। नहीं,
1: तेरी तरह
0: फिर परिहास।
1: अच्छा नहीं करती परिहास। अब मैं भी एक अच्छी बात बताऊं?
0: हाँ बता।
1: जल्दी ही तेरा विवाह होने वाला है।
0: थत, तेरा तो सिर घूम गया है।
1: सच, मैंने अपने कानों से सुना है।
0: अच्छा,
1: पिता कण्व कह रहे थे कि माधवी लता का मुकुलित होना तेरे लिए मंगलकारी है।
3: अच्छा, तभी इतना ध्यान रखा जा रहा है माधवी लता का।
0: क्यों ना रखूं ध्यान, मेरी बहन जो है।
4: ये भौरा कहाँ से आ गया?
0: अरे भगाओ ना इसे, तुम लोग हंस रही हो, भगाओ ना इसे। अरे अरे मेरा पीछा छोड़, भाग, अरे भाग ना, भगाओ ना इसे। क्या
1: हम लोग तुम्हारी रक्षा करने वाली कौन होती है?
3: इसके लिए तो राजा दुष्यंत का नाम लो।
1: हाँ, वही रक्षा कर सकते हैं तुम्हारी।
0: अरे बचाओ, बचाओ ना।
2: अब मुझे सामने आ ही जाना चाहिए।
5: पृथ्वी पर पुरवंशी राजा का शासन चलते शांत सरल तपस्वी बालाओं को कौन भयभीत कर रहा है?
1: भय का कोई कारण नहीं आर्य, हमारी सखी शकुंतला को एक दुष्ट भ्रमर दुखी कर रहा था।
3: आपके आते ही भाग भी गया।
1: आप खड़े क्यों हैं आर्य? विराजिए ना।
3: मैं अभी कुटिया से आपके लिए फल।
5: नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, आतिथ्य सत्कार के रूप में आपके मीठे मीठे वचन ही पर्याप्त हैं।
1: सप्तपर्ण की इस वेदी पर कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए आर्य,
3: इसकी घनी छाया आपकी सारी थकान हर लेगी।
5: आप लोग भी तो वृक्षों को सींचते सींचते थक गई होंगी, बैठे ना आप लोग भी।
0: ना तुम लोग बैठो, मैं भी।
1: अब बैठ भी जा।
0: इन्हें देखते ही मेरे मन में आश्रम विरुद्ध विचार क्यों प्रबल हो रहे हैं? और ये मेरे मन को क्या हो रहा है?
1: हम लोग अपनी अतिथि के बारे में जानने को उत्सुक हैं आर्य।
3: किस राजर्षि के वंश को अलंकृत कर रहे हैं आप?
5: मैं अब क्या बताऊं इन्हें, मैं महाराज दुष्यंत का एक धर्माधिकारी हूँ, पवित्र आश्रमों को देखते देखते इस तपोवन में आ पहुंचा हूँ।
1: आज यदि पिता कण्व यहाँ होते तो आपका सत्कार कुछ और ही ढंग से होता।
5: और ही ढंग से?
3: हाँ आर्य, अपने जीवन का सर्वस्व सौंप कर वे आपको कृतार्थ कर देते। क्यों शकुंतला,
0: तुम लोग चुप नहीं रह सकती क्या?
5: आपकी सखी का परिचय जान सकता हूँ?
1: क्यों नहीं, इसका नाम है शकुंतला।
3: बहुत मीठा है इसका गला,
1: करती रहती है सबका भला,
3: इसने आज तक किसी को नहीं छला।
1: जितनी सुंदर है उतनी ही संकोची है,
3: कुलपति कण्व की सबसे लाडली बिटिया है।
5: किंतु कुलपति कण्व तो शाश्वत ब्रह्मचारी हैं।
1: आपका आश्चर्य अस्वाभाविक नहीं है आर्य, वैसे तो इसके पिता राजर्षि कौशिक हैं, किंतु उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर पिता कण्व ने इसका पालन पोषण किया है।
5: त्याग दिए जाने पर? मैं कुछ समझा नहीं।
3: मैं बताती हूँ आर्य, बहुत दिन हुए जब राजर्षि कौशिक अपनी

0: रम तपस्या में लीन थे तो देवताओं को अपना आसन डोलता हुआ दिखाई देने लगा।
1: फिर
0: क्या, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए वसंत ऋतु के रमणीय समय में उन्होंने एक अप्सरा को वहां भेज दिया। मेनका के उस मादक रूप को देखकर
1: अब समझा इस अलौकिक सौंदर्य का रहस्य। किंतु
0: क्या आर्य?
1: कुछ नहीं, यूं ही विधि की विडंबना के बारे में सोच रहा था। अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद भी आपकी सखी को तपस्विनी के धर्म का पालन करना पड़ रहा है।
0: ये तो कुछ ही समय का अनुष्ठान है आर्य। पिता कण्व तो इसे किसी उपयुक्त वर को सौंपने की कामना रखते हैं।
2: अब मैं जाती हूँ और आर्या गौतमी से कहूंगी तुम्हारी इन ऊटपटांग बातों के बारे में।
0: अतिथि का सत्कार किए बिना ही चली जाओगी?
3: चली कैसे जाओगी, हमारे दो वृक्षों को सींचने का ऋण कौन चुकाएगा?
1: वृक्षों को सींचने का ऋण?
0: हाँ आर्य, हम प्रतिदिन 10-10 वृक्षों को सींचती हैं, किंतु कल इस कोमलांगी ने 8 ही वृक्षों को पानी दिया था।
3: इसके शेष 2 वृक्षों की सेवा हमने की थी, उसके ऋण की बात है आर्य।
1: ठीक है, मैं चुका देता हूँ इनका ऋण।
0: आप
1: ये लीजिए
0: अंगूठी। किंतु इस पर तो राजा दुष्यंत का नाम अंकित है।
3: आपके पास ये अंगूठी?
1: ये अंगूठी मुझे महाराज ने दान में दी थी।
0: तब तो इस अंगूठी को आप ही के पास होना चाहिए।
3: आपको ऋण मुक्त करने के लिए तो आपका कहना ही पर्याप्त है।
1: मैं आभारी हूँ।
4: लगता है मेरी खोज में निकले सैनिक तपोवन में घुस आए हैं।
0: हे भगवान, अब क्या होगा?
5: सावधान, वन के जीव जंतुओं के कान के रूप में एक उच्चृंखल हाथी भी उत्पात मचाता आ रहा है। सावधान, सावधान।
6: चलो चलो चलो, उस हाथी के यहाँ आने से पहले ही कुटिया में लौट चले।
0: हाँ हाँ चलो, आर्या गौतमी भी चिंतित हो रही होंगी।
1: आप लोग निश्चिंत होकर जाए, मेरे रहते आश्रम वासियों को कोई कष्ट नहीं होगा। मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है।
0: चलो शकुंतला।
2: चलो
1: चलो, मैं भी सैनिकों को देखूं। किंतु किंतु मेरा मन मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा? शकुंतला की छवि को निहारते निहारते यहीं स्थिर होकर रह गया है। चलो तन से ही चलो, इस संकट का समाधान तो करना ही होगा।

0: हे भगवान, मैं तो दुखी हो गया इस जीवन से। न दिन को चैन न रात को नींद, बस घूमना घूमना और घूमना। दिन भर तीखी तेज दोपहरी में मारे मारे फिरो। प्यास लगने पर पहाड़ी नदियों का सड़ा हुआ पानी पियो। भूख लगे तो जाने अनजाने पशुओं का पका अनपका मांस खाओ। भगवान, अगले जन्म में मुझे कुछ भी बना देना। गधा, घोड़ा, बैल, मक्खी, मच्छर, कुछ भी बना देना, किंतु किसी शिकारी राजा का मित्र मत बनाना। और अब तो करेले पर नीम भी चढ़ गया है। शिकार करते करते राजा स्वयं शिकार हो गया है। अब उसके प्रेमी रूप को भी झेलना पड़ेगा।
1: माधव्य,
0: लो, नाम लेते ही प्रकट भी हो गए। चलो मित्र माधव्य, फिर किसी नए जंगल में भटकने के लिए तैयार हो जाओ।
1: माधव्य, अरे इस तरह मुंह क्यों लटका कर बैठे हो?
0: वाह, क्या भंगिमा है! आंखें फोड़कर पूछा जा रहा है कि आंसू क्यों बह रहे हैं।
1: ये तुम क्या कह रहे हो माधव्य?
0: तुम कैसे समझोगे? अच्छा भला राजकार्य और वैभव विलास छोड़कर बहेलिया जो बन गए हो।
1: हाँ माधव्य, बहेलिए का ये रूप तो अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा।
0: भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे।
1: शिकार के लिए जंगल जंगल भटकते भटकते मैं भी थक गया हूं माधव्य। अब तो कुछ समय के लिए यहीं इसी पवित्र तपोवन में विश्राम करना चाहता हूं।
0: भगवान तुम्हें और लंबी आयु प्रदान करे।
1: अब तो प्रसन्न हो माधव्य?
0: अंधे को दो आंखों के अतिरिक्त और क्या चाहिए महाराज?
1: किंतु माधव्य,

0: तुम तो आंखें रहते हुए भी अंधे हो।
1: है? वो कैसे?
0: दो बड़ी बड़ी आंखों के रहते हुए भी सबसे अधिक दर्शनीय वस्तुओं को देखने से वंचित जो हो।
1: आपको देख तो रहा हूं।
0: मैं अपनी नहीं, इस आश्रम के अलंकार की बात कर रहा हूं।
1: आश्रम का अलंकार?
0: हाँ, शकुंतला है उसका नाम।
1: किंतु वो तो तपस्वी कन्या है, उसको देखने से क्या लाभ?
0: माधव्य, पूर्णिमा के चंद्रमा को निर्निमेष क्या किसी लाभ के लिए ही देखा जाता है? और एक विशेष बात तो तुम जानते ही नहीं।
1: विशेष बात?
0: हाँ, शकुंतला तपस्वी बाला है अवश्य, किंतु उसका जन्म एक अप्सरा की कोख से हुआ है।
1: अप्सरा की कोख से? और आश्रम में?
0: उसकी भी एक कथा है माधव।
2: महाराज की जय हो। दो तपस्वी कुमार आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज।
0: उन्हें तुरंत यहां भेज दो।
2: जो आज्ञा महाराज।
3: महाराज की जय हो।
0: हमारा प्रणाम स्वीकार करें मुनिजन।
4: हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं महाराज।
0: मैं आपका आदेश सुनने को उत्सुक हूं मुनिजन।
4: आप तो जानते ही हैं आर्य कि कुलपति कण्व इस समय यहाँ नहीं है। उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर राक्षस हमारे यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं यार। अब आप ही इस आश्रम को आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं आर्य।
0: आप लोग चिंता ना करें। रेवतक,
2: आज्ञा महाराज।
0: सारथी से कहो कि धनुष बाण सहित रथ को यहाँ ले आए।
2: जो आज्ञा महाराज।
0: आप लोग निश्चिंत होकर पधारें, मैं अभी आता हूं।
4: आर्य की जय हो।
2: महाराज की जय हो। राजधानी से एक दूत आया है महाराज।
0: राजधानी से? वहां सब कुशल तो है?
2: वहां सब कुशल मंगल है महाराज। माता ने आपके नाम एक संदेश भिजवाया है।
0: माता ने भिजवाया है? उसे तुरंत यहां भेजो रेवतक।
2: जो आज्ञा महाराज।
0: माता का संदेश?
5: महाराज की जय हो।
0: क्या आदेश है माता का?
5: आज से 4 दिन बाद पुत्र पिंड पालन नाम का उपवास होना है महाराज। माता उस दिन आपकी उपस्थिति की आशा रखती है महाराज।
0: इधर तपस्वियों की सुरक्षा की समस्या है और उधर माता की आज्ञा। क्या करूं, कैसे जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता माधव्य।
4: बात तो सचमुच दुविधा की है मित्र।
0: एक काम हो सकता है माधव्य।
1: मैं यहां राक्षसों से तपस्वियों की रक्षा करूं?
0: नहीं माधव्य, ये काम तो मुझे ही करना है। मैं तो ये चाह रहा था कि मेरे स्थान पर तुम राजधानी लौट जाओ।
4: मैं तुम्हारे स्थान पर?
0: राजा के स्थान पर नहीं, बेटे के स्थान पर। तुम्हें भी माता ने बेटे के समान ही माना है। उन्हें यहां की व्यवस्थाओं के बारे में समझा कर तुम ही पुत्र के दायित्व पूरे कर देना।
4: ठीक है महाराज, दुष्यंत के छोटे भाई के रूप में जाने में तो सुख ही सुख है।
0: और हाँ, इन सब सेवकों को भी अपने साथ ही ले जाओ। यहां तपोवन में इनकी कोई आवश्यकता नहीं।
4: वाह, अब तो ठाट से लौटूंगा युवराज बनकर।
0: एक बात का ध्यान अवश्य रखेगा युवराज।
4: कहिए महाराज।
0: यही कि मैं यहाँ तपस्वियों की सेवा के लिए ही रुका हुआ हूँ, समझे? शकुंतला वाली बात तो मैंने यूं ही मन बहलाने के लिए कह दी थी, उसे सच न समझ लेना।
4: ठीक है, जब तुम झूठ बतला रहे हो तो मैं सच क्यों मानने लगा?
0: मुझे तुमसे यही आशा थी मित्र। जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो। मैं भी तपोवन को राक्षसों से मुक्त कराते ही पहुंच जाऊंगा।
4: जो आज्ञा महाराज।
0: जाओ युवराज।

0: कितनी प्यारी पवन चल रही है, अब तो कुछ आराम मिल रहा होगा शकुंतला।
1: क्या कह रही हो अनसुया?
2: प्रियंवता, मुझे तो स्थिति कुछ गंभीर दिखाई देती है।
0: हाँ अनसुया, मुझे भी यही चिंता है। जब से उस राजर्षि के दर्शन हुए हैं, तब से
2: तेरी आशंका बिल्कुल ठीक है प्रियंवता, तभी से इसकी ये दशा हो गई है।

0: ए, इसी से पूछकर देखे।
1: हाँ
0: यही उचित रहेगा।
1: शकुंतला, एक बात पूछूं?
2: पूछो, क्या पूछना चाहती हो?
1: अपनी अस्वस्थता का कारण तुम स्वयं जानती हो?
2: कारण तो जानती हूँ प्रेमवदा, किंतु उपचार नहीं।
1: उपचार है क्यों नहीं? तुम बताओ तो, इस तरह दिन रात घुलते रहने से तो उपचार नहीं होगा।
2: जानकर भी क्या करोगी सखी, कष्ट ही होगा तुम लोगों को।
1: अपने लोगों में दुख बांटने से सहना सरल हो जाता है शकुंतला।
3: हाँ शकुंतला, संभव है हम कुछ सहायता कर सकें।
2: सखी, आश्रम की रक्षा करने वाले वो राजर्षि जब से इन आंखों में समाए हैं तभी से
3: हमारा अनुमान सही है प्रियंवदा।
2: उनकी कृपा ही मेरे शरीर में प्राणों का संचार कर सकती है।
1: तुम्हारी कामना तुम्हारे गौरव के अनुरूप ही है शकुंतला।
3: समुद्र को छोड़कर महानदी और कहाँ मिल सकती है?
2: मिलन की कामना तो प्रबलतम होती जा रही है सखी, किंतु कुछ उपाय नहीं सोचता।
1: इसकी दशा तो सचमुच बहुत गंभीर है अनुसुया।
3: हाँ प्रियंवदा, कुछ न कुछ उपाय तो सोचना ही होगा।
1: हाँ, किसी न किसी गुप्त रीति से इसकी अभिलाषा को शीघ्र पूरा करना होगा।
3: गुप्त रीति ही कुछ कठिन है प्रियंवदा, शीघ्र तो बहुत सरल है।
1: वो कैसे?
3: स्वयं राजर्षि भी शकुंतला की ओर कम आकर्षित नहीं है।
1: हाँ जी, पिछले कई दिनों से वो भी खोए खोए से दिखाई देते हैं।
3: ए, मुझे एक उपाय सूझा है।
1: क्या?
3: ऐसा करते हैं कि इसके लिए हम लोग कामलिपि में एक प्रेम पत्र तैयार करते हैं।
1: फिर
3: उसे फूलों में छिपाकर देव पूजा के बहाने से उस राजर्षि तक पहुंचा देंगे।
1: मुझे तो उपाय बहुत अच्छा लग रहा है अनुसुया, एक बार इस शकुंतला से भी पूछ लो।
3: क्यों शकुंतला, हमारे उपाय से सहमत तो हो?
2: अपनी प्रिय सखियों से असहमत हो सकती हूँ भला?
1: तो ठीक है, अपनी अस्वस्थता को आधार बनाकर तुरंत एक सुललित गीत की रचना करो।
2: सुललित गीत? वो तो मैं लिख दूंगी, किंतु
1: क्या शकुंतला?
2: कहीं उन्होंने मेरा तिरस्कार कर दिया तो?
1: अपने गुणों का अपमान क्यों कर रही हो शकुंतला?
3: कौन होगा जो चंद्रमा की शीतल चांदनी को छत्र लगाकर रोकना चाहेगा?
2: ठीक है, जब तुम लोग इतना आश्वस्त कर रहे हो तो मैं प्रयत्न करती हूँ।

0: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।
1: आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: त्रिकर की बातचीत का दूसरा भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हाँ, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा, हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार मेरे सब विविध भारती सुनने वालों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार।
1: प्रमिला जी, क्यों ना संगीतकारों की बात कर ली जाए।
2: जरूर।
1: अलग अलग संगीतकारों के कॉम्पोजिशन आपने गाए हैं मंच पर। मंच पर किसी संगीतकार के साथ काम करने का मौका मिला हो?
2: अन्ना जी के सिवा और वसंत देसाई के सिवाय।
1: अच्छा,
2: वो जमाने के और किसी के साथ नहीं। अच्छा, गाया मैंने आज
1: मंच पर। आपने मंच पर दी हैं।
2: अन्ना जी के गानों का शो करता भुलाए ना बने करके,
1: जी जी,
2: उनका उसका नाम था।
1: हाँ, हाँ।
2: तो हम शो करते थे षणमुखानंद में, बम्बई में किए, पुणे में किए, ज्यादा नहीं ट्रैवलिंग।
1: जी।
2: तो उनका भी, अन्ना जी तो एकदम बहुत कड़क थे स्वभाव के।
1: जी, जी, जी।
2: यही फर्क अन्ना जी और वसंत जी में मुझे नजर आया।
1: हाँ, हाँ।
2: तो एकादी जागा, समझो एक हरकत है कुछ,
1: हाँ।
2: तो आपके गले में नहीं आई,
1: हाँ।
2: तो वसंत जी मतलब ठीक है, आपको ऐसा आता है ना,
1: हाँ।
2: ऐसे गाओ चलेगा। अन्ना जी नहीं,
1: हाँ।
2: नहीं नहीं, वो वैसा ऐसा ही आना चाहिए, नहीं तो। अच्छा। नहीं तो उनके साथ भुलाए ना बने कार्यक्रम था हमारा।
1: अन्ना जी मतलब श्री
2: रामचंद्र जी। तो षणमुखानंद में शो था और उनका प्रोग्राम है तो उनके गाने का जाहिर है, लेकिन कोई लोग खास तौर पर करने के लिए, तकलीफ देने के लिए, ये गाना वो गाना दूसरों के गाने के फरमाइश दे रहे थे।
1: अच्छा।
2: तो थोड़ी देर एनर्जाइजेशन किया, फिर बाद में बोले ये मेरा प्रोग्राम है, दूसरे किसी के गाने इसमें नहीं होंगे, अगर आपको सुनना है तो आप जा सकते हैं।
1: अच्छा।
2: इन्हीं शब्दों में उन्होंने उनको सुना दी, फिर वो लोग चुप बैठ गए।
1: अच्छा।
2: एक छोटी गायिका थी, मुझे याद है,
1: हाँ,
2: नाम
1: हाँ।
2: नहीं बताऊंगी, तो गीत गोपाल करके, गीत रामायण के जैसा गीत गोपाल करके मराठी माडगुळकर जी ने ही लिखा था।
1: जी, जी,
2: वो
1: जी।
2: पूरा रिकॉर्ड भी रिकॉर्डिंग हुआ है उसका एच
1: एनवी
2: में।
1: अच्छा।
2: तो उसमें वो थी, छोटी थी, तो उसकी आवाज नीचे नहीं जाती थी।
1: Okay.
2: एक समय काली पास सुर है तो,
1: हाँ,
2: खर्च के जो सुर होते हैं,
1: हाँ,
2: आवाज आती ही नहीं थी गले से। तो उन्होंने वो ज्यादा ऊंचे ऊंचे सुर में गाना चाहती थी क्योंकि तब, तो उन्होंने अन्ना जी को बोला कि अन्ना ये मेरे आवाज नीचे नहीं लगती, तो मैं जरा सुर ऊपर ले लूं क्या स्केल।
1: हाँ।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, तू तो घर जा, सुबह उठ के खर्च का रियाज कर, फिर तेरे गले में आएगा, फिर वो गाना गाना। तो वो किसी के भी सुन दे, जो उनको चाहिए चाहिए बस।
1: जी जी,
2: ये दोनों में फर्क था, वसंत जी और अन्ना जी।
1: अन्ना जी को यानी श्री रामचंद्र साहब को अगर हम याद करें तो इतनी सारी कॉम्पोजिशन है,
2: बहुत,
1: उसमें से कौन सा कॉम्पोजिशन आज आप यहाँ चुनेंगी इस मौके पे?

0: प्रमिला जी, आपने बताया कि आप अपनी बेटियों के साथ भी मंच पर प्रस्तुति दिया करती थीं।
1: जी
0: जितने शोज आपने किए हैं अलग-अलग देशों में, अलग-अलग गायकों के साथ,
1: गायकों सर,
0: तो मेल सिंगर्स के साथ किसी फीमेल सिंगर का होना और इसलिए आपको बुलाया जाना, ये तो
1: हाँ
0: समझ में आता है।
1: हाँ
0: कभी ऐसा हुआ होगा किसी फीमेल सिंगर के साथ में आपको गाने का मौका मिला हो मंच पे, या आशा जी का शो है
1: नहीं
0: या
1: नहीं
0: लता दीदी,
1: वो तो
0: ऐसा
1: नहीं,
0: कभी हुआ
1: वो
0: नहीं?
1: दुर्भाग्य रहा मेरा नहीं
0: जी
1: हुआ।
0: जी जी
1: लेकिन आशा जी का साथ मैंने डुएट गाना गाया है फिल्म के
0: हाँ,
1: लिए। हाँ,
0: अरे वाह, ये कौन सी
1: मराठी
0: फिल्म?
1: फिल्म, बसंत जी का म्यूजिक था
0: जी
1: और फिल्म का नाम था बायानो नवरे संभाला।
0: ओ
1: उसमें
0: हाँ
1: डांस की जुगलबंदी थी,
0: हाँ
1: जयश्री टी और एक मधुमती करके डांसर थी, तो
0: अच्छा
1: उनकी दोनों की जुगलबंदी हुई। दोनों के गाए, एक का पार्ट मैंने गाया, एक का पार्ट आशा जी ने
0: अच्छा
1: गाया।
0: अच्छा
1: मुझे मालूम था कि वो आशा जी कुछ ना कुछ करामत करेगी उनके सामने, मैं तो। और ये मेरे लिए अच्छी बात हुई कि वो अपना पार्ट आके करके चली गई,
0: अच्छा,
1: उनके साथ मुझे गाना नहीं पड़ा,
0: मतलब ट्रैक
1: तो मैं
0: रिकॉर्डिंग शुरू
1: बहुत
0: हो चुका
1: ये
0: था।
1: दबती थी। हाँ,
0: जी
1: ट्रैक
0: जी
1: रिकॉर्डिंग तो शशांक जी करके थे, उनका एसएल स्टूडियो था
0: जी
1: शशांक लालचंद
0: जी
1: तारदेव में, तो वहाँ पे वो मेरा रिकॉर्डिंग हुआ
0: हाँ
1: हमारा। तो मेरा मैंने पार्ट मैंने अलग गाया,
0: अच्छा
1: लेकिन उनको मालूम था।

0: संजय को कि ये क्लासिकल सीखी हुई है, ये भी कुछ करेगी बीच में है अपने हिसाब से। तो
1: अच्छा
0: उन्होंने मुझे ये कहा था, जो मैंने सिखाया वैसे ही गाने का, और
1: अच्छा
0: कुछ करने का नहीं। बोला अच्छा, वो आपके हुक्म। मैंने
1: हाँ
0: आशा जी ने क्या अपना पार्ट गाया है, ओ
1: जी
0: माय
1: जी
0: गॉड।
1: जी
0: वो गाना था वो भी अशी त्रैलोक के सुंदरी, बहुत अच्छा गाना था
1: अच्छा अच्छा
0: उनका।
1: आशा जी की बात निकली है, तो वो आशा जी को किस तरह से आप याद करेंगी?
0: उनके गानों से ऑफकोर्स, और गानों की वजह से, और हर तरह का
1: जी जी
0: गाना, जो मैं बताने की ज़रूरत नहीं है कहने की,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हर तरह का गाना उनका। वो गाना मुझे बहुत पसंद है, चैन से हमको कभी
1: आहा,
0: आपने जीने न
1: प्राण
0: दिया।
1: जाए पर वचन जाए,
0: हाँ, प्राण
1: वो
0: जाए
1: नय्यर साहब का
0: नय्यर
1: कंपोजिशन।
0: साहब का।
1: क्या बात क्या बात।
0: बहुत सारे, मतलब ये एक ही गाना चुनना तो नाइंसाफी
1: हाँ
0: होगी लेकिन हर गाना उनका बहुत बहुत
1: ये गाना सुन लिया जाए।

0: प्रमिला जी, इतने तरह के अलग अलग सिंगर्स के साथ शोज आपने किए हैं, सुनहरी यादें ये तो आपके शो का नाम
1: मेरा
0: था
1: खुद का
0: जी,
1: बैनर था।
0: मगर कभी अलग अलग थीम पे आपने इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया? जैसे रीजनल गाने भी उसमें इंक्लूड किए होंगे आपने?
1: रीजनल गाने तो होते थे, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में दो लावणी चाहिए ही चाहिए,
0: हाँ,
1: और उसमें भी एक लावणी पाड़ाला पिकला अम्बा,
0: ओ
1: वो अगर पहला गाना हिंदी हुआ
0: जी जी
1: पुराना कोई फिल्म का,
0: हाँ
1: और सेकंड गाना लावणी,
0: अच्छा
1: हाँ दूसरा गाना लावणी,
0: ओहो
1: तो अगर किसी वक्त दूसरा गाना लावणी नहीं गया दूसरे नंबर पर, तो
0: हाँ
1: लोग एकदम ऐसे, अभी आज ये होने वाला है कि नहीं, चार पांच, मैं भी
0: हाँ
1: उनको ज़्यादा ज़्यादा कभी चार गाने पांच गानों के बाद गाती थी, तो
0: अच्छा
1: अरे
0: अच्छा अच्छा
1: अरे आपने पहले नहीं गाया ऐसे। और
0: हाँ
1: वो लावणी सुलोचना चव्हाण जी की है,
0: जी बिल्कुल
1: तो मेरे शो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे उस मुकाबले
0: हाँ
1: में, तो वो गाना मेरे नाम पे रजिस्टर हुआ कि
0: ओ
1: ये गाना इनका।
0: अच्छा
1: तो एक बार सुलोचना चव्हाण जी का प्रोग्राम था,
0: हाँ
1: मुझे ये कोई नहीं, किसी ने मुझे आके बताया, तो मुझे मालूम
0: हाँ
1: पड़ गया कि किसी ने बताया वो प्रमिला दत्तर जी की लावणी है ना पाड़ाल पिकला अम्बा, वो गाई है। अब वो बहुत बहुत गुस्सा हो गई, वो
0: ओ
1: उसकी नहीं, वो मेरी है, तो
0: जी
1: उसकी उसकी नहीं है। तो मतलब इस तरह से
0: जी
1: कोई
0: जी
1: कोई गाने इतने, गुजराती में गुजरात में गुजराती, फिर
0: हाँ
1: कर्नाटक में गए तो कन्नड़ी,
0: हाँ ओ
1: फिर मलयालम, ऐसे
0: अच्छा
1: एक ही थोड़ा
0: अच्छा
1: थोड़ा तैयार करके रखा। तो वहाँ के लोकल लोग बहुत खुश होते थे,
0: अच्छा
1: उनकी भाषा में अगर थोड़ा सा भी गाया ना
0: हाँ
1: तो मस्त उनको मजा
0: क्या
1: आता था
0: बात है
1: सुनने में।
0: क्या बात है
1: उसका एक मंदसौर का किस्सा है, मैं
0: हाँ
1: आपको बताया
0: हाँ
1: कि
0: बिल्कुल
1: नहीं। मेरे शो, मेरे स्टेज में ऐसा रिकॉर्ड हुआ करता था, मेरे पीछे
0: हाँ
1: बड़ा रिकॉर्ड, ऐसा पत्रिका
0: स्क्रीन पर
1: फोल्डिंग स्क्रीन नहीं, ऐसा स्टैंड पे हुआ करता था,
0: अच्छा
1: एक
0: अच्छा कटआउट
1: बहुत
0: बनाया
1: बड़ा
0: था
1: कटआउट बनाया था। तो
0: हाँ
1: पहले लकड़े का था, बाद में हमने वो उस बहुत खराब होता था लकड़ा, था पत्रे का बनाया था
0: जी जी जी
1: मेटल का। तो उसके मेरा नाम प्रमिला दातार और सुनहरी यादें, वो मेरे जहाँ एडवर्टाइजमेंट में भी पेपर में वही, तो
0: जी
1: मुझे उसी बदौलत लोग अभी भी याद करते हैं
0: जी जी
1: कि वो आपका पापा आगे पीछे रिकॉर्ड हुआ करता था। तो रिकॉर्ड हुआ करता मंदसौर में शो था, इंदौर
0: हाँ
1: के पास मध्य प्रदेश में एक गांव है
0: हाँ
1: मंदसौर करके। तो हमारा शो खत्म हुआ और एक वो रिकॉर्ड, उसको हम साइक्लोरामा डालते थे, तो
0: अच्छा
1: ऐसा लगता कि रिकॉर्ड घूम रही है,
0: घूम रहा है
1: ऐसा
0: अच्छा
1: लगता
0: अच्छा
1: था,
0: अच्छा
1: तो ऐसा भास होता था लोगों को। तो एक आदमी बहुत गुस्सा होकर आया, बोले क्या आप फंसा रहे हैं हमको, लोगों को, ऑडियंस को, मतलब क्या क्या हुआ,
0: हाँ
1: मेरी मेरी तो जहाँ तक मुझे मालूम है हम तो ठीक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आप अच्छा गाने की। तो बोले नहीं नहीं वो आप पीछे रिकॉर्ड चला रहे हो और आगे मुंह हिला रहे हो
0: अच्छा
1: सिर्फ एक
0: ओहो
1: तरह से वो कॉम्प्लीमेंट भी था
0: हाँ
1: कि उसको
0: बिल्कुल
1: रिकॉर्ड जैसा लगा
0: क्या बात क्या
1: लेकिन
0: बात
1: मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया,
0: जी
1: मैंने
0: जी
1: उसको
0: जी
1: बताया, उनको स्टेज पे जाके दिखाया कि ऐसा
0: हाँ
1: होता है, फिर हम लोग गाना गाते हैं सामने, ऐसा
0: हाँ
1: गाना गा, फिर वो शांत हो गया
0: क्या बात
1: आदमी
0: क्या बात। श्रोताओं की बात निकली है
1: जी
0: तो आपने भारत में इतने अलग अलग शहरों में गांव में
1: हाँ
0: शोज
1: जी
0: किए हैं और विदेशों में भी किए हैं,
1: जी
0: हर शहर का श्रोता अलग होता
1: बिल्कुल
0: है ना?
1: बिल्कुल, और शुरुआत में नहीं लेकिन
0: हाँ
1: अनुभव से
0: हाँ
1: आपको मालूम होना चाहिए
0: हाँ
1: कि अभी गीतों की रचना भी जो करते हैं,
0: जी जी
1: एक साथ लघु पाठ पांच छह शांत धीमे गीत, फिर लोग हा करके शाम के सामने ये करते हैं,
0: अच्छा अच्छा
1: फिर दो गाने के बाद ये कोटा सफाज गाना, फिर ये मुड़ के गाने के बाद ये मुड़, वो अपने आप समझना चाहिए, वो सिखा
0: अच्छा
1: के नहीं आती बात।
0: अच्छा अच्छा
1: और जहाँ तक पहली बार भी गए
0: हाँ
1: किसी शहर में, किसी
0: हाँ
1: गांव में, छोटे से गांव में भी,
0: जी जी
1: तो पहले दो गाने में अंदाज आता है कि आज क्या चाहिए लोगों को, किस
0: ओहो
1: प्रकार के गाने चाहिए,
0: अच्छा
1: तो होने से ज्यादा अच्छा होता
0: हाँ।
1: था
0: और
1: समझ।
0: भारत के श्रोता और विदेशों में जो लोग हैं वहाँ के श्रोता, कुछ उसमें फर्क आपको मालूम पड़ता है, महसूस होता है?
1: फर्क नहीं, अच्छा लोग पसंद करते थे, ये
0: अच्छा
1: है अच्छा लोग
0: हाँ
1: पसंद, क्योंकि ये रफ़ी साहब के साथ मैं गाऊं या उनके बाद मैं गाऊं
0: हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: वो बिल्कुल, मतलब ये था, मुझे याद नहीं लगता, लेकिन लोगों को पसंद आते थे,
0: पसंद आता
1: पहला प्रमिला
0: जी
1: भी
0: जी
1: अच्छे गाती है, आपने कभी फिल्मों में गाया है क्या, ये सब
0: जी
1: पूछते
0: जी
1: थे फिर आके।
0: और कोई ऐसा गाना जिसकी फरमाइश बहुत ज्यादा होती थी?
1: और रफ़ी साहब का गाना एक दुगाना है,
0: हाँ हाँ
1: 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था,
0: ओहो
1: हाँ, और उसमें जॉनी विस्की हमारे साथ होते थे,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: वो आगे आके उनको उसको एक, मतलब ना मैं बताती हूँ आपको,
0: हाँ हाँ
1: रफ़ी साहब पहले शुरू करते
0: जी
1: थे,

0: रहेगा, फिर जानी विस्की, अरे परसो भी रहेगा, अरे तरसो भी। मैं क्या जानी भाई, आप इतना के पूना गाने का, लेकिन रफी साहब को भी अच्छा लगता था, मजा आता था, लोग मजे लेते
1: जी जी जी। तो चलिए इसी गीत के लिए जगह बनाते हैं, ये गाना सुन लेते हैं।
0: जरूर।

0: प्रमिला जी, इतने सारे शोज करने के बाद कोई ऐसी बात रही होगी आपको लगा कि ये होना चाहिए था मगर हो नहीं पाया?
1: प्लेबैक
0: अच्छा
1: मतलब रिकॉर्डिंग के लिए गाना और
0: हाँ,
1: स्टेज के लिए गाना
0: बहुत फर्क है।

0: बहुत फर्क है,
1: जी
0: बहुत ही फर्क है। तो एक ये मुझे थोड़ी सी मन में ये रह गया कि मुझे मराठी फिल्मों में गाया, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए जिससे नाम होता है,
1: जी जी
0: फिर भी आखिर में क्या आप दूसरों के गाने ही गाते हैं ना, ये
1: हाँ
0: होता है,
1: हाँ हाँ
0: ये ठपका दोष आता है उनके ऊपर।
1: जी
0: इसलिए वो अगर होता था, लेकिन मैं मेरे इसमें खुश थी,
1: हाँ
0: मैं लोगों को आमने सामने मेरा मुझे मुझे ये दाद मिलती थी लोगों
1: जी
0: की,
1: जी
0: तो मैं खुश थी, वही उसमें ही खुश
1: जी
0: थी।
1: जी जी
0: और रसिकों की दुआ से, ईश्वर की दुआ
1: जी
0: से बहुत
1: जी
0: अच्छा चला
1: बिल्कुल
0: और नाम लेने लगे लोग कि ऐसा मेरा प्रोग्राम एक मापदंड हो गया कि
1: हाँ
0: ऐसा
1: हाँ
0: होना चाहिए
1: हाँ
0: ऑर्केस्ट्रा।
1: जी जी
0: एक पूना के हमारे ये है, उन्होंने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा बोले तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि वो धांगड़ धींगा ये वो डांस वो ये सब नहीं, अच्छी तरह से भी करो
1: जी
0: तो फिर लोगों को पसंद। तो पूना के हमारे एक अच्छे जो क्लासेस करके उनके प्रिंसिपल थे,
1: हाँ
0: उन्होंने मोरारजी को देखा तो बोले आपका शो खानदानी लगता है, तो
1: हाँ
0: वो एक कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए
1: क्या
0: बहुत
1: बात है,
0: अच्छी है,
1: क्या बात है।
0: दूसरा कोई कहने की
1: हाँ
0: जरूरत ही
1: बिल्कुल
0: नहीं
1: बिल्कुल, शो
0: है।
1: में आपके प्रेजेंटेशन में शालीनता हो
0: प्रेजेंटेशन शालीनता हो
1: तो
0: जरूर,
1: सवाल ही नहीं, वो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ऑर्केस्ट्रा बहुत सुंदर होता है। क्या
0: बिल्कुल।
1: बात। ऐसे ही आप नामचीन श्रोताओं को याद करना चाहेंगी कि कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बहुत बड़े नामी गिरामी लोग हैं और वो शो के लिए आपके आए हैं?
0: आए थे बहुत सारे, मतलब उनकी उनकी कंपनी के लिए ऐसे भी मेरे, लेकिन अभी
1: हाँ
0: ज्यादा नाम मुझे याद नहीं है।
1: प्राइवेट शोज भी होते हैं कई
0: प्राइवेट
1: बार
0: शोज भी
1: जी,
0: होते थे,
1: कंपनी के लिए या किसी।
0: कंपनी के लिए, किसी
1: हाँ
0: कंपनी के लिए बहुत शो हुए,
1: अच्छा
0: मतलब बहुत सारी टाटा इंडस्ट्रीज से, बम्बई के आसपास और बाहर गांव में भी
1: जी जी
0: बहुत सारी कंपनी उनके लिए

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 4:30 हो रहे हैं। हम उपस्थित हैं अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ। सांध्यकालीन सभा की शुरुआत हम कर रहे हैं युवा श्रोताओं के मनपसंद कार्यक्रम युववाणी से।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: मैं नहीं चाहता प्राथमिकताएं, मैं रहना चाहता हूँ वो विकास।

0: संकल्प, जब तुम्हें कुछ समझ ना आए, जब तुम्हें कुछ नजर ना आए, तब मुझे चुना जाए।
1: जय हिंद दोस्तों, मैं नीलिमा और
0: मैं आकाश,
1: स्वागत
0: स्वागत।
1: करते हैं आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आकाश, जैसा कि आपने कहा, हमारी आकाशवाणी भी वो विकल्प है जो हर परिस्थिति में चुनी जा सकती है, क्योंकि ये ना सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया है बल्कि हमारे श्रोताओं का सच्चा साथी भी है, जो हर अप्स एंड डाउन में हमारे लिसनर्स के लिए मेंटोर का काम करती है।
0: हाँ नीलिमा, ये बात तो है। तो दोस्तों, इस मोटिवेशनल लाइन के बाद सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा सॉन्ग।

0: घनन घनन घी राय बदरा, यह प्यारा सा फिल्म संगीत सुना दोस्तों आपने उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।
1: दोस्तों, बादल की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है हमारे शहर को, क्योंकि शहर क्या देखे कि हर मंज़र में जाले पड़ गए। शहर क्या देखे कि हर मंज़र में जाले पड़ गए। ऐसी गर्मी है कि पीले फूल भी काले पड़ गए।
0: वाह, क्या खूब कहा नीलिमा आपने। गर्मी तो बहुत है, लेकिन मई के टाइम में यही खासियत है। मई की ये खूबी है कि गर्मी तो होती ही है, लोग तपिश से परेशान भी है, ऐसे में बदरे की डिमांड तो है ही।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और ये पता है, ये मई जून का जो महीना है, इसकी खासियत है कि यहाँ इस महीने में हमें खट्टे मीठे आम भी मिलते हैं, और वो आम की सोनी खुशबू मन को तरोताजा कर देती है।
0: क्या बात है, आम की तो बात सुनकर मुंह में पानी आ गया। पके हुए तो अच्छे लगते ही हैं, कच्चे आम भी हमारी सेहत के लिए फायदेमंद साबित होते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, अगर लू लग गई है तो कच्चे आम को पकाकर खाइए, आप ठीक हो जाएंगे।
0: इसके साथ साथ गर्मी से बचने के उपाय अपनाएं, जैसे खूब पानी पिएं, खूब हाइड्रेटेड रखें खुद के शरीर को।
1: छाता लेकर बाहर जाएं, सर ढक कर रखें। बाहर से अगर घर आए हों तो ठंडा पानी अवॉइड करें, तुरंत फैन ऑन ना करें, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाएं।
0: थोड़ी सहजता से रहें, हर मौसम एंजॉय किया जा सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा आकाश, हर मौसम के अपने लिमिटेशंस हैं, लेकिन थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस अपनाकर हम एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं।
0: तो दोस्तों एंजॉय कीजिए यह अगला ट्रैक।

0: अभी आपने सुना जाने भी दे फिल्म हे बेबी से ये ट्रैक शंकर महादेवन की आवाज में। आकाश जी, अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि आज के प्रोग्राम में क्या खास सुनाने वाले हैं हम उनको।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिक्किम डे की। जी हाँ दोस्तों, आज सिक्किम की स्थापना दिवस है और आगे बात होगी इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट पर भी।
0: इसके साथ साथ स्टार्टअप सैटरडे के खास सेगमेंट में सुनवाएंगे आपको भावना जी को, जो कि हैं पटना वुमेन्स कॉलेज की विभागाध्यक्ष एमसीए डिपार्टमेंट की, और देंगे आपको रोचक तथ्यों की जानकारी भी।
1: नीलिमा, आज 16 मई है और हर स्टेट के लिए कोई ना कोई दिन तो खास होता ही है। आज का दिन भी एक स्टेट के लिए खास है।
0: बिल्कुल आकाश, आज है सिक्किम डे। हर साल 16 मई को सिक्किम अपना राज्य स्थापना दिवस बड़े गर्व और उत्साह के साथ मनाता है। ये दिन भारतीय इतिहास में काफी सिग्निफिकेंस रखता है ना आकाश?
1: बिल्कुल नीलिमा, क्योंकि इस दिन ही 1975 में सिक्किम आधिकारिक तौर पर इंडियन यूनियन का 22वां राज्य बना था।
0: हिमालय की गोद में बसा यह छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत राज्य अपनी एनेक्सेशन से पहले नामग्याल राजवंश के चोग्याल राजाओं द्वारा शासित एक स्वतंत्र राजशाही था।
1: 1975 में हुए एक रेफरेंडम में सिक्किम की 97% से अधिक जनता ने भारत के साथ जुड़ने और लोकतांत्रिक शासन अपनाने के पक्ष में मतदान किया।
0: आज सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है, जो न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और कंचनजंगा की चोटियों के लिए जाना जाता है, बल्कि ये भारत का पहला 100% ऑर्गेनिक स्टेट बनकर पूरे देश के लिए एक प्रेरणा भी बन गया है।
1: बिल्कुल, ये दिन सिक्किम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व यानी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और भारत के साथ इसके अटूट संबंध का उत्सव है। 36वें संशोधन के तहत बना यह सिक्किम भारत का जो हिस्सा है वह भारत का राज्य हो गया। और इसके बाद नीलिमा, आप इसके बारे में सिक्किम के भौगोलिक स्थिति के बारे में क्या बताएंगी?
0: आकाश, ये पश्चिम में नेपाल, उत्तर और पूर्व में तिब्बत और दक्षिण पूर्व में भूटान से घिरा हुआ है। दक्षिण में इसकी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है।
1: शायद इसकी भौगोलिक स्थिति की वजह से यहाँ कई भाषाओं की एग्जिस्टेंस देखी गई है, जैसे नेपाली, लेपचा, भूटिया और अंग्रेजी।
0: दोस्तों, सिक्किम में 200 से अधिक बौद्ध मठ हैं, इसलिए इसे मठों की भूमि भी कहा जाता है।
1: बिल्कुल ठीक कहा नीलिमा आपने। यहाँ एक भारतीय सैनिक बाबा हरभजन सिंह का मंदिर भी है, जिन्हें आज भी नाथुला का हीरो माना जाता है, और सेना में उनका सम्मान एक जीवित अधिकारी की तरह किया जाता है।
0: आकाश, आपको पता है सिक्किम में कई

0: प्राकृतिक गर्म पानी के झरने यानी हॉट स्प्रिंग्स हैं जिनके पानी में औषधीय गुण माने जाते हैं।
1: तो दोस्तों, समय हो तो सिक्किम जरूर जाएं, वहां की छटा, वहां की सुंदरता का आनंद जरूर लें। अपना अनुभव फीडबैक aarpatna@gmail.com पर भी साझा करें, यह हमारी आपसे अपील है। तो दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब वक्त हो चला है अगले ट्रैक का।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ये तारा सॉन्ग उदित नारायण की आवाज़ में। अब आपको बताते हैं आज की चर्चा के बारे में, जो कि है इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस।
1: बिल्कुल श्रोताओं, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग सबसे हसमिस हसमिल बोलिए नदी नाव संयोग। नीलिमा, क्या इस दोहे का अर्थ जानती हैं आप?
0: बिल्कुल आकाश, गोस्वामी तुलसीदास जी का यह प्रसिद्ध दोहा हमें सिखाता है कि इस संसार में तरह तरह के लोग होते हैं, इसलिए सबके साथ हंसकर और मिलजुल कर रहना चाहिए, जैसे नदी और नाव का संबंध सहयोग का होता है।
1: जी हाँ श्रोताओं, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना हमारे स्वयं और समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है।
0: और इसी विकास के मार्ग की अहमियत को समझाने के लिए 16 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांतिपूर्ण सह अस्तित्व दिवस।
1: श्रोताओं, हम आपको बता दें कि इस दिवस का उद्देश्य शांति, सहिष्णुता, समावेश, समझ और एकजुटता को बढ़ावा देना है। नीलिमा, क्या आप हमारे श्रोताओं को इस वर्ष इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम और इस दिवस की शुरुआत कब हुई ये बताएंगी?
0: बिल्कुल आकाश, श्रोताओं, हम आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस 2017 में इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया था। और इसके साथ ही श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वर्ष 2026 की थीम है लिविंग टुगेदर इन पीस, बिल्डिंग ट्रस्ट थ्रू डायलॉग, इंक्लूजन एंड रिकॉन्सिलिएशन, यानी संवाद, समावेश और मेल मिलाप के माध्यम से विश्वास का निर्माण।
1: बिल्कुल ठीक कहा नीलिमा आपने। क्या आप मनभेद और मतभेद के मूल अंतर को समझती हैं और यह अंतर समझना क्यों जरूरी है, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए।
0: बिल्कुल आकाश, तेजी से बदलती इस तकनीक की दुनिया में अब इंसान रोबोट तो नहीं हो सकता, तो जाहिर है आम तौर पर सबके विचार एक दूसरे से मिले ये जरूरी नहीं, और इन्हीं विचारों के न मिलने के बाद भी एक दूसरे का सम्मान करना, मतभेद

0: करने के बाद भी मनभेद ना होने की परिस्थिति कहलाती है।
1: वाह, ये बेहद आसान शब्दों में आपने मनभेद और मतभेद के अंतर की व्याख्या कर दी नीलिमा। जी हाँ श्रोताओं, हम इंसान हैं, सबके अपने विचार तो होते ही हैं, और विचारों के भिन्न होने के बावजूद एक दूसरे का सम्मान करना, असहमति के स्वर को जगह देना एक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है।
0: तो क्यों ना अगली ट्रैक अब सुनाए आकाश जी हमारे श्रोताओं को।
1: बिल्कुल श्रोताओं, तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला ट्रैक।

0: हीर आसमानी, या फिल्म संगीत सुना आपने फिल्म फाइटर से बी प्राक और विशाल ददलानी की आवाज़ में। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और नीलिमा, इस सेगमेंट की बारी है।
1: स्टार्टअप सैटरडे की
0: ओके, तो श्रोताओं, आज जैसा कि आप जानते हैं, शनिवार को होता है हमारा खास सेगमेंट स्टार्टअप सैटरडे। और स्टार्टअप सैटरडे में आइए हम आपको सुनवाते हैं PWC यानी पटना विमेंस कॉलेज की MCA डिपार्टमेंट की HOD भावना सिन्हा से नीलिमा की खास बातचीत।
2: आकाशवाणी के पटना केंद्र से जुड़ने के लिए तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे श्रोताओं को दें।
3: मैं डॉक्टर भावना सिन्हा, मैं डीन IT पटना विमेंस कॉलेज हूँ और MCA डिपार्टमेंट की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ।
2: जी, तो श्रोता, हम आपको आज बता दें कि हम क्वांटम कंप्यूटिंग और AI के बारे में आज भावना जी से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत थैंक यू दिल से हमारे श्रोताओं की तरफ से भी कि उनके लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला।
3: धन्यवाद।
2: तो भावना जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्वांटम कंप्यूटिंग

0: आखिर है क्या? क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसी नई सदी है जो फिजिक्स पे काम करती है, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स हुआ उसी पे ये चलती है। और हमारे रोजमर्रा के कंप्यूटर्स में बिट्स होते हैं, जैसे 0-1 का इस्तेमाल होता है, लेकिन क्वांटम में क्यूबिट्स होते हैं, और जिनको सुपर पोजिशन करके उसकी वजह से ये बहुत फास्ट होते हैं और उसपे कंप्यूटिंग किया जा सकता है।
1: भावना जी, ये ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग से कैसे अलग है?
0: जैसे ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में हमारे पास वो बाइनरी कोड पे चलती है, जहाँ पे 0 और 1 होता है। 0 का मतलब हो गया ऑफ और 1 का मतलब हो गया ऑन, और इस तरीके से वो काम करता है, और साथ में वो सीक्वेंशियल तरीके से काम करता है। लेकिन जब हम क्यूबिट्स पे काम करते हैं या क्वांटम कंप्यूटिंग में काम करते हैं, तो ये क्योंकि एक ही समय में 0 भी और 1 भी हो सकता है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाएं, तो मान लीजिए कोई एक सिक्का है, तो जब उसे टॉस करते हैं तो कन्वेंशनल कंप्यूटिंग में या तो वो हेड्स आएगा या टेल आएगा, कोई एक ही एक बार में आ सकता है। लेकिन जब हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं, तो टॉस करने के बाद वापस वो जमीन पे आए, उसके पहले ही हवा में वो जितनी बार हेड्स और टेल हो रहा है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो हम जान लेते हैं क्यूबिट्स के थ्रू। या जैसे एक और एग्जाम्पल से इसे ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लाइब्रेरी है और उसमें किसी एक बुक को सर्च कर रहे हैं या पढ़ना है कि क्या है, तो अगर हम कन्वेंशनल कंप्यूटिंग के बारे में बात करें तो वो लीनियर सर्च करता है, मतलब एक एक करके सभी बुक्स को खोजेगा और तब जाके उसे वो बुक मिलेगा जिसे हम खोज रहे थे। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग में एक ही बार में जितने भी बुक्स हैं वो उन सभी को स्कैन कर सकता है, तो इसलिए बहुत ही फास्ट होता है, कन्वेंशनल कंप्यूटिंग से बहुत फास्ट होगा।
1: भावना जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है आज के डिजिटल युग में?
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक तरीके से हमारा इनविजिबल असिस्टेंट बन गया है, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी यूज हो रहा है, चाहे हम यूट्यूब या नेटफ्लिक्स पे देख रहे हो और वहाँ हमारे पास कोई भी अपने पसंद का वीडियो आ जाए, या फिर हेल्थ केयर में हो, डेटा पे चलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जितना ज्यादा हमारे पास डेटा, करेक्ट डेटा होगा, उतने अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं। तो कोई भी डॉक्टर है, तो मान लीजिए उसे किसी बीमारी को पहचानना है, तो उस डेटा के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छे से हेल्थ केयर पे भी काम कर सकता है। इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप हमारे मोबाइल में भी AI लगा हुआ है, आप गूगल लेंस से अगर किसी चीज को स्कैन करें, कोई भी नया पौधा है, तो आप स्कैन करके उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं, तो ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एग्जाम्पल है। अब तो हर जगह यूज हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
1: क्वांटम कंप्यूटिंग और AI का कॉम्बिनेशन भविष्य में कैसे काम करेगा?
0: क्वांटम कंप्यूटिंग और AI का कॉम्बिनेशन तो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि AI डेटा पे चलता है और ये बहुत एक्यूरेट आपको प्रेडिक्शंस दे सकता है, और क्वांटम कंप्यूटिंग इसे स्पीड देने का काम करेगा, क्योंकि ये क्यूबिट्स पे काम करता है, तो ये स्पीड को बहुत ही फास्ट कर देता है। जो कन्वेंशनल कंप्यूटर्स के थ्रू अगर हम किसी चीज को रिसर्च कर रहे हैं और उसमें अगर हमें 6 महीने से 1 साल लग रहा है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग में वो विद इन अ मिनट उसका रिजल्ट हमारे पास आ सकता है।
1: काफी टाइम सेव लग रहा है।
0: बिल्कुल।
1: आप भारत को AI और क्वांटम टेक्नोलॉजी में किस स्टेज पर देखती हैं?
0: AI में तो हम अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम एक तरीके से कहे तो भारत आज एक ग्लोबल टेक कंटेंडर की स्टेज पे है, और यहाँ पे जैसे हमारा UPI पेमेंट है, तो उसने बिल्कुल इंडिया स्टैक के जरिए AI को हर आदमी तक पहुँचाया है, तो AI पे तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन क्वांटम में अभी थोड़ी शुरुआत में हम हैं और ना आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन फिर भी सरकार के तरफ से बहुत सारे नए इस तरीके के नए मिशन आ रहे हैं जिसपे क्वांटम कंप्यूटिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
1: नीति आयोग ने AI के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं, अगर आप कुछ ब्रीफ में बता सके?
0: बिल्कुल, नेशनल क्वांटम मिशन के तौर पे इसमें करीब 6,000 करोड़ का एक स्ट्रेटेजिक प्लान प्रोजेक्ट बना है, जिसमें क्वांटम सुपर पावर बनाया जाए हमारे देश भारत को, उसका एक लक्ष्य दिया गया है, और इसमें नीति आयोग ने इसपे बहुत काम किया है, और भारत को एक आत्मनिर्भर इस टेक सिक्योरिटी में बना सके, तो मेनली उसमें साइबर सिक्योरिटी पे जोर है, और यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, और एक तरीके से जितने भी हमारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो पाए, इस पे ध्यान दिया जा रहा है। और साथ में AI के लिए भी बहुत काम किया गया है नीति आयोग के थ्रू, और AI फॉर ऑल जो विजन है, जिसके थ्रू ये रखा गया है कि हर एक तक AI पहुंच सके, गरीब इंसान तक भी AI पहुंच सके, और मेनली 5 सेक्टर्स में से बांटा गया है, जैसे हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, और इन सभी पे काम हो रहा है, और साथ

0: एआई स्पेसिफिक क्लाउड कंप्यूटिंग पे भी काम हो रहा है, जिसे एरावत नाम दिया गया है, उस पे भी काम हो रहा है।
1: बेसिकली नीति आयोग डिजिटल डिवाइड को कम करने की कोशिश कर रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, एआई फॉर ऑल यही है, डिजिटल डिवाइड कम हो सके, सभी तक एआई पहुंच सके।
1: भावना जी, भारत में एआई और क्वांटम रिसर्च के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक है जो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, तो उनके बारे में?
0: आईएससी बेंगलोर हमारा क्वांटम रिसर्च में सबसे बड़ा पावर हाउस है, जहाँ फंडामेंटल फिजिक्स पर काम हो रहा है। देन आईआईटीज हैं, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सीडैक पुणे सुपर कंप्यूटर्स जहाँ से बना हमारा, तो हार्डवेयर और क्वांटम कंप्यूटिंग के कंप्यूटर को किस तरीके से हम क्वांटम कंप्यूटिंग में कन्वर्ट कर सके, उस पर काम हो रहा है।
1: भारत के युवा एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं?
0: बिल्कुल, हमें देखना है कि हम भारत के जो युवा हैं वो हमारे डिजिटल शक्ति बने, वो सिर्फ यूजर नहीं बने एआई के लिए, बल्कि क्रिएटर बने। और हम यही चाहेंगे कि जो भी युवा है वो एआई ऐप डेवलप कर सकें, और उसके लिए उन्हें पाइथन, लीनियर अलजेब्रा, क्वांटम लॉजिक, इस तरीके के सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना होगा और उनको सीखने की कोशिश करनी होगी।
1: जी बिल्कुल, तो हमारे लिसनर्स को ये संदेश जाता है कि जितना हो सके उतना टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान दें और खुद को टेक्नोलॉजिकली एजुकेट करें।
0: बिल्कुल
1: भावना जी, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग के डेवलपमेंट में सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या आप देख रही हैं?
0: सबसे बड़ा चैलेंज
1: जी,
0: जहाँ तक चैलेंज की बात है, मैं समझूंगी कि हार्डवेयर अभी थोड़ा हमारे लिए चैलेंज है और इस पे काम होनी चाहिए, और साथ में स्टेबिलिटी। जैसे क्वांटम चिप्स इतनी नाजुक होती है कि अगर एक हल्का सा वाइब्रेशन हो तो उनका क्यूबिट स्टेट डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए उन्हें बहुत कम टेम्परेचर पे, जैसे स्पेस में जो टेम्परेचर होता है उतना ठंडा उसे रखने की जरूरत होती है। तो उस तरीके का हमारे पास एनवायरमेंट हो जहाँ पे हम इन क्यूबिट्स को बिना डिस्टर्ब किए रख सके और उस पे काम कर सके, तो इस तरीके का हमारे पास एक एनवायरमेंट और हार्डवेयर होना चाहिए। साथ ही दूसरी बात ये है कि जब हम एआई में काम करते हैं तो एथिक्स भी बहुत बड़ा चैलेंज है, तो उस पे भी ध्यान देना चाहिए। जो डीप फेक्स आजकल होते हैं, बिकॉज एआई को आप गलत तरीके से भी यूज कर सकते हैं, तो एथिकल यूज पता होना चाहिए और उसे उसी तरीके से यूज करना चाहिए।
1: जी, मैं उसी बात पर आने वाली थी कि टेक्नोलॉजी और ह्यूमन वैल्यूज के बीच में बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है, उसके बारे में हमारे लिसनर्स को थोड़ा एजुकेट करें आप।
0: बिल्कुल, ह्यूमन वैल्यूज तो बहुत जरूरी है, और अगर हम जहाँ तक देखें तो एआई काम तो कर सकता है, बहुत फास्ट काम कर सकता है, डेटा के अकॉर्डिंगली वो एक्यूरेट रिजल्ट पे भी आ सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसे किस तरीके से ट्रेन किया गया है। तो इसलिए एथिकल यूज बहुत जरूरी है, और वहाँ पे बायस नहीं होना है, और जो भी रिजल्ट है जिसपे उसे ट्रेन किया गया, जो ट्रेनिंग डेटा है, वो ऐसा होना चाहिए कि वो सटीक आंसर दे सके, ना कि बायस।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमारे लिसनर से साझा करने के लिए भावना जी।
0: थैंक यू।
2: दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं भावना सिन्हा जी की फरमाइशी गीत, जो कि है रुक जा रात, फिल्म दिल एक मंदिर से लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: दोस्तों, आप सुन रहे थे रुक जा रात, टाइटल गीत, और ये है फिल्म दिल एक मंदिर से शंकर जयकिशन की आवाज़ में। अब आपसे बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के बारे में।
1: बिल्कुल श्रोताओं, बात तारों के प्रकाश की हो या मानव निर्मित यंत्रों के प्रकाश की, प्रकाश की दुनिया निराली है। हम अपने हाथों में मोबाइल के रंगों की दुनिया जो वीडियो के स्वरूप में देखते हैं, आखिर वह भी तो प्रकाश ही है। और इसी प्रकाश के महत्व को पूरी दुनिया को बताने के लिए मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। इस दिन की शुरुआत वर्ष 2018 में यूनेस्को के द्वारा की गई थी। श्रोताओं, इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों में प्रकाश और प्रकाश आधारित तकनीक के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
0: आकाश, क्या आप जानते हैं, प्रकाश सिर्फ रोशनी का जरिया नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन को कई और तरीकों से आसान बनाने का भी माध्यम है।
1: बिल्कुल ठीक कहा नीलिमा आपने, प्रकाश हमारे जीवन के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विज्ञान और अनुसंधान के साथ चिकित्सा में लेजर सर्जरी, मेडिकल इमेजिंग के रूप में, और ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा के रूप में भी काम करता है।
0: और हम श्रोताओं को ये भी बता दें कि इस दिन को, यानी 16 मई को, प्रकाश दिवस मनाने के पीछे भौतिक वैज्ञानिक थियोडोर वेनमैन का हाथ है। उन्होंने वर्ष 1960 में 16 मई को ही पहली बार दुनिया के पहले सफल लेजर तकनीक का प्रदर्शन किया था, जिसने विज्ञान और तकनीक की दुनिया में नई क्रांति ला दी। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मूल संदेश हमारे जीवन में प्रकाश के महत्व को समझाना और इसके माध्यम से विज्ञान, शिक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देना है, जिससे मानव जीवन सरल व सुगम हो सकते हैं।
1: दोस्तों, कार्यक्रम में बातें और भी है, लेकिन उससे पहले यह अगला ट्रैक।

0: अभी आपने सुना हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से। सलीम सुलेमान कंपोजर हैं और सोनू निगम ने इसको आवाज़ दी है। दोस्तों, अब हमारी आकाशवाणी ने 90 वर्ष पूरे किए हैं, तो आइए सुनाते हैं आकाश जी की खास बातचीत।
1: तो सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दे दीजिए।
2: परिचय तो हम आर्ट टीचर रिटायर हैं डीएवी से और राजगीर में फिलहाल रह रहे हैं। राजगीर में मेरा अपना घर है।
1: आप अभी रिटायर कर गए हैं और पहले शिक्षक रह चुके हैं, ऐसे में आप बताइए कि आकाशवाणी से आपका जुड़ाव कब से रहा और शुरुआती दिनों में आकाशवाणी को आप किस प्रकार सुनते थे, क्या उपयोगिता थी?
2: जी, हम तो शुरू से ही आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं। शुरू से ही हम ट्रांजिस्टर से जुड़े हुए हैं। हम पटना, विविध भारती, शिलोंग, ये सब जगह से बाजा ट्रांजिस्टर में सुनते रहते हैं। अभी भी हम बाजा रखे हुए हैं, अभी पटना से समाचार सुनते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है।
1: जी, तो ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि अभी भी आप ट्रांजिस्टर रखे हुए, रेडियो रखे हुए हैं।
2: अभी हम रेडियो रखे हुए हैं, पटना का समाचार सुनते हैं। बराबर पटना का जो भी प्रचार प्रसार होता है हम आराम से सुनते हैं, खूब हमको अच्छा लगता है।
1: तो कैसा लगता है आपको आकाशवाणी सुनकर, और जो बीते वर्षों में आपने आकाशवाणी में क्या कुछ बदलाव नोटिस किया है?
2: बदलाव तो है, बढ़िया लगता है, सब सारा प्रोग्राम बदलाव है।
1: अगर कुछ प्रोग्राम की आप चर्चा करना चाहें, पहले की या वर्तमान में जो जा रहे हैं उनकी?
2: वर्तमान में प्रोग्राम तो जैसे जब वर्तमान समय चेंज होते जा रहा है, प्रोग्राम भी होना चाहिए, कुछ न कुछ तो होते रहना चाहिए।
1: आपके क्या सुझाव है आकाशवाणी पटना के लिए, खासकर अगर हम बात करें तो?
2: हम सुझाव यही देंगे कि समय के अनुसार प्रोग्राम कुछ चेंज होते रहना चाहिए, कुछ प्रचार होना चाहिए, कुछ किसी गृहस्थी का समाचार और कुछ लोग भी मतलब आते रहना चाहिए, गांव गृहस्थी का समाचार आते रहना चाहिए, प्रोग्राम उसको चेंज होते रहना चाहिए।
1: जी जरूर, तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके सुझावों को हम आगे तक पहुंचाएं और उन पर काम किया जाए। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, जो नई पीढ़ी है हमारी, उसको आकाशवाणी के महत्व के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोग सोशल मीडिया पर बिजी हैं, रेडियो अक्सर लोग कम सुन रहे हैं, लेकिन रेडियो का एक अपना महत्व है, इस पर आप क्या कहेंगे?
2: रेडियो का अपना महत्व तो है, तो इसको कहेंगे कि अच्छा ही है, तो बहुत बढ़िया बात है।
1: और कुछ आप श्रोताओं को संदेश देना चाहेंगे, अपना अनुभव साझा करना चाहेंगे जाते जाते?
2: और सुझाव तो ठीक ही है, सब सब ठीक होगा, बढ़िया।
1: बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए।
0: दोस्तों, अब अगले श्रोता रिटायर्ड प्रोफेसर सरदेंदु कुमार, जो पटना कॉलेज के

0: हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे हैं, उनका अनुभव आकाशवाणी के साथ कैसा रहा, आइए सुनते हैं।
1: श्रोताओं नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं आकाशवाणी के 90 साल पूरे हो गए हैं, ऐसे में हम कुछ श्रोतागण से बातचीत कर जान रहे हैं उनका अनुभव और उनके जीवन में आकाशवाणी की क्या उपयोगिता, क्या महत्व रहा है। तो सर स्वागत है आपका हमारे आकाशवाणी पटना के इस विशेष कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
1: सर। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना संक्षिप्त परिचय दे दें।
2: मेरा नाम सर वेंदु कुमार है और मैंने पटना सिटी के स्थानीय मारवाड़ी उच्च विद्यालय से सेकेंडरी माध्यमिक तक की शिक्षा हमने प्राप्त की है। उसके बाद फिर आईएससी में साइंस कॉलेज में हमारा एडमिशन हुआ और आईएससी के बाद जो है फिर हमने ट्रैक बदल लिया और हमारी रुचि कुछ और थी। हम हिंदी पढ़ने के लिए पटना कॉलेज चले गए। उस पटना यूनिवर्सिटी या पटना कॉलेज का हिंदी विभाग बढ़िया विभाग था, रिच विभाग था, तो यह सोच करके वहाँ विद्वानों का संपर्क होगा, उनसे सीखने जानने का मौका मिलेगा। तो 3 साल हमने पटना कॉलेज में छात्र के रूप में जो है हमारे हमने बिताए। फिर हमारा बढ़िया था तो फिर हमने जो है पटना यूनिवर्सिटी में ही स्नातकोत्तर हिंदी में हमने जो है प्रवेश लिया और वहीं से हमने अपना एमए किया। उसी समय बहाली बड़े पैमाने पर हुई, उसमें हिंदी विभाग में हमारी भी बहाली हुई टीचर के रूप में, लेक्चरर के रूप में। और उसके बाद जो है एक यात्रा प्राध्यापक के रूप में हमारी एक यात्रा शुरू हुई जो 2020 तक चलती रही। 2020 में मैं सेवानिवृत्त हुआ और फिलहाल पुराने दिनों को याद करते हुए अपने घर पर ही जो है मेरा अधिकांश समय बीतता।
1: जी जी सर, बहुत बढ़िया बताया आपने। सर मैं चाहूंगा कि आप अपना जो शुरुआती दिन आपके रहे हैं छात्र जीवन के और आपने उसके बाद बतौर प्राध्यापक भी सेवा दी है कॉलेज में, तो उस समय आकाशवाणी आप सुना करते थे, तो क्या महत्व रहा है आपके जीवन में और आकाशवाणी को आज आप किस रूप में देखते हैं?
2: उस जमाने में जब सचित्र ये माध्यम जो है टेलीविजन ये आया नहीं था तो हमारे यहाँ, तो हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं था आकाशवाणी के सिवा। और दूसरी बात की जो खुराक चाहिए मनोरंजन के लिए या व्यक्तित्व के विकास के लिए या लोगों को जानने समझने के लिए, कुछ विद्वानों को, कुछ पुराने वक्ताओं को, जीवन के हर क्षेत्र के कुछ चुनिंदा लोगों को रेडियो के माध्यम से ही हम लोगों को जानने सुनने का अवसर मिला है। यह कह सकते हैं कि जो थोड़ा बहुत हमने दुनिया के बारे में, देश के बारे में, विदेश के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी हमने हासिल की तो उसमें रेडियो का जबरदस्त योगदान, बड़ा योगदान, बड़ी भूमिका है। अगर रेडियो नहीं होता तो एक्सपोजर हम लोगों का नहीं होता, दुनिया की खिड़की जो है हम लोगों के लिए खुलती नहीं। ये आकाशवाणी ने ही हम लोगों को इस काबिल बनाया है कि हम लोग जो है अपने समाज से बाहर निकलकर एक बड़े समाज से जुड़ गए और जो घटनाएं घटती थी देश दुनिया में उन घटनाओं के माध्यम से सबको जानने का, बेहतर संदर्भ में दुनिया को जानने समझने का एक बढ़िया अवसर हम लोगों को मिला। तो यह कहा जा सकता है कि बड़ी भूमिका रही है, केवल हमारे ही जीवन में समाज मैंने आकाशवाणी की भूमिका रही हो ऐसा नहीं है, बल्कि जो बूढ़े लोगों के लिए भी, बच्चों के लिए तो नहीं हम कह सकते, बच्चों के लिए भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम उस समय जमाने में होते थे
1: जी,
2: बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम होते थे। याद तो नाम नहीं है हम, लेकिन इतना ध्यान में है कि बच्चों के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए आकाशवाणी ने, रेडियो ने जो है वो मौका दिया है लोगों, और इसीलिए एक बहुत बड़ा श्रोता वर्ग जो है तैयार हुआ, नई पीढ़ी ही तैयार हुई आकाशवाणी और रेडियो की छत्रछाया में।
1: जी बिल्कुल सर, हम चाहेंगे कि आपने चर्चा की कुछ विशेष कार्यक्रमों की भी, जो बता रहे हैं कि अभी आपके जेहन में बच्चों का कार्यक्रम नहीं आ रहा है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो पसंद का कार्यक्रम हो, आपके पसंदीदा कार्यक्रम कौन से रहे हैं जो आकाशवाणी से प्रसारित हुआ करते थे या आज भी हो रहे हैं?
2: अब आज उस तरह से तो हमको रेडियो सुनने का अवसर नहीं मिलता, इसलिए आज के बारे में ताजा जो है जानकारी हमें नहीं आपके साथ साझा कर सकेंगे, लेकिन हमारे समय में जो सर्वाधिक लोकप्रिय धारावाहिक लंबे समय तक जिसका प्रसारण होता रहा आकाशवाणी के द्वारा वह था लोहा सिंह
1: जी।
2: पता नहीं आप लोगों को याद होगा या नहीं होगा, लोहा सिंह सर्वाधिक लोकप्रिय, मैंने उस समय शाम के समय 7:30 के आसपास उसका समय रहा होगा, उस समय सन्नाटा हो जाता था और हर तरह के लोग, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हुए लोग, विद्वान लोग, सामान्य आदमी, हर आदमी जो है उसमें अपने लिए जो है कुछ ढूंढ लेता था जिससे उसको संतुष्टि होती थी। वो याद है हमारे बाबूजी भी बहुत से शौक से उसको सुनते थे

0: भी मौका मिलता था। अब आज के बच्चों के बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि आज के बच्चों का कितना संपर्क है आकाशवाणी से वो नहीं बता सकते। हम लोगों की पीढ़ी तक जो है सिलसिला चलता रहा, बच्चे भी लाभान्वित हुए, हमारी उम्र के लोग भी हुए और बुजुर्ग भी जिनको संगीत में रुचि थी, तो शास्त्रीय संगीत वगैरह का, लोक संगीत, फिल्मी संगीत, हर तरह के संगीत का, साहित्य संगीत, कला के जो विविध आयाम है, जो रूप है, इन सारी चीजों के बारे में जो भी जानकारी हम लोगों को थोड़ी बहुत मिली या जीवन समृद्ध हम लोगों का हुआ, नई नई सूचनाएं मिली, उसके लिए जो हम आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान दिया है।
1: बहुत सुंदर बात कही सर आपने कि आकाशवाणी पूरे समाज को एक सूत्र में पिरोता है, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों या बुजुर्ग हों, सभी के लिए कार्यक्रम प्रसारित इस पर हुआ करते हैं, क्योंकि यह लोक प्रसारक है तो इसकी जिम्मेवारी भी बनती है। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमसे अपने अनुभव को साझा किया, हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दोस्तों आप सुनते हैं अगले श्रोता से उनका अनुभव आकाशवाणी के साथ कैसा रहा। वो हैं सुमित्रा देवी जो कि बिहार शरीफ से हैं और उन्होंने अपने जीवन का 70 बसंत पूरा कर लिया है। तो आइए सुनते हैं आकाश जी से उनकी बातचीत।
1: जी नमस्कार, मैं आकाश बोल रहा हूँ आकाशवाणी पटना से।
3: अच्छा प्रणाम।
1: प्रणाम प्रणाम जी, कैसी हैं आप?
3: हम बहुत बढ़िया है गुरु के दया से।
1: तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए और बता दीजिए कि आप कहाँ रहती हैं।
3: बिहार शरीफ, सुमित्रा देवी।
1: तो सुमित्रा जी आप बताएं कि आपने आकाशवाणी से जो अपना राबता रखा है, जो अपना जुड़ाव रखा है, कितना पुराना है?
3: बहुत पुराना है, बहुत हमको हंसने के देखता था, सुनता था, हम भी दोनों में सुनते थे।
1: अच्छा, जो आपके हस्बैंड थे वो आकाशवाणी सुना करते थे और वो जॉब क्या करते थे, पेशे में क्या थे, क्या करते थे वो?
3: खेती करते थे।
1: खेती बाड़ी करते थे।
3: हाँ।
1: तो रेडियो के बारे में और क्या यादें हैं आपकी, और अभी आप उम्र के किस पड़ाव में हैं?
3: उम्र 70 तक।
1: 70 साल करीब हो रहा है आपका?
3: हाँ
1: जी। तो रेडियो से और जुड़ी यादें जो हैं थोड़ा साझा करें आप उन्हें हमारे साथ।
3: कौन सी करें?
1: रेडियो से जो जुड़ा आपका याद है, जो आप रेडियो सुनती थी तो कैसा हाँ। लगता था आपके घर में रेडियो? आपने बताया कि अक्सर सुना करते थे लोग, तो आपका
3: बहुत बढ़िया, खेती करके आते थे तब आपके सुनते थे, गाना सुनते थे, भजन सुनते थे।
1: अच्छा,
3: हमको ससुर बहुत बढ़िया सब यहाँ बिहार शरीफ में लाइन आया और तुरंत से रेडियो ले लिया, अथी वाला काठ वाला बड़का, वो महाभारत देखते थे।
1: अच्छा, टेलीविजन की बात कर।
4: श्रोताओं माफी चाहेंगे, हम आपको सुमित्रा देवी से हुई बातचीत पूरी नहीं सुनवा पा रहे हैं क्योंकि घरी ने किया है इशारा और वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का।
2: दोस्तों जाना पहुंचे पानी वहां पहुंचे वाणी, इसी संदेश के साथ लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।
4: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं मगही कार्यक्रम मागधी।

मगधी सुनिहार के निलाद्री के प्रणाम। हन शनिचर आ हमने आगलियन है अपने के पसंद वाला कार्यक्रम लेके मगधी। तो सबसे पहले की बतेबन, बातचीत करबन, की प्रसारित करबन, कौन चीज से मनोरंजन करबन, सबके जानकारी दे दही। आय है राष्ट्रीय डेंगू दिवस, आय वट सावित्री व्रत भी है, प्रकाश दिवस है, आ सिक्किम राज्य के स्थापना के आय 51वां वर्ष है। तो एकाएकी करके एकरा पर बात कर

लोकगीत सुनबै कलाकार सतीश कुमार शर्मा से आ सुनबै एगो वार्ता मगही भाषामे बर्तनीके समस्या आउ समाधान। वार्ताकार हथिन डॉक्टर किरण कुमारी शर्मा। भारतमे राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2026 के आयोजन 16 मई के करल जा रहले हैं। स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालय ई दिवस के आयोजन करे हथिन। एकर जे मुख्य उद्देश्य है कि ओकरा से डेंगू के रोकथाम होवे, जन जागरूकता फैले आ जे डेंगू के होवे के मूल कारक है एडीज मच्छर, एकर जन्म स्थल प्रजनन स्थल के नष्ट करे पर जोर देवल जाए। तो सभी साल कुछ न कुछ विषय लेके ई दिवस के आयोजन होवे है। तो 2026 में एकर जे विषय है, थीम है, वो है देखथिन, साफ करथिन, झाँपथिन आ डेंगू के हराबे के उपाय करथिन। रंग बिरंग के गतिविधि के आयोजन होवे है। मानसून से पहले डेंगू के रोकथाम के लेल जन जागरूकता और मच्छर नियंत्रण बहुत जरूरी है। बचाव के लेल पानी के कजो जमा नहीं होवे देथिन। कूलर होले, फूलदान होले, पुरनका टायर होले, कंटर होले, छत, गड्ढा, ये सब जगह जब पानी जमा हो जाए है तो ओकरा में मच्छर पनप जाए है, तो ऐसा पानी जमा होल नहीं देथिन। बचाव लेल देह के झांपे वाला कपड़ा पहनथिन आ बाँह के भी सौंसे झांपल रहे। रात में सुतथिन भाई दिन में मच्छरदानी लगा के, आ या मच्छर से बचे वाला जे अगरबत्ती होबा है भाया कोनो मशीन रहे है ओकरा जला लेथिन। जो अचानक तेज बुखार, माथा में दर्द, आँख के पीछू दर्द, मांसपेशी आ जोड़ में दर्द लगे तो आराम करथिन। स्थिति जो बेसी लगे कि खराब हो रहा है तो तुरंत अस्पताल में दाखिल होथिन। सुपाच्य खाना खाथिन, पानी के देह में कमी नहीं होवे देथिन। तो ये सब छोट मोट चीज के जानकारी रख के डेंगू के बचाव भी करल जा है डेंगू से, और अगर ग्रसित हो गलिए हैं तो जल्द से जल्द स्वस्थ होवे में सहायक होवे है। तो सबसे पहले हमने कार्यक्रम के शुरुआत अब कर रहलियन है बातचीत के बाद भजन से। तो लोक भजन सुनथिन कलाकार हथिन सतीश कुमार शर्मा।

अभी हमने ई लोक भजन सुनलिए, कलाकार हलखिन सतीश कुमार शर्मा। आ जखनी आइ घर से निकललिए तऽ सगरे देखलिए कि जजो जजो बड़ पीपर के गाछ है, ओजो सब सुहागिन महिला पूजा पाठ करैत सज समर के अपन सुहाग के लंबा उम्र के वरदान मांग रहलखिन। हमनी के जे समाज है, हमनी के जे संस्कृति है, ओकरा में गाछ वृक्ष के इतना महत्तम है। आ वैज्ञानिक सच भी है कि बड़ पीपर जे है से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन दे हथिन। इले ई गाछ के सदियों से पूजा होबे तैले हैं। लेकिन बट सावित्री व्रत जे है, ई पति के लमहर उम्र लेल उपास रह के महिला बट माने बरगद के गाछ के जल ढार के धागा चारोने लपेट के चना गुड़ फल मिठाई के प्रसाद चढ़ावा हथिन, पंखा होंका हथिन, माने हुनका मनुष्य रूप में पूजा हथिन। आ उड़ीसा में इहे में सिल्ला लोढ़ी के भी पूजल जा है। तो लोढ़ी के मानल जा है कि वो अथी के रूप हथिन, भगवान के रूप मानल जा है। जेठ महीना के पुनिया के दिन ई व्रत होबा हन। बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड में मुख्यतः ही पर्व मनावल जा है। सावित्री के कथा महाभारत में भी है। ई व्रत के कहानी हले कि अशुपति राजा के बेटी सावित्री के बियाह राजकुमार सत्यवान से होले हल, जिनकर पिता धीमत सेन जे हलखिन आन्हर हलखिन आ कोई कारणवश वनवास में हलखिन। तो सत्यवान के बियाह के बाद साले भर के उम्र हुनका लिखल हलन। लकड़ी काटे घर जब गेलखिन बियाह के बाद सत्यवान साल भर बाद, तो बेहोश होके मृत्यु के प्राप्त होलखिन। आ पीछू पीछू सावित्री भी हलखिन। तो जब जम एलखिन ले जाए ले हुनकर आत्मा के, तो सावित्रियो हुनका पीछू पीछू जाए लगलखिन। तो यम खिसिया कहलखिन कि इन एकर तो मौत हो गेलै हैं, तो ले जा रहलिए हैं, तू कहला रहला है पीछे पीछे। तो कहलखिन कि हमर पति के लेने जाए हो तो हमर के जिंदगी के हियाँ रह के की करते, हमहूँ जेबे। अंत में जम खुश हो गेलखिन आ कहलखिन कि मांगो 3 गो वरदान आ तू लौट जा। तो सावित्री कहलखिन कि पहल वरदान देथिन कि हमनी के ससुर के आँख ठीक हो जाए। फिर तनी दूर के बाद पीछू पीछू जाए लगलखिन। तो दोसर वरदान में मांगलखिन कि हमर ससुर के राजपट मिल जाए। तो वो तथास्तु कह के जम आगू बढ़लखिन। थोड़े दूर गेला फिर देखलखिन कि सावित्री आइए रहलखिन हैं पीछू पीछू। तो अंतिम में खिसिया कहलखिन कि काहे आब काहे पीछू आ रहला है, तो मांगे एगो आर वरदान देहियो आ तू अपन वरदान लेकर लौट जा। तो कहलकि सावित्री कहलखिन कि हमरा पुत्रवती होवे के आशीर्वाद देथिन। जम दे देलखिन आशीर्वाद, फिर देखलखिन कि आइए रहल हैं पीछू पीछू। फिर जम पूछलखिन अब काहे आ रहल हैं, तो सावित्री कहलखिन हमरा पुत्रवती के आशीर्वाद दे के अपने हमर पति के लेने जा रहलखिन हैं, ई कहाँ के न्याय है। तो ऐसा करके सावित्री अपन पति के प्राण बचेलखिन। आ एकरे जे कहथिन मिथ है भाई कहानी है, एकरा अपन आदर्श मान के आई बट सावित्री के पूजा होबा है। आ हमने के खिस्सा गलबात चलते आ अभी सुनहिए ई वार्ता। बड़ी महत्तम है, महत्वपूर्ण वार्ता है, मगही भाषा में।

0: वर्तनी आ व्याकरण के महत्तम वार्ताकार हथिन डॉक्टर किरण कुमारी शर्मा।
1: मागधी में हमर शीर्षक है मगही भाषा में वर्तनी के समस्या और समाधान। जैसे जैसे आदमी सभ्य होल ओकर मन में कते तरह के भावना हिलोर लेबो लगल। अपन यह भावना के व्यक्त करे लेल ओकरा भाषा के जरूरत महसूस होल। शुरुआत में संकेत से भाव प्रकट कैल गेल जे सांकेतिक भाषा कहलाल। इहे संकेत के कुछ निश्चित प्रतीक चिन्ह में व्यक्त कैल गेल जेकरा प्रतीकात्मक भाषा कहल गेल। इहे प्रतीक बाद में प्रमाणिक लिपि के रूप धारण करके भाषा के रूप में ढल गेल। भाषा वशीकरण मंत्र है जेकरा से मनोरथ के सिद्धि में होबो है। भाषा ज्ञान के शक्ति है जे कालांतर में लोक भाषा साहित्यिक भाषा और राजभाषा के रूप में बट गेल हल। साहित्यिक भाषा व्याकरण के नियम से बंधल हल जबकि लोक भाषा नदी के बहता नीर नियर आगू आगू बहत जहल। राजभाषा राजकाज के भाषा बनल। वैदिक काल के भाषा संस्कृत हल। एकर दू गो रूप हल लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत जनभाषा हल जे बाद में बिगड़ के अपभ्रंश कहल गेल। एकरो तीन रूप हल प्राकृत अपभ्रंश पाली अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। महान मगध साम्राज्य के राजभाषा मागधी हल। मागधी से मगही भोजपुरी मैथिली उड़िया बंगला असमिया आदि भाषा निकल कर मुदा पंडित राहुल सांस्कृत्यायन कहलन है कि मागधी के असल बेटी तो मगहिये है। मगध साम्राज्य के पतन के बाद मगही भाषा बोली के रूप में आम जन के कंठ में बस के रह गेल। सर जॉर्ज गिरियर्सन महोदय के प्रयास से एकरा नया पहचान मिलल। आज ही मगही बोली से भाषा बने के लगभग सभे मानदंड पूरा करके विश्व के द्वारी खटखटा रहल हैं। आज मगही के सबसे बड़गर समस्या वर्तनी और मानकीकरण के है। इस समस्या के मूल कारण है कि मगही में ढेर मनी रूप हमरा सामने है। केकरा सही और केकरा गलत कहल जाए ये विवाद के विषय है। क्षेत्रफल और आबादी के आधार पर मगही के विस्तार मात्र भारत के विविध राज्य नहीं वरन देश के बाहर तक फैलल है। एकर रूप जगह के स्थान के अनुसार बदलत है। इस समस्या के निराकरण लेल वर्तनी के एक रूपता के जरूरत महसूस कैल गेल हैं जेकरा पर सबके सहमति भी बनल हैं। वर्तनी कोई भाषा के सार्थक शब्द ओकर वर्णमाला में जे रूप में लिखल जाए है उ वर्तनी कहला है। हिंदी में एकरा वर्ण विन्यास उर्दू में हिज्जा और अंग्रेजी में स्पेलिंग कहल जा है। वर्तनी धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से विकसित होबा है। मगही वर्तनी के समस्या के भी दो पक्ष है। पहला पक्ष एक रूपता के है। कोई भी भाषा के मानक रूप के दृष्टि से ई जरूरी है कि ओकर अधिकांश शब्द और रूप के सुनिश्चित वर्तनी होवे के चाहिए। ओकरे मानक या शुद्ध मानल जाए। मगही के अनेक रूपता मिटा के सावधान प्रयास कैला से एकरा में एक रूपता लावे के प्रयास निरंतर जारी है। एकर दोसर पक्ष है भूल के। वर्तनी निर्धारित होला के बाद भी अभ्यास बस कुछ भूल हो जा रहल हैं लेखन के क्रम में जेकरा उदार दृष्टि से देखे के जरूरत है। मगही में वर्तनी के समस्या। मगही लिखे में य श्रुति मगही वर्तनी के य में बहुत वैकल्पिक प्रयोग भी मिल रहल हैं जैसे अनेक रूपता से के कारण भी यह बहुविकल्प बन जा है। जैसे आयल आइल आयल दिलायब दिलाइब दिलाएब आदि। कैलक कैलक कैलक कैलक जैसन शब्द भी एकरा में दुविधा उत्पन्न करो हथिन। जैसे जैसन जैसन जैसन खैलू खैलू खैला खैलू आदि। स्थान भेद के कारण इस शब्द में कुछ दीर्घीकरण कुछ में विरोधाभास देखल जा रहल हैं। व श्रुति मगही वर्तनी में व के वैकल्पिक प्रयोग के कारण भी अनेक रूपता है जैसे नाव लाव नाव नेव आदि। देवर देवर देवर लुगाई लुगाई सोई सोई शब्द।

आदि। मगही के कितना शब्द ऐसन है जेकर दुद्दू को रूप लिखे में प्रचलित है, जैसे अपन, आपन, अपन, उहां, हुआ, यहाँ, हियाँ आदि। क्षेत्रीयता का कारण भी एक रूपता के कमी नजर आवे है, जैसे हम, हमें, हम, हमरा, हला, हलन, हली, हेलो, हलो, हे, हाय आदि। पंचम नासिक के व्यंजन लेल मगही में अधिकतर अनुस्वार के प्रयोग प्रचलित है, लेकिन ये अनुस्वार तत्सम शब्द में नहीं लगे है। उदाहरण ले कंघी, चंचल, गंजी, दंत, संघार आदि। कभी कभी अनपेक्षित रूप से भी अनुनासिक के आराम हो जाए से कुछ रूप बदल जाए, जैसे डॉक्टर, दुनिया, कॉपी, आटा, हाथ, पांव आदि। उच्चारण दोष से अनेक रूपता आ जाए, जैसे स्थाई, अस्थाई, अस्थाई, वाजपेयी, वाजपेयी आदि। शिरोरेखा के प्रयोग। मगही में कौन शब्द के मिला के लिखल जाए और केकरा अलग करके लिखल जाए, इहो एगो समस्या है। जैसे दिन भर, दिन भर, एक सुर, राम के आदि। संज्ञा में राम के, सीता से आदि शब्द अलग लिखल जात। सर्वनाम में तोहरा, एकरा, ओकरा जोर करके लिखल जात। समस्त पद में योजक चिन्ह नहीं देवे के चाहिए, जैसे राजनीत, जन्मदिन, देश प्रेम आदि। जबकि द्वंद्व समास के में योजक चिन्ह जरूर लिखे के चाहिए, माता पिता, दिन रात, धर्म कर्म आदि। कुछ शब्द अलग ही लिखल जाए, जैसे तो भी, भर तक, राम भी, कपड़ा तक, हम ही, तू ही आदि। संयुक्त प्रयोग। आके, जाके, रामे, ओही, ऐतय आदि। यहाँ संयुक्त क्रिया में जोर करके लिखे के परंपरा है। पूर्वकालिक क्रिया मिला के लिखल जाए चाहिए, काम करके, घर जाके, विद्यालय से आके। मुदा यदि क्रिया दू गो एक साथ रहे तब एकरा अलग अलग लिखे के नियम जारी है। खा पी के चल जो, नाच गा के जैते। क्रिया के सभे पद अलग अलग लिखल जाए, जैसे हम आ रहली हल, राधा पढ़ैत हलै। वाला शब्द के हर्ष हमेशा जोड़ के लिखे के चाहिए, दूध वाला, फल वाला आदि। ऐसन, सासन, नियर आदि के योजक चिन्ह लगाना जरूरी है, जैसे पान ऐसन, तनीसा, फूल सन, तोरा नियर, कोई न कोई, कभी न कभी आदि। तत्सम शब्द के हूबहू लिखे के चाहिए, एकरा में कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है, जैसे शिक्षा, भिक्षा, भाषा, अग्नि आदि। अंग्रेजी के शब्द जस के तस लिखे के चाहिए, दीर्घीकरण के कोई जरूरत नहीं है। वर्तनी समाधान। मगही में आई, आओ, आओ के बदले आई, आऊ के प्रयोग होबा है। मुदा खाँटी मगही शब्द के कुछ उदाहरण अपवाद स्वरूप भी है, जैसे पैना तेज के अर्थ में है, पैना डंटा के अर्थ में। मगही क्रिया रूप सर्वनाम औ, सर्वनाम से बनल शब्द में आई, औ के बदले आई, औ के प्रयोग होवे के चाहिए, जैसे कैलक, गेलै, गेलौ, ऐसन, कैसन आदि। एकरो में अपवाद है, बैठलै, दौड़लै आदि में आई लगतै। हिंदी के जे शब्द हूबहु है ओकरा में रूप नहीं बदले के चाहिए, जैसे आईना, औरत, औघड़, बैल, भैंस आदि। तत्सन शब्द जे जस के तस लिखे के चाहिए, ताकि संप्रेषणीयता में दिक्कत नहीं होवे, जैसे शिक्षा, भिक्षा, क्षत्रिय, शहर आदि। ज्ञान विज्ञान के कोनो शाखा के तकनीकी शब्द तत्सम लिखा जाए चाहिए, जैसे गुरुत्वाकर्षण, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सापेक्ष आदि। ना, नहीं के बदले न, यो में हलंत के प्रयोग होवे के चाहिए। गेल थुन, गेल थिन, गेल खन के प्रयोग सबसे अधिक प्रासंगिक है, गेल तथिन।

0: नहीं होवे के चाही। कुछ प्रचलित शब्दन के जबरदस्ती मघीकरण नहीं करे के चाही, जैसे भाव के भाव कभी नहीं होत। प्रस्ताव और श्री गणेश में कोई सुधार के जरूरत नहीं है। मघी के खांटी शब्दन के जस के तस रूप रहे के चाही, जैसे अगाती, इंजोर, अजलत, पिट्ठा, मिठा, पिंडा, परतर, दमाही, झग्गड़, अहूठ, बैना, मोरी, भुड़की, डिड़ियाना, गैया, मैया आदि। मघी क्रियापद के विकारी के पहले ब लिखे के चाही, जैसे पढ़ाव, लिखाव आदि। मघी में प्राणीवाचक संज्ञा में लिंग बोध होते, बाकी क्रियापद में एकर असर नहीं होब है। उदाहरण, बबुआ गेलथिन, बबुनी गेलथिन। करो है के बदले कर है लिखे के चाही। मघी के संज्ञा पद के बहुवचन होवे है, बाकी वाक्य रचना करे में संज्ञा के बहुवचन रूप के असर क्रियापद पर कभी नहीं पड़े है। जैसे बुतरवन गेलै, मजदूरवन अलै। सहायक क्रिया है के जगह पर हे या है के प्रयोग कैल जाए। बर्तनी के समाधान एगो लम्हर जटिल प्रक्रिया है, एकरा में अचानक समूल सुधार होना संभव नहीं है। एकर क्रम जारी है और ये क्रम चलत रहत, यही कामना प्रार्थना के साथ। धन्यवाद, आभार।
1: मगही में बर्तनी के समस्या और समाधान ई विषय पर सुनलखिन ई वार्ता। आय है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मने जे पृथ्वी पर प्रकाश से संबंधित जे उपकरण है वो कैसे प्रकाश फैला रहले हैं, ओकर की भूमिका है, यह सबसे संबंधित ई दिन आई 16 मई के मनावल जा है। 1960 में भौतिक विज्ञानी थियोडोर मैमन लेजर से एकर पहला सफल संचालन कैलखिन हल। ई दिवस विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा और सतत विकास में प्रकाश और प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान करे के लिए मनावल जा है। आ प्रकाश आधारित तकनीक के उपयोग संचार, ऊर्जा और चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी पैमाना पर करल जा है। आ अब हमने आगू बढ़े आ सुनइए पूर्वी कलाकार एक बार फिर से हथिन सतीश कुमार शर्मा।

निमन निमन लोकगीत सुनलखिन सतीश कुमार शर्मा से। हिनका देहिए ई लोकगीत लेल धन्यवाद। आ एकरा से पहिने जे हमने वार्ता सुनलिए ओकरा लेल डॉक्टर किरण कुमारी शर्मा के भी धन्यवाद। आ आय है हमने के देश के सिक्किम जे 22वां राज्य बनले हल ओकर 51वां स्थापना दिवस। तो आई सिक्किम अपन 51वां स्थापना दिवस मना रहले हैं। सिक्किम राज्य के बहुत बहुत बधाई। आ अब हमनी के समय ओरिया रहलन है तो हमनी के विदा दथिन। फेर मिलबन। प्रणाम।

अभी आप सुन रहे थे मगही कार्यक्रम मागधी। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। शाम के 6 बज रहे हैं। लीजिए सुनिए आज सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ ही देर में यानी शाम 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। शाम 6:20 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत समाचार प्रसारित किए जाएंगे। ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम चौपाल आप सुनेंगे शाम 6:30 पर और 7 किसान भाइयों के लिए खेती गृहस्थी। कार्यक्रम चौपाल एवं खेती गृहस्थी में आप सुनेंगे महेश प्रसाद लिमका से मगही लोकगीत। सात बजकर 30 पर प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे और 7:52 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार एकांश की प्रस्तुति सामायिक चर्चा।

मैक पर कार्यक्रम सुगम संगीत में आप सुनेंगे रूपा सिंह से गजल। रात 9:30 पर राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती और रात 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित केवल्य कुमार गौरव से ख्याल गायन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। तो ये थी आज सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण बस कुछ ही देर में। एक जमाने से

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
5: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त शाम के 6:05 हो रहे हैं। श्रोता, आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय के संगे, चित्रा की आवाज और फिल्म थी अरमान। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत समाचार
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कथितं यत् वैश्विक समाह्वानान् निवारणाय विश्वसनीयस्य भविष्यस्य कृते सज्जतायाः च आपूर्ति श्रृंखलायाः निर्माणार्थं भारत नेदरलैंड्स देशौ सहभागित्वं कुर्वन्तौ स्तः। भारतमवसराणां भूमीति वर्णितम्। सेनाध्यक्षेण जनरल उपेन्द्र द्विवेदिना पाकिस्तानं भयोत्पादकेभ्यः आश्रयं प्रदातुं भारतस्य विरुद्धं कार्याचरणाय च सावधानं कृतम्। पश्चिमबंग सर्वकारेण 11,000-2,000 प्रदीयमानानां जातिप्रमाणपत्राणां पुनः सत्यापनं कर्तुम् आज्ञापितम्। CBSE इत्यनेन 12 कक्षायाः छात्राणां कृते उत्तरपत्राणां द्विस्तरीय पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया घोषिता। अपि च थाईलैंड ओपन बैडमिंटन क्रीडायाम् अद्य बैंकॉक नगरे उपांत्य चक्रीय क्रीडायां मलेशिया देशस्य युगलं पराजित्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग सेट्टी इत्येतयोः भारतीय पुरुष युगलं अंतिम स्पर्धायां प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् भारत नेदरलैंड्स देशौ विश्वस्यापि समाह्वानानां निवारणाय विश्वसनीयं पारदर्शकं भविष्यस्य कृते आपूर्ति श्रृंखलायाः निर्माणार्थं मिलित्वा कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। यत्सः बहुविध संकटैः ग्रस्तं आपद्दशकम् इति वर्णितम्। नीदरलैंड्स देशस्य हेग नगरे स्वस्य 5 देशानां यात्रायाः क्रमे सामुदायिक कार्यक्रमं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् विश्वं COVID-19 महामार्या वर्तमान संघर्षेण उद्भूत ऊर्जा संकटं चेत्यादीनां अभूतपूर्व प्रतिसन्धिं सम्मुखीकरोति।

0: नमस्कार उदय भाई,
1: नमस्ते अंजुला बहन,
0: की हाल चाल है?
1: सब बढ़िया, सब ठीक ठाक बा। रघुआ सुनाई कैसन बा?
0: आज तो भाई हमने सब के त्योहार है, बट सावित्री व्रत पूजा, और आज तो
1: देख के बुझा तो रहा के जे रुआ।
0: हाँ लगी के चाहिए, देख पहनावा और ये से तो आदमी के पते चल जाए कि हाँ आज का है चेहरा और पहनावा, यही दो तो बतावे है कि भाई
1: बर जेबा। हाँ, बड़ पीपर पाकड़। हाँ, हमने की है ये तीन पेड़ के महत्व बहुत ज्यादा।
0: हाँ,
1: बर के शक्ति के प्रतीक मानल जाला।
0: बिल्कुल।
1: और शक्ति में धाजा बांधे के जे हमने लाल जे रुआ लोग लपेटी ले, एक मतलब कि जे बालो श्रीमान जी लोग वहाँ के शक्ति सामर्थ्य और वहाँ के लंबा जीवन के कामना, तो शुभकामना सब लोग के।
0: यदि सब महिला और पुरुष के भी शुभकामना ऐसे ही जीवन रहुआ
1: दी पुरुष के, हमने कहा तो भाई मेहरारू लोग के देव ऐसे देव की भाई इतना त्याग करके और पूजा कर रहे वो लोग लंबा जीवन खाते। लेकिन
0: हमारा वो याद है, यही तो भारत के एक समृद्ध परंपरा है कि भाई महिलाओं के सम्मान, महिला सबके सम्मान मिले है। क्या है कि जो महिला के त्याग है ओकरा तो भगवान बुद्ध भी स्वीकार करथिन है।
1: अरे

0: धरती पर स्वीकार्य हुआ, कहाँ करते, नहीं तो हम तो स्वीकार करते बने, लेकिन आज जज रुआ त्योहार के नहीं है, और आज महसूस भइल हुई कि हाँ आज जे बा बड़ा दिन जे रला, दिन में गर्मी और तपिश
1: बिल्कुल,
0: ज्यादा रला।
1: तो यही सबसे यही लगे तो हमने सब जो है कि पंखा के भी पूजा करे ताकि हमर पति लोग तनी ठंडाएल रहथिन, और गर्मी के दिन है और पति के साथ साथ भाई सब लोग ठंडा रहे के चाहिए, और एकरा लगी बचाव करना भी बहुत जरूरी है कि गर्मी और लू से कैसे बचे।
0: नहीं, बिना जे बा, बिना जे हवा भी देवला, ओकरा में बेंट भी रहेला, और बेंट जे बा पकड़ के रहे लोग जब डोराई ले तो जाहिर बात बा हवा के एहसास तो होबे करेला।
1: हवा के साथ साथ तनिक अब एकरा पर हम का ज्यादा बातचीत करें कि तनी इधर उधर अगर मौसम गड़बड़ाए तो बेंत से तनी ठीक भी करल जाए, तो
0: नहीं
1: वैसे ही गर्मी से
0: ऐसा ना
1: ठीक।
0: करे, वैसा ना करे। खैर, मौसम गर्मी के बाद और थपेरा लू के बाद तो मन में कुछ अलग अलग तरह के भाव उठ सकेला।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल।
0: समय जे बा अंजलि बहन, ओकरा अनुरूप हमनी का सावधानी बरते के आवश्यकता
1: बिल्कुल
0: होला।
1: बिल्कुल
0: और मौसम बदल रहल बा, मौसम में अब गर्मी जे बा वो आहट दे रहल भी है, और गर्मी जैसे ही आहट देवला और एमे यदि हवा चले तो फिर लू के रूप में आवेला, और धीरे धीरे शरीर में शुष्कता होखे लगेला, और
1: बिल्कुल।
0: आदमी जे बा वो बीमार भी पड़ जाला, बुखार
1: और ये
0: होवे
1: घड़ी
0: और
1: देखा कि कितना के पेट में दर्द और सर में दर्द और कुछ अनपच के तरह महसूस कर रही थी ना, ये सब गर्मी के ही लक्षण है, तो आदमी के सतर्क रह के चाहिए, और ये ना कि बाहर निकल गई और अचर कचर खा ले ली या गरिष्ठ भोजन कर ली, ये सब से अभी बचना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ तरल पदार्थ मतलब पेय पदार्थ ज्यादा लेथिन, जैसे कि अपनी पहले तो हम सब भी नींबू पानी और शरबत पहले परंपरा ही हले कि रोज शाम के उठ करके आदमी शरबत पिए हले, तो वैसे ही तरल पदार्थ के सेवन करथिन, नारियल पानी पीथिन और छाछ पीथिन, तो इस तरह से शरीर में पानी बनल रहा है।
0: निश्चित। देखिए, इस समय होला कि यह समय में कई तरह के सावधानी बरते के आवश्यकता होला। एक तो हमनी के कपड़ा जे बा वो हल्का पहने, ताकि शरीर में जे भी वाष्पन होखे, जे भी गर्मी होखे, वो निकलत रहे और हवा के प्रवेश होत रहे, ताकि त्वचा का जे बा वो हवा के साथ ओकर संपर्क रहे, हल्कापन महसूस होला।
1: बिल्कुल
0: दूसर का
1: बिल्कुल।
0: चीज़ ये कि इस समय में यदि दोपहर में कहीं निकल रहल बनी, 12 बजे से लेके 4 बजे लग, तो निकले से तो एक तो यदि ना निकली तो ज़्यादा बढ़िया बा, यदि निकली तो शरीर के वो
1: ढक
0: हिसाब से
1: करके।
0: ढक के माथा तो जरूर ढक ले, काहे कि सीधा असर जे बा मस्तिष्क पर ही होला, धूप के खड़ा
1: बिल्कुल।
0: जब घाम पड़ी तो वो बीमार करेला। तो ऐसे इस बात के ध्यान रखें। एक बात और अंजुला बहन, कि प्रकृति जे बा हर मौसम के अनुरूप हमनी के स्वास्थ्य के उपाय कैले बिया। ऐ समय में रुआ देखे कि आम जे बा वो तनी हो जला, मने गुटा जला, तो आम के आम झोर ये बड़ा फायदेमंद है। यदि
1: बिल्कुल।
0: कभी भी लू के शिकार रुआ हो जाए तो रुआ देखे कि आम झोर जे बा या फिर आम के गूदा निकाल के
1: शरीर में
0: ओकरा के
1: लगा
0: शरीर
1: के।
0: पर ले, हम तो देखले बनी कि एक दिन के
1: हम
0: भीतर
1: सबके बचपन में लग जा हले तो दादी नानी सब यही सब उपाय कर रहे थे, माए भी उपाय कर रहे थे कि पका के आम के गूदा पूरा शरीर में लपेट के और फिर स्नान करा दे हलथिन और अमझोरा पिला दे
0: बड़ा
1: हलथिन।
0: चिकन हो जाला देह,
1: हाँ,
0: लेकिन
1: तो
0: ओकरा बाद तो हाथ
1: एकदम
0: फिसलत रहला।
1: हाँ, तो इस तरह से लू के बचाव करे के चाहिए, और खीरा ककड़ी तरबूज आदि के भी फल के सेवन करे के चाहिए, लेकिन बाहर के कटल ये फटल फल से बचाव जरूर करथिन, काहे कि ओकरा में संक्रमण लगे के खतरा ज्यादा होवल है।
0: आज के समय में और ज्यादा होला, कहे कि कुछ न कुछ जे बा वह तरह के केमिकल के प्रयोग फलन पर हो ही जा रहल बा, तो बहुत देखे बहुत जल्दी सड़ जाए के या बहुत जल्दी ओकरा खराब हो जाए के, और उस शरीर में यदि ओकरा के उपयोग में ले तो शरीर में भी वो हानि पहुँचावेला। तो सर का चीज़ की यदि बहुत ज्यादा लागे कि हमारा गर्मी लाग गेल बा, हमारा लू के प्रकोप हो गेल बा, तो पानी तो पी ही ठंडा जगह पर आश्रय ले ली, और ओकरा अलावे यदि संभव हो तो चिकित्सक से परामर्श जरूर ली।
1: बिल्कुल
0: कहे कि
1: बिल्कुल।
0: कुल मिला के रुआ शरीर में कितना पानी के कमी भइल बा, जितना डिहाइड्रेशन बा, तो वह बारे में जे जल के आपूर्ति शरीर का चाहिए ओकरा खातिर चिकित्सक ही समुचित परामर्श दे सकेला।
1: बिल्कुल, तो गर्मी और लू से बचाव कर लगी अपने सतर्कता रखना बहुत जरूरी है और उपाय करना बहुत जरूरी है। और

0: और आगे श्रोता लोग के इंतजार करते होते हैं कि भाई लोकगीत कब होवे,
1: हाँ
0: तो हम सब सुने ही लोक भजन महेश प्रसाद लिम्का से।
1: सुनेंगे।

0: अंजुला बहन, पार कर दे जमुनुआ। अच्छा लागल।
1: बहुत
0: महेश
1: बढ़िया।
0: प्रसाद लिमका जी आज के कलाकार रहनी।
1: लोक भजन।
0: अच्छा लगबे करल, खैर भजन रल, लेकिन जे संदर्भ रल उ तनी छेड़छाड़, प्यार मनुहार, इजहार, इशारा, तो जब इस तरह के माहौल बने तो अच्छा तो लगबे करी, अच्छा तो लगही के चाहे।
1: कान्हा जे हलथिन ओ छेड़छाड़ के से ही ज्यादा जानल जा हथिन, और वो छेड़छाड़ में एक मिठास, एक के प्रेम और एक श्रृंगार हले। अभी के छेड़छाड़ से तुलना करना बेकार है, कि अभी अगर ये न कि
0: हम तो तुलना ना करनी है, हम
1: ना पहले सतर्क अपने के हम पहले सतर्क करते ही कि भाई देखा ये जे कान्हा

0: छेड़छाड़, बहुत लोग तुलना करे लगे थे भाई कृष्ण भगवान करलखिन तो हम का ना करम, है कि ना?
1: ये बात सही
0: हाँ
1: बात। और
0: सही
1: देखिए देखिए
0: ना?
1: देखिए ओकरा पीछे जे भी होके ठीक बात बा कि ये सब बात आइल बा हमनी के धर्म ग्रंथन में शास्त्र में, लेकिन एकर मतलब ये कहीं से भी नहीं है कि वो अश्लीलता के स्वरूप में ना रहे।
0: ना
1: छेड़छाड़ और अश्लीलता जे बा दोनों दू तरह के चीज़ बा और दोनों के दू रूप में समझे के आवश्यकता बा, क्योंकि
0: बिल्कुल।
1: प्रकृति के सृजन ही यह रूप में भइल बा कि प्रकृति में पुरुष और नारी ये दोनों जे बा वो सहगामिनी बा। तो सहगामिनी जब हो तो दोनों में दो कुछ ना कुछ तो वह तरह के संबंध रहबे करी जो उन्हें के अपना रूप में उकर इजहार होला उकर के कहल जाला कुछ इशारा कुछ और जे जे जे हो सकेला। लेकिन एकरा के कभी भी एह रूप में यदि आप ले कि वो अश्लीलता भाई या फिर उकर प्रकटीकरण कोनो यदि गलत ढंग से हुई तो फिर वो तो दंडात्मक हो जाला, वो तो
0: बिल्कुल। और एक
1: ऑफेंस हो
0: चीज
1: जा।
0: हमें ये भी उदय भाई बता देवला चाहे कि कृष्ण बालक के रूप में उनका जितना भी देख अगर छेड़छाड़ के बाद जहाँ करी तो मटका फोड़ना और ये करना रास्ता रोकना तो एक बालक के नटखटपन के ओजे हो भाई
1: निश्चित
0: चुलबुलापन
1: निश्चित निश्चित
0: वही वही चीज हले ओकरे हम ओकरे
1: वही वही
0: मन
1: वही
0: वही
1: हम
0: वही
1: वही
0: बात।
1: वही हमनी
0: हाँ
1: के
0: हाँ
1: स्वाभाविकता बा और
0: हाँ
1: वही जीवन के हमनी के खूबसूरत क्षण बा पल बा जेकरा
0: बिल्कुल
1: के आज हमनी का शहरी जीवन में खो रहल बनी ओकरा के
0: बिल्कुल।
1: नइखी संजो पावत। और बालपन के जे रूप बा वो रूप जे बा अपना तरह से वो जीवन के एक अलग जैसे बाल्यकाल के आनंद जे बा वो जीवन के एक बड़ा खूबसूरत पल होला और बड़ा खूबसूरत आनंद बा। समय हमनी के हो गइल बा अब
0: प्रायोजित कार्यक्रम के।
1: प्रायोजित कार्यक्रम के, तो सुने के हमनी का ये प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल।
0: चलो सुनिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रद्धा IVF भिकना पहाड़ी पटना 4।
2: नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से शनिवार का दिन है, लेकिन आज एक बात कह देना चाहते हैं कि एकाध दो सप्ताह तक आप शनिवार को ये कार्यक्रम सुनेंगे ममता का आंचल, लेकिन बहुत जल्दी हम इसे संडे को शिफ्ट करने जा रहे हैं। आपको समय बता दिया जाएगा कि किस वक्त आप ये कार्यक्रम सुन पाएंगे, रविवार के दिन। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। ममता का आंचल ये कार्यक्रम हम वैसे दंपतियों के लिए लेकर आते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिनके शादी के 2-3-4 साल हो गए लेकिन अभी भी बच्चा नहीं है, और अब बच्चे का हो जाना उनके जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक बीमारी है, हाँ ये एक बीमारी है जो स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलने से इसे ठीक किया जा सकता है। और हमें ऐसा लगता है इस कार्यक्रम को सुनकर बहुतों को फायदा हुआ है और लोग हाँ मस्ती में हैं, लोग हंसी खुशी इस कार्यक्रम का लाभ भी उठा रहे हैं। बहरहाल डॉक्टर श्रद्धा चखियार हमारे साथ होती हैं इस कार्यक्रम में, IVF विशेषज्ञ हैं, और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्रद्धा IVF एंड मेटर्निटी की तरफ से। जी हाँ, जो पटना के भिकना पहाड़ी मोड़ में है। आप चाहें तो नंबर लिख सकते हैं, बड़े बुजुर्ग आपके लिए भी विशेष रूप से एकदम अंडरलाइन करके कह रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी को समझिए, बच्चों को प्रेरित कीजिए। डॉक्टर श्रद्धा चखियार हमारे साथ बैठी हैं, आज उनसे हम बातचीत करेंगे। पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने भी बताया कि समाज या परिवार सिर्फ औरतों को दोष देता है, लेकिन समस्याएं पुरुष में भी होती हैं। आज का सवाल है, बहुत लोगों के दिल में ये होता है पर जुबान पर नहीं आ पाता है ना, तो इसे जुबान पर लाना है। डॉक्टर साहिबा, अगर पुरुषों में शुक्राणु यानी स्पर्म की कमी हो जाए, हाँ, और वो अच्छा खाना शुरू कर दें, गुटखा सिगरेट तंबाकू छोड़ दें, तो क्या इनके रिपोर्ट में जो आ रहा था नो स्पर्म सीन या कम, तो ये जो है ठीक हो सकता है क्या?
3: सबसे पहले तो नमस्कार श्रोताओं, नमस्कार राजेश जी।
2: नमस्कार।
3: आज का सवाल बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा इसलिए भी है क्योंकि इसमें एक अच्छी बात है कि पुरुष को अपना रिपोर्ट देख के ये समझ में आ रहा है कि कमी है और लाइफस्टाइल ठीक करना चाहिए, और वो पुरुष ये भी इस चीज के लिए भी तैयार है कि वो गुटखा जो भी
2: नशीली
3: नशीली
2: हाँ,
3: चीज है,
2: नशीली चीज है हाँ।
3: उसको बंद करना चाहते, जिसका बहुत बड़ा रोल है
2: जी
3: शुक्राणु की कमी को ठीक करने में।
2: हाँ,

0: लेकिन सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है, पुरुष में शुक्राणु की कमी हम लोग कब कहते हैं। WHO ने अपना मापदंड दिया है
1: जी,
0: जिसमें ये कहा जाता है कि पुरुष में शुक्राणु की कमी है। शुक्राणु की कमी भी हो सकती है, शुक्राणु निल भी हो सकता है
1: जी,
0: लेकिन कब ये अलार्मिंग है ये जानना जरूरी है। और ये मापदंड मैं सारे श्रोताओं को बताना चाहती हूँ
1: जी,
0: जो भी अपना जांच करा रहे हैं और एक अच्छे लैब में जांच करा रहे हैं।
1: हाँ।
0: तो शुक्राणु का जो टोटल संख्या होना चाहिए, काउंट होना चाहिए, कम से कम 16 मिलियन पर ml होना चाहिए।
1: ओके।
0: उसकी जो चाल होनी चाहिए वो 40% से ज्यादा होनी चाहिए।
1: शुक्राणु की चाल।
0: बिल्कुल।
1: हाँ।
0: और शुक्राणु जो का जो बनावट है वो कम से कम 4% बढ़िया शुक्राणु होना चाहिए, तभी उस पुरुष को अपने आप से बच्चा ठहर सकता है। अगर थोड़ी बहुत कमी है और आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करते हैं तो उनकी समस्या जरूर ठीक हो सकती है।
1: कार्यक्रम चल रहा है ममता का आंचल। अगला सवाल आपकी तरफ से एकदम तैयार है, हम डॉक्टर श्रद्धा से पूछेंगे, लेकिन आपको बता दें एक बार फिर से डॉक्टर श्रद्धा का नंबर, कहीं भी कोई भी हाँ सवाल होना, छोटा से छोटा सवाल भी तो आप पूछिए। 9162562266 9162562266 ये नंबर है डॉक्टर श्रद्धा का, श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी, एक राष्ट्रीय स्तर का हाँ क्वालिटी IVF सेंटर है जिसके तरफ से ये कार्यक्रम हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। आगे बढ़े इससे पहले एक बहुत विशेष सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल और भी है। बहुतों को पैसे की समस्या होती है, तब उसकी चिंता भी श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी ने दूर कर दी है। आप किस्तों में, टुकड़ों में पैसा दे सकते हैं और ये टुकड़ा 24 महीने तक भी जा सकता है, सिर्फ इसलिए कि हम आपके परिवार में खुशियां देखना चाहते हैं। पैसे के चलते अगर आप बच्चा या IVF नहीं करवा पा रहे हैं तो वो समस्याएं अब खत्म हो गई। आज ही बात कीजिए डॉक्टर श्रद्धा से, 9162562266 ये नंबर है। चलिए लौटते हैं कार्यक्रम में। बड़े बुजुर्गों आपके लिए भी कहा गया, हाँ इसलिए मैंने रुक के कहा है अलग से कि आप सुन लीजिए। डॉक्टर श्रद्धा आपने कहा कि लाइफ स्टाइल अगर ठीक हो जाए तो क्या शुक्राणु जो निल है या शुक्राणु जो कम हो गया है उसको वापस लाया जा सकता है क्या, और लाइफ स्टाइल ठीक करने का क्या मतलब है?
0: शुक्राणु अगर कम है तो लाइफ स्टाइल का रोल है।
1: हाँ।
0: लेकिन शुक्राणु अगर निल है
1: हाँ।
0: तब जरूरी है आपको निसंतान रोग विशेषज्ञ से ही इलाज कराने का। शुक्राणु अगर कम है तो लाइफ स्टाइल का रोल है। उसमें अगर आपके लाइफस्टाइल में जो अभी हमने अभी तुरंत बात किया उन चीजों के बारे में कि तंबाकू गुटखा ये सब से दूर रहें, जो लोग को कुछ बीमारी है जैसे डायबिटीज थायराइड अगर ये सब है तो उसको कंट्रोल रखें। कभी कभी डायबिटीज भी एक कारण होता है जिससे शुक्राणु की संख्या घटती है। जो लोग जिम जाते हैं और स्टेरॉइड का इंजेक्शन लेते हैं या कुछ सेक्स लेते हैं जिसमें स्टेरॉइड रहता है, उन चीजों से दूर रहें क्योंकि उससे भी शुक्राणु की संख्या घटती है। कुछ लोग मजबूरन या जिस कारण भी गर्म जगह पे काम करते हैं, ये भी अपने आप में एक कारण है जिससे शुक्राणु घटता है और मरता है। तो इन चीजों से दूर रहें, अच्छा खाना पीना खाएं, खुश रहें, रोज व्यायाम करें और इससे भी आपका जो शुक्राणु की संख्या बेहतर होती है। लेकिन साथ में मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आपने ये सब कर लिया
1: जी।
0: तो उसके बाद और आपके अगर मतलब आपको पहले से पता था कि शुक्राणु की कमी है, आपने अपना लाइफस्टाइल ठीक किया, खाना पीना ठीक किया
1: जी।
0: तो आपको अपना दोबारा जो जांच कराना चाहिए शुक्राणु का वो 3 महीने बाद कराना चाहिए क्योंकि 72 डेज से 80 डेज जो होता है उसमें एक नया जो होता है नया शुक्राणु का बैच आता है।
1: अच्छा।
0: तो हमें तभी पता चलेगा कि ये लाइफस्टाइल कितना काम किया, कारगर रहा और आप अपने आप से अपना इलाज कर पाएंगे।
1: वैसे दंपत्ति जिनके शादी के 2-3-4 साल हो गए, अब घर में नहीं बैठना है, चुप्पी तोड़ना है। चुप्पी टूटेगा तभी रास्ता निकलेगा। आपको विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलना है। बच्चा नहीं होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अब विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। IVF पद्धति से आप बच्चा प्राप्त कर सकते हैं और आपके घर आंगन में ये

0: जो कार्यक्रम राजेश लेकर आ रहा है वो श्रद्धा आईवीएफ एंड मैटरनिटी, जी हाँ, भिकना पहाड़ी मोड़ पटना में है, उनकी तरफ से एक अलग जगाने के लिए है ना। और हमारे समाज का हरेक व्यक्ति का ये कर्तव्य है, घर का तो है ही, समाज के हरेक व्यक्ति का कर्तव्य है कि ऐसे दंपत्ति को मोटिवेट करें कि डॉक्टर से मिलें, विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलें और सफल हो जाएं बच्चा प्राप्त करने में। बहरहाल एक सवाल पूछता है, एक सहज जिज्ञासा है, आपने ये करो ये ना करो कह दिया आपने, थाली कैसे सजनी चाहिए, वो कौन सा हैंडसम फूड है जिसको खा करके हम तंदुरुस्त हो सकते हैं?
1: बिल्कुल, खान पान का बहुत बड़ा रोल होता है, ना केवल निसंतानता में, हर चीज में, चाहे आप डायबिटीज बोलिए, शुगर बोलिए, थायराइड बोलिए, मोटापा बोलिए, हर चीज। लेकिन जो लोग निसंतानता से ग्रसित हैं उनको ये बोला जाता है कि आपका जो थाली है उसमें हर रंग का खाना होना चाहिए। अगर सब्जी की ही बात करें, आप हर दिन हरी सब्जियां खाएं, जैसे लौकी, भिंडी, परवल, पालक साग, मेथी, गाजर, सहजन। प्रोटीन भी आपके डाइट में प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि हर रोज आपके प्लेट में दाल आप जरूर डाल लें, राजमा, चना, अंडा, पनीर, जो लोग चिकन मछली खाते हैं वो ये भी खा सकते हैं। नट्स का भी बहुत रोल है
0: जी।
1: आपको अगर आप सक्षम है तो हर दिन आपको बादाम, अखरोट, कद्दू के दाने, तिल, ये सब जरूर सेवन करें
0: जी।
1: और चावल, दाल, रोटी, सब्जी तो खानी ही चाहिए,
0: वो तो एकदम रेगुलर।
1: लेकिन
0: है।
1: हर जो चीज से दूर रहना चाहिए वो है मैदा से दूर रहे, एक्सेसिव बिस्किट, नूडल्स, पिज्जा, पास्ता, ये सब से दूर रहे।
0: हाँ।
1: फल का सेवन अवश्य करें, अमरूद, आंवला, संतरा, मौसमी, ये सब का सेवन जरूर करें। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिनका भी रोल है ये शुक्राणु बढ़ाने में, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, कोक्यू, जिंक, सिलीनियम। और अच्छी बात है कि अभी जो भी मैंने फल, सब्जी और ये नट्स, बादाम का बात किया, उसमें ये सब अवेलेबल है। इसलिए आप अपना खाना समझकर खाइए, घर का खाना खाइए और जंक फूड से दूर रहिए, ताकि आपके शरीर में जितनी भी जो दिक्कत हो रही है खान पान के कारण वो ठीक हो सके और आपके शुक्राणु भी ठीक हो पाए।
0: पुरुषों, इसमें कहीं से लज्जित होने की बात नहीं है, कमी किसी में भी हो सकती है जिसको ठीक किया जा सकता है। और विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाएं तो पति पत्नी दोनों जाएं, साथ में जाएं और एक दूसरे पर शंका की निगाह नहीं रखें, भरोसा रखें एक दूसरे पर, हेल्दी टाइम स्पेंड करें और डॉक्टर के पास जाके प्यार मोहब्बत से बात करें। जैसे डॉक्टर श्रद्धा चखियार के पास आप जा सकते हैं, नंबर एक बार बता रहे हैं 9162562266, 9162562266। पूरी नींद भी ले। डॉक्टर साहिबा एक बात बताइए, वैसे दंपत्ति भी बहुत सारे हैं जो अपने डाइट को भी उन्होंने ठीक किया है और सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, लेकिन अब कुछ नहीं, तो उनका क्या?
1: देखिए, इसमें भी दो चीजें, अगर अभी आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले तो अपना जांच करा लें। अगर आपका शुक्राणु, पुरुष का शुक्राणु बिल्कुल ठीक है तो फिर आप डाइट और सप्लीमेंट लेते रहिए, जब आपको बच्चा चाहिए आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका शुक्राणु कम है और आप सिर्फ डाइट और सप्लीमेंट्स के चक्कर में हैं, तो आप अपना जरूरी जो समय है वो खो रहे हैं, क्योंकि उम्र के साथ भी शुक्राणु की गुणवत्ता घटती है
0: जी।
1: तो अब जरूरी है आप निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलें और अपना इलाज कराएं। देखिए, अभी तक तो हमने बात किया वैसे लोगों का जिनमें शुक्राणु की कमी है। एक मास ऑफ पीपल वो भी होता है जिन लोग में शुक्राणु निल होता है
0: जी, जी।
1: तो कोई दिक्कत नहीं है, आप निसंतान रोग विशेषज्ञ के पास जाएं, वो आपका इलाज वो आपका जांच करेंगे। कभी कभी ऐसा भी कंडीशन होता है कि शुक्राणु नहीं है लेकिन पोथी में शुक्राणु होता है, जिसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया कहते हैं, तो उनको भी टीसा, माइक्रो टीसा, इक्सी, ये सब जैसे टेक्निक है, आईवीएफ के ही एक मतलब हायर वो चीज है जिससे बच्चा हो सकता है
0: जी।
1: तो कहीं भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, मेल जो पुरुष निसंतानता है आज उसका बहुत सारा इलाज हो चुका है, जिस तरह से औरत में निसंतानता का बहुत सारा इलाज है वैसे ही पुरुष निसंतानता का भी बहुत सारा इलाज है। लेकिन ज़रूरी है सही डॉक्टर से मिले, सही समय पे इलाज करें। अगर आप अपना सही समय

0: कीमती समय खो देते हैं तो फिर आपको अपने से बच्चा ठहरना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
1: बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट फिकर नॉट, हाँ चिंता नहीं करनी है, डॉक्टर के पास जाना है, सारा समाधान हो जाएगा। ये एक छोटी सी बीमारी है, सही इलाज से आपकी पत्नी कंसीव कर लेंगी, बच्चा होगा घर के अंदर। डॉक्टर श्रद्धा आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है, लेकिन बैठे रहिए, दो बातें हम कर लें। पैसे का कोई प्रॉब्लम है तो उनको बता दें कि अब आप सभी श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी में इंस्टॉलमेंट पर टुकड़ों में हाँ पैसा दे सकते हैं, 24 बार में दे सकते हैं। आप बात करके तो देखिए, आप एक कदम बढ़ाइए, हम 4 कदम आपकी तरफ लेकर आएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वैसे दंपत्ति अब चुप्पी तोड़ें। हाँ किसी से हाँ शर्माने की बात नहीं है, शर्म की कोई बात ही नहीं है, एक बीमारी है जो ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे। और डॉक्टर का नंबर हम आपको बता रहे हैं, 9162562266, 9162562266। राजेश निकलेगा आज के कार्यक्रम से ये बताते हुए कि हो सकता है अगले महीने से ये कार्यक्रम आप संडे को सुने। और दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात, बुजुर्गों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानिए, अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए, बातचीत कीजिए, बैठा के मंत्रणा कीजिए। और ये जो नंबर है ना 9162562266, खुद से लगा के बात कर लीजिए ना, फिर उनको बता दीजिएगा। चलिए डॉक्टर श्रद्धा निकलते हैं आज के कार्यक्रम से, कहते हैं नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रद्धा IVF भिकना पहाड़ी पटना 4।
3: अंजुला बहन, हाँ
4: हाँ,
3: अभी हमने का सुनत रही है अपन कार्यक्रम चौपाल। समय चौपाल के संपन्न हो गिल बा, थोड़ा देर के बाद फिर हमने का खेती गृहस्थी में बातचीत कर लीजिए।
5: इधर आइए, इधर
6: इधर,
5: हाँ विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए, और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
7: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
6: अच्छा ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
7: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
6: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
7: शुभ वाणी,
6: लाभ वाणी,
5: आकाशवाणी।
4: उदय भाई, खेती किसानी में हम सब कुछ किसान भाई के फायदा की बात करें, लेकिन कोई ऐसा फायदा है जे हमनियो सब लगी भी बहुत फायदेमंद हुए, अब बुझावल मुझे नहीं आई अपने के भाषा में।
3: हम बुझ तो गई नहीं, हम बुझ ऐसे गई नहीं कि जोन चीज रुआ पसंद बा, रुआ आज ओकरा बारे में ओकर फायदा के बारे में बात करे के चाहते नहीं। तो ये बात सही बा कि उत्पादन तबे होला जब ओकर उपभोग होके, जब ओकरा खातिर बाजार उपलब्ध होके। और ऐसे जोन बात रुआ मशरूम के आज करे जा रहल बनी, मशरूम के भी बड़ पैमाना पर अब उत्पादन हो रहल बा, और एकर उपयोगिता के देखत, स्वास्थ्य के प्रति एकर फायदा के देखत, अब लोग बड़ पैमाना पर मशरूम के खा रहल बा, सब्जी बना के।
4: मशरूम में प्रोटीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन के बेहतरीन स्रोत पावल जाए, जेकरा से कुपोषण दूर करे में तो मदद मिले है। साथ ही साथ आजकल देख सब लोग वजन घटावे के प्रति तनी ज्यादा आकर्षित हथिन, तो मशरूम के बहुत तरह के व्यंजन बना के उखा हथिन, और बाजार में अभी तो बहुत मांग है। और शादी ब्याह में तो देखिन कि मशरूम के तरकारी, मशरूम के चीनी, बहुत तरह के व्यंजन जो है परोसल जा है। तो किसान भाई एकरा उत्पादन करके और आर्थिक मुनाफा बहुत अच्छे से कमा सका थी।
3: देखिए धीरे धीरे, पहले मशरूम के बारे में हमनी के समाज में जागरूकता कम रहे, धीरे धीरे एक और उत्पादन बढ़े लागल, कई लोग के में प्रयास बा, जे लोग भी यह दिशा में काम कर रहल बड़े। और आज के दिन में ऐसन भइल बा कि मोटा मोटी हर घर में कभी न कभी बहुत जगह तो नियमित रूप से, लेकिन

0: कभी ना कभी भोजन में मशरूम वो थाली में
1: बिल्कुल।
0: पहुंच गइल बा, पहुंच रहल बा।
1: और भाई देखा, जहाँ मीट मछली ना बने तो लोग कहते हैं कि मशरूमे के सब्जी बना दे, अगर मीट मछली ना खाते कहते हैं तो मशरूमे के तरकारी बन जाए।
0: हाँ, बड़े
1: तो
0: बड़े कुछ तो माने के पड़ी नु कि चल ही ना तो वो, लेकिन वो
1: हाँ, तो लोग यही कहते हैं कि भाई मशरूम के बना दे, ओकर भी स्वाद जो है मतलब मटन के समान हो, वही वैसे वैसे ही मतलब थोड़ा सा आकार
0: अंजुला
1: प्रकार भी
0: अंजुला
1: लगे रहे।
0: बहन रुआ पहले ही कहनी है, ठीक बा, स्वाद तो जे होके से होके, लेकिन प्रोटीन जेबा भरपूर मात्रा में, विटामिन डी भरपूर मात्रा में, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, आई इस सब चीज जेबा शरीर का पोषण खातिर प्रोटीन समझते बनी, जे भी हमनी के सेल्स टूट जाला ओकरा के मरम्मत करे के काम, विटामिन डी हमनी के बहुत जरूरी बा, कहे क्योंकि हड्डी खातिर भी जरूरी है, तो एक तरह से फाइबर पाचन प्रक्रिया में सहयोग करेला, तो ई सब जे एंटीऑक्सीडेंट हमनी के जे बा कोनो तरह के यदि संक्रमण, बाह्य संक्रमण आक्रमण होला तो ओकरा से ताकत देवल, तो सब
1: बिल्कुल
0: चीज अब बुझे कि अतना चीज जे बा वो सब जमल बा।
1: बिल्कुल।
0: तो
1: तो भाई मशरूम के उत्पादन के तो बहुत फायदा है, जैसे अपने बात करते हैं कि इतना ओकरा में गुण है, और साथ ही साथ ये जो है छोटा पैमाना पर भी खेती करके किसान भाई बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। एकरा घर के एगो छोटा से बंद कमरा में ठंडा वातावरण में भी उगावल जा सके है, और एकरा लगी बहुत बड़का खेत के जरूरत ना पड़े, तो और इस साल भर भी उगावल जाए। तो भाई आम के आम और गुठली के दाम, तो मशरूम उत्पादन करे से गांव के लोग के भी फायदा हो जाए, वही जगह पर युवा सब के भी रोजगार मिल जाए, और ओकरा अच्छा पैकेजिंग करके बाजार में अच्छा मुनाफा के साथ बेच सकते हैं। तो आत्मनिर्भर बने में भी मशरूम के उत्पादन एगो बहुत कारगर सिद्ध हो वही।
0: हाँ, एक तो कम लागत बा, कम जगह बा, और अरुआ आशा के अनुरूप जे बा ओकरा के उत्पादन कर सकीले। एगो बात जानते कि ना, खइला से दिमागो तेज होला आ याददाश्त बेहतर होला, दिल जे बा ओकरा में कोलेस्ट्रॉल जो जम जाला ओकरा के कम करे में मदद करेला, तो एकदम दिल के जे बा वो मजबूत करेला,
1: तो
0: दिल दम
1: भाई
0: मजबूत, दिमाग भी मजबूत।
1: दिल मजबूत, दिमाग मजबूत, और टनाटन भी मजबूत। तो इस तरह से आज के दौर में शहरी बाजार, होटल और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के कारण उपभोक्ता में एकर खपत बहुत बढ़ गई है, और कम पूंजी और कम जगह और कम मतलब सालों भर उत्पादन के चलते मशरूम के खेती करना बहुत ही लाभदायक है।
0: हाँ, ऐसे हमनी के एकरा तरफ अब तत्पर होके के चाहिए, और
1: हाँ
0: आज के समय में अब ए दिशा में बहुत लोग काम कर रहल बा,
1: बिल्कुल।
0: मने अब देखे हर क्षेत्र में मशरूम उत्पादन के प्रति जागरूकता फैलावे खातिर लोग भी काम कर रहल बा, सरकारी स्तर पर भी मशरूम से जुड़ल जानकारी मिल रहल बा कि कैसे छोट छोट जगह में रुआ एकरा के उत्पादित करनी, एकरा खातिर
1: बिल्कुल।
0: पहले हमनी के यहाँ उत्पादन तो होत रहल, बाजार के उपलब्धता के समस्या रहल, लेकिन धीरे धीरे अंजुला बहन इस समस्या
1: बिल्कुल
0: अब बहुत हद तक हल हो रहल बा,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और लोग जे बा ओकरा के उपभोग कर रहल
1: तो
0: बा।
1: ठीक है भाई, आपने भी खेती करथिन और सरकार भी तो एकरा में अनुदान दे रहथिन एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत, और इतना बढ़िया बात करे से मन तो झूम रहले है। तो झूमे के बाद लोकगीत में भी एगो झूमर आवे है, तो का है ना, हम सब सुनी कलाकार हथिन महेश प्रसाद लिम्का।
0: सुने क्या?

0: बहुत सुंदर गीत, हम रहते बिरज के मोर, इनका से आगे और भी गीत सुनवाई। और अभी हम सब मशरूम के खेती के बातचीत कर रहे हैं उदय भाई, तुम देखते कि खेती किसानी में फायदा की बात जब हो गई तो ऐसा भी खेती करे के चाहिए कि सालों भर ओकर उपज प्राप्त हो और बाजार में वो अच्छा से बिक सके।
1: तो अंजला बहन, आज यही विषय पर संरक्षित खेती और उसके लाभ, ये
0: वार्ता
1: विषय बा
0: सुन
1: आज के और वार्ताकार बने डॉक्टर राज नारायण सिंह,
0: सुने ही
1: सुने
0: खेती
1: के
0: की
1: वहां
0: वार्ता।
1: से ई वार्ता।
2: संरक्षित खेती का मतलब होता है खेती करने का एक आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका, जिसके अंतर्गत पौधों को विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों या प्रतिकूल वातावरण जैसे तेज गर्मी, तेज सर्दी, तेज हवा, तेज प्रकाश की तीव्रता, अतिवृष्टि, अनावृष्टि इत्यादि से पौधों का बचाव, पौधों का संरक्षण एवं उन्हें अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करने से है, जो उनके बढ़वार में सहायक हो और उससे अच्छी गुणवत्ता का संवर्धन हो सके। इस प्रकार से खेती को हम संरक्षित खेती कहते हैं। संरक्षित खेती के अंतर्गत कई कृत्रिम संरचनाएं बनानी पड़ती हैं, जैसे पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, ग्लास हाउस, वर्किंग टनल, लो टनल आदि। उस संरचनाओं के अंदर तापमान, आर्द्रता, वायु का बहाव, प्रकाश की तीव्रता और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर काफी हद तक नियंत्रित किया जाता है और पौधों की बढ़वार में सहायक सभी अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं। संरक्षित खेती आज हमारे किसानों के लिए वरदान।

सिद्ध हो रही है और इसे अपनाकर वो अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं और स्वरोजगार का सृजन भी हो रहा है। युवा वर्ग भी इस प्रकार के वैज्ञानिक और आधुनिक खेती के प्रति आकर्षित हो रहा है एवं संरक्षित खेती में अपना भविष्य खोज रहा है। इस प्रकार जब हम किसी फसल का उत्पादन मुख्य जैविक या अजैविक कारकों से बचाते हुए करते हैं तो उसे संरक्षित खेती का प्रभाव कहा जाता है। संरक्षित खेती कृषि की वह पद्धति है जिसके अंतर्गत संसाधन संरक्षण तकनीक की सहायता से टिकाऊ उत्पादन स्तर के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रख करके फसल उत्पादन किया जाता है। संरक्षण खेती मृदा की ऊपरी व निचली सतह के अंदर प्राकृतिक जैविक क्रियाओं को बढ़ाने पर आधारित है। संरक्षित खेती प्रणाली में उपलब्ध संसाधनों का व्यवहार एवं संरक्षण करते हुए किसी स्थान विशेष पर भौतिक, सामरिक एवं आर्थिक स्थिति के अनुसार टिकाऊ फसल उत्पादन के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाते हैं। इसके सिद्धांतों पर ही संरक्षित खेती का आधार बनता है। खेती की सतह की न्यूनतम जुताई संरक्षित खेती का ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कार्बनिक पदार्थ जैसे मिट्टी हमारे खेती का एक मुख्य अवयव है क्योंकि यह फसलों को पोषक तत्व प्रदान करता है तथा मृदा संरक्षण के स्थिरीकरण में मदद करता है एवं लाभदायक जीवाणुओं की संख्या बढ़ाता है। निरंतर जुताई करने से मिट्टी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण बढ़ाता है जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति और उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होती है और मृदा क्षरण मिलती है। मिट्टी के सतह पर फसल अवशेष का प्रबंधन संरक्षित खेती में न्यूनतम जुताई की जाती है जिससे फसल अवशेष मिट्टी की सतह पर बने रहते हैं। मिट्टी पर फसल अवशेष का आवरण मिट्टी में सूक्ष्म वातावरण तैयार करने और जीवाणुओं तथा अन्य लाभकारी जीवों के संरक्षण एवं उनके संवर्धन में सहायक होता है जिससे उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है और फसल अवशेषों का विघटन हो करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ावा मिलता है। संरक्षित खेती के लिए ज़रूरी है टिकाऊ एवं लाभदायक फसल प्रणाली। खेत में फसलों को बदल बदल कर लगाने से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों एवं जीवाणुओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है जिसके फलस्वरूप फसल को पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। इसे अपनाने से पानी में पोषक तत्वों कार्बनिक पदार्थों इत्यादि का मिट्टी के प्रोफाइल में बेहतर वितरण होता है जिसके परिणामस्वरूप मिट्टी की उर्वरा शक्ति और जल संग्रहण क्षमता में वृद्धि होती है। संरक्षित खेती के लिए जो आधुनिक मशीनें हैं उनका व्यवहार बहुत ही प्रभावी है और इसके माध्यम से हम खेती के सतह को और खेती के लिए अनुकूल वातावरण को संवर्धित कर सकते हैं। लैंड लेजर लेवलर, बेड प्लांटर, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर आदि ऐसे आधुनिक मशीनें हैं जिसके व्यवहार से मिट्टी के सतह का बहुत कम क्षरण होता है और उर्वरा शक्ति का संरक्षण होता है। संरक्षित खेती के कुछ बिंदु हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक होता है। जहां संरक्षित खेती करनी है वहां का वातावरण और परिस्थितियां जो है वो अनुकूल बने इसका ध्यान रखना होता है। बागवानी फसलों में संरक्षित खेती का जो है व्यवहार बहुत लाभदायक है। संरक्षित खेती अपनाने के लिए किसानों को बाजार के उपादानों पर बहुत निर्भर नहीं रहना पड़ता और संरक्षित खेती से मिट्टी की उर्वरा शक्ति का संरक्षण और संवर्धन होता है। संरक्षित खेती के अनेक फायदे हैं जिसके व्यवहार से किसान भाई जो है वो अपने उत्पादन और अपनी उत्पादकता को स्थिर और संरक्षित रख सकते हैं। संरक्षित खेती करने से फसलों में रोग एवं कीटों का प्रकोप कम हो जाता है। जंगली जानवर एवं अन्य पशुओं से फसलों की रक्षा होती है। वातावरण को नियंत्रित करके सभी मौसम में अनुकूल फसलों जैसे सब्जियों, फलों आदि की खेती की जा सकती है। फूलों एवं सब्जियों की नर्सरी तैयार करके हम अच्छे दामों पर उसकी बिक्री भी कर सकते हैं। युवाओं को संरक्षित खेती के माध्यम से रोजगार के सृजन की संभावनाएं बढ़ती हैं और उनकी आमदनी में भी वृद्धि होती है। संरक्षित खेती के माध्यम से बाजार की मांग के अनुसार हम फसलों का उत्पादन करके और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए संरक्षित खेती का
प्रभाव ज़्यादा अच्छा

0: होता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण इसके माध्यम से होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि संरक्षित खेती आज के वातावरण में एक अनिवार्य मांग बन गई है। हमारी फसल पद्धति में मौसम में हो रहे परिवर्तन का बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण से खेती के उत्पादन और उत्पादकता में कमी की संभावना व्यक्त की जा रही है। संरक्षित खेती के माध्यम से हम फसलों को एक आर्टिफिशियल या कहते हैं कृत्रिम वातावरण बना करके और किसी भी समय में हम अच्छे फसलों का उत्पादन कर सकते हैं और उससे लाभ ले सकते हैं। संरक्षित खेती के लिए एक महत्वपूर्ण अवयव होता है ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस की संरचना पारदर्शी या अर्ध पारदर्शी होती है और उसमें उसके अंदर अंतः ताप बढ़ाकर पौधों की बढ़ोतरी के लिए उपयुक्त तापमान विकसित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत प्लास्टिक हाउस बनाते हैं, पॉली टनल और ग्लास टनल का निर्माण करते हैं और उसमें मौसम के अनुसार पौधों के बिचड़े और उनकी खेती का काम हम लोग करते हैं।
1: हाँ, तो हम सब अभी उपयोगी वार्ता सुनते हली उदय भाई, संरक्षित खेती एवं उसके लाभ, और वार्ताकार हलथिन डॉक्टर राज नारायण सिंह।
2: हाँ
1: तो बहुत बढ़िया जानकारी दिलथिन और समय के हिसाब से कैसे खेती करे के चाहिए, तो ये वार्ता लगी इनका धन्यवाद एक रही।
2: और आगे अब
1: आगे भाई देश तेजी से विकास कर रहे है और ऐसा में हम सब भी विकास करते ही, तो विकास गीत होवे के चाहिए।
2: हाँ
1: तो सुने ही ये गीत महेश प्रसाद लिमका से।
2: सुने क्या।

जन्म ले लिया यही माटी में, छोड़ कहीं नहीं जा मेरे, जे सुख मिले गांव में अपने।

0: वाह, एक से एक गीत सुनाने महेश प्रसाद लिम्का
1: तो
0: आज के
1: इनका
0: यहाँ का कलाकार नहीं है।
1: इनका धन्यवाद है, बहुत इतना अच्छा अच्छा गीत लगी।
0: अंजुला बहन, समय अपना कार्यक्रम के अब संपन्न हो रहा बा, तो चले गए।
1: बिल्कुल। तो और फिर लेकिन हम सब मिलवे और अपने से भी तो जरूर मिलवे, उम्मीद है एक दिन
0: मिला रे,
1: मिलके हम
0: मिलल जाएंगे।
1: बातचीत
0: हमने कहा
1: करम।
0: दूर कैसे हो सकेले, श्रोता लोग से रुआ से इतनी दूर
1: बिल्कुल
0: कहाँ बने,
1: बिल्कुल।
0: तो
1: तो
0: चले गए।
1: हाँ, नमस्कार उदय भाई।
0: नमस्ते अंजुला बहन।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण और किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल एवं खेती गृहस्थी। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 7:26 हो रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक प्रभु राम।
1: वो हृदय वज्र के समान कठोर होता है जो प्रभु चरित का गान सुनकर हर्षित नहीं होता।
0: सुनिए प्रतिदिन प्रातः 6:35 पर संत तुलसीदास कृत रामचरितमानस गान।
2: भगवान शंकर अपनी भार्या पार्वती को प्रभु के अवतारों की कथा और अभीष्ट बता रहे हैं। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं तो पृथ्वी पर अवतरित होकर प्रभु असुरों का नाश करके देवताओं को स्थापित करते हैं।
3: एक जमाने से कहानी

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: इधर आइए, इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की घोषणा, मुजफ्फरपुर और किशनगंज में जल्द शुरू होगी सीमेंट फैक्ट्री। राज्य में विशेष अभियान चलाकर भूमि सर्वे के लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा, विभागीय बैठक में लिया गया फैसला। सीबीआई ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में पुणे में पदस्थापित प्राध्यापक मनीषा गुरुनाथ मंधारे को किया गिरफ्तार। और ईओयू ने आय से अधिक संपत्ति मामले में झाझा में पदस्थापित ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुजफ्फरपुर और किशनगंज जिले में दो सीमेंट इकाइयां लगाए जाने के स्वीकृति दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी देते हुए कहा कि बिहार में औद्योगिक निवेश का नया अध्याय शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड SIPB की 67वीं बैठक में सीमेंट की दो बड़ी फैक्ट्री स्थापित किए जाने को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में विशेष अभियान चलाकर भूमि सर्वे के लंबित कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। पटना में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान श्री चौधरी ने अधिकारियों को भूमि परिमार्जन और सर्वे का काम समय सीमा के भीतर तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद विभागीय मंत्री दिलीप जायसवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भूमि विवाद एक गंभीर समस्या है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर सर्वे कार्य में अतिरिक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी।
1: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत विभिन्न तरह के जो हमारे सेवाएं चल रही है उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने समीक्षा किया और उन्होंने राजस्व विभाग के बारे में स्पष्ट निर्देश दिया कि जल्द से जल्द जो है सभी कामों का निपटारा हो, और इसके लिए उन्होंने हमें विशेष करके बहुत सारे पदाधिकारी भी इसमें देने का काम किया है कि स्पेशल ड्राइव चलाया जाए और सर्वे के काम में तेजी लाया जाए जिससे जो जमीन विवाद को लेकर के अपराध के मामले आते हैं उस अपराध पर रोक लगाया जा सके।
0: कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किसानों, उद्यमियों और युवाओं से कृषि अवसंरचना कोष AIF से जुड़कर

0: अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। पटना में विभागीय बैठक के दौरान केंद्र की इस योजना की समीक्षा की गई। श्री सिन्हा ने कहा कि इसका उद्देश्य राज्यों में कृषि अवसंरचना में सुधार के लिए मध्यम और दीर्घकालिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य में इस योजना के तहत नवंबर 2025 तक 2045 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें सबसे अधिक 834 भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए गोदाम परियोजनाएं शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों को पूरी गंभीरता से आगे बढ़ा रही है। शेखपुरा में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि राज्य सरकार आम जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरे मन से कार्य कर रही है।
1: बिहार के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी का जो कार्यकाल रहा है वो स्वर्णिम कार्यकाल रहा है। उन्होंने जो लकीर खींचा है उस लकीर को बढ़ाने के लिए सम्राट चौधरी जी के हाथों में कमान दिया है। तो मैं समझता हूँ कि जो काम नीतीश कुमार जी ने किया है उस लकीर को ये बड़ा करेंगे, ऐसा विश्वास और भरोसा है। निश्चित रूप से बिहार की जनता की जो आकांक्षा है, जो आशा है, उसको वर्तमान सरकार जरूर पूरा करेगी।
0: राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्ष पर युद्ध जनित स्थितियों को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री कुशवाहा ने कहा कि दुनिया भर में घटनाक्रम के कारण तेल के दाम बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। श्री कुशवाहा ने कहा कि विपक्ष को अनर्गल बातें छोड़कर एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी चाहिए।
2: यह जो विषय है जिसके कारण तेल का दाम बढ़ रहा है, यह विषय तो पूरी दुनिया से संबंधित है। इसमें भारत का बहुत कंट्रोल तो है नहीं, इसलिए ऐसे समय में लोगों को चाहिए, विपक्ष के भी जो भी नेता हैं, कि एक जिम्मेवार नागरिक की तरह परिचय दें, अनर्गल बात न करें।
0: प्रदेश के जनजातीय बहुल गांवों में 18 मई से 25 मई तक जन भागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की इस योजना में इन गांवों में शिविर लगाकर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से आवेदन लिया जाएगा और उन्हें सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया है कि जिले के किशनगंज त्रिवेणीगंज और वसंतपुर प्रखंड के चयनित गांवों में शिविर का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे में कार्यरत जंतु विज्ञान विषय की प्राध्यापक मनीषा गुरुनाथ मंधारे को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में यह 9वीं गिरफ्तारी है। आरोपी प्राध्यापक ने परीक्षा में संभावित प्रश्नों को विशेष कोचिंग कक्षाओं में छात्रों को लिखवाया था। इनमें से अधिकांश सवाल 3 मई को आयोजित परीक्षा में पूछे गए थे। इस मामले में अब तक दिल्ली जयपुर गुरुग्राम नासिक पुणे और अहल्यानगर से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इधर सीबीआई ने देश भर में 6 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाकर आज कई आपत्तिजनक दस्तावेज लैपटॉप मोबाइल फोन और बैंक पासबुक जब्त किए हैं। जब्त सामग्रियों की जांच की जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई ने आज जमुई के झाझा में पदस्थापित ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार के पटना और जमुई स्थित 4 ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी आय से अधिक संपत्ति मामले में की गई है। जानकारी के अनुसार तलाशी के दौरान आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 2 करोड़ रुपए अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ है। छापेमारी के दौरान नकद समेत निवेश के कई कागजात बरामद किए गए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: इधर आइए, इधर
4: इधर।
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है

0: 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभ वाणी,
0: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाश

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। श्री द्विवेदी ने नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति को सामने रखते हुए ये बात कही है।
1: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
0: राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर आज देश और प्रदेश में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने का आह्वान किया है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया संदेश में लोगों से सरकार के डेंगू नियंत्रण प्रयासों में बढ़ चढ़ कर सहयोग की अपील भी की है। इधर जहानाबाद, शेखपुरा और मुंगेर समेत विभिन्न जिला मुख्यालयों में आज जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में अस्पताल कर्मी और विभिन्न संस्थाओं के स्वयंसेवी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड स्थित लक्ष्मीपुर गांव में आज जीविका भवन का उद्घाटन किया। ये भवन भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन तथा पंचायती राज मंत्रालय के तत्वावधान में बनाया गया है। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बनने और वातावरण में नमी के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में प्री मानसून की स्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद समेत प्रदेश के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भागों में अधिकतर स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश की आशंका जताई है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है।
2: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: और अब एक महत्वपूर्ण सूचना।
3: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
0: प्रदेश में आज वट सावित्री पूजा पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं और सत्यवान सावित्री की कथा सुनती हैं। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि सुबह से ही महिलाएं वट वृक्ष के पास पूजा अर्चना के लिए जुटी रहीं। योजना और विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा है कि प्रदेश में कानून और सुशासन का राज है। श्री कुशवाहा रोहतास के शिवसागर में बुद्ध पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। मुंगेर जिले के खड़गपुर प्रखंड अंतर्गत प्रसुंडा बासा बहियार में हाई टेंशन बिजली के तार की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। किशनगंज जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने गवन डंगा थाना में पदस्थापित दारोगा को निलंबित कर दिया है। साथ ही एक जवान को लाइन हाजिर कर दिया गया है। दोनों पर एक महिला की हत्या मामले की जांच के दौरान एक व्यक्ति से मारपीट का आरोप है। कथित मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। शेखपुरा पुलिस ने 7 मई को कसार थाना क्षेत्र के वर्षा गांव में एक 5 वर्षीय बच्चे के अपहरण के बाद हत्या के मामले में 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक बलराम कुमार चौधरी ने बताया कि फरार अन्य 3 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। नालंदा के राजगीर में कल से मलमास मेले का आयोजन किया जाएगा। पर्यटन विभाग के विशेष सचिव सह निदेशक उदयन मिश्रा ने बताया कि कल ध्वजारोहण, देवी देवताओं के आवाहन और पूजन के साथ मेले का शुभारंभ होगा। उन्होंने बताया कि 27 मई को प्रथम शाही स्नान, 31 मई को द्वितीय, जबकि

0: 11 जून को तृतीय शाही स्नान का आयोजन किया जाएगा। इधर हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुंगेर के हवेली खड़गपुर प्रखंड के ऋषि कुंड में एक माह तक चलने वाला मलमास मेला आज से शुरू हो गया। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के अवसर पर कल कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बिहार इकाई की ओर से पटना में जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि इन शिविरों में लोगों को उच्च रक्तचाप से निपटने की सलाह दी जाएगी। औरंगाबाद जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा ने जल कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय किया है। सांसद अभय कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय की योजना भवन में आयोजित बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। मधुबनी जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नोनिया टोला से पुलिस ने एक महिला को भारी मात्रा में गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की घोषणा, मुजफ्फरपुर और किशनगंज में जल्द शुरू होगी सीमेंट फैक्ट्री। राज्य में विशेष अभियान चलाकर भूमि सर्वे के लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा, विभागीय बैठक में लिया गया फैसला। सीबीआई ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में पुणे में पदस्थापित प्राध्यापक मनीषा गुरुनाथ मंधारे को किया गिरफ्तार। और ईओयू ने आय से अधिक संपत्ति मामले में झाझा में पदस्थापित ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: श्रोताओं लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार एकांश की प्रस्तुति जिले की हलचल।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है भागलपुर जिले की हलचल। भागलपुर जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता विनोद कुमार।
3: भागलपुर जिले के विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। मई के अंत तक हल्के वाहनों का परिचालन शुरू किए जाने की संभावना है। दरअसल पिछले दिनों विक्रमशिला सेतु का एक स्लैब गंगा नदी में समा जाने से उत्तर बिहार का भागलपुर से सड़क संपर्क बाधित हो गया था। यह सेतु मुख्य रूप से भागलपुर को नवगछिया से जोड़ता है। घटना के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद श्री चौधरी ने ध्वस्त पुल का एरियल सर्वे कर जल्द से जल्द आवागमन बहाल करने का निर्देश दिया। इधर घटना के बाद पथ निर्माण विभाग ने प्रथम दृष्टया लापरवाही बरतने के आरोप में राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल भागलपुर के कार्यपालक अभियंता साकेत कुमार रोशन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं राज्य के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने विक्रमशिला सेतु का निरीक्षण करने के बाद कहा कि सेतु पर मई के अंत तक हल्के वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए विभागीय निगरानी के साथ साथ आईआईटी इंजीनियरों की देखरेख में प्रमंडल स्तर पर मॉनिटरिंग कराई जाएगी।
4: हम भी अपने कार्यालय में 9 कमिश्नरी को बांटे और उसमें अलग अलग हर कमिश्नरी में एक इंजीनियर रहेगा और उसका पूरा रूपरेखा तैयार करेगा, उसमें कितने सड़क हैं, कितने पुल हैं, कब बना है, कब शुरू हुआ, क्या स्ट्रेंथ है, क्या इसका लाइफ है, इस सारी जानकारी हमारे कार्यालय से होगी।
3: इधर अधीक्षण अभियंता विपिन कुमार चंद्र के नेतृत्व में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की 100 सदस्यीय टीम बेली ब्रिज निर्माण कार्य में जुट गई है। उन्होंने बताया कि गिरे हुए स्लैब की जगह 34 मीटर, उत्तर दिशा के कमजोर स्लैब की जगह 12 मीटर तथा दक्षिण दिशा के कमजोर स्लैब की जगह 24 मीटर लंबा बेली ब्रिज बनाया जाएगा। फिलहाल नाव और जेटी सेवा के माध्यम से लोगों का आवागमन कराया जा रहा है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग यात्रियों की सुरक्षा और परिचालन व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। जिले में भारत की जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है। प्रगणक हर घर जाकर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। वहीं जिले में किसानों को डिजिटल पहचान देने के लिए

0: किसान पंजीकरण अभियान भी चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों और अन्य वरीय अधिकारियों के साथ जनगणना और किसान पंजीकरण अभियान की समीक्षा बैठक की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समय सीमा के भीतर सभी कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नगर परिषद सुल्तानगंज कार्यालय में हुए गोलीकांड के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। श्री चौधरी ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य सरकार स्वर्गीय कृष्ण भूषण कुमार की धर्म पत्नी को नियमानुसार सरकारी नौकरी देगी। इससे पूर्व पीड़ित परिवारों को 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की गई थी। दरअसल बीते दिनों नगर परिषद सुल्तानगंज कार्यालय में हुए गोलीकांड में कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल नगर सभापति राजकुमार गुड्डू ने 12 दिनों तक जिंदगी और मौत से संघर्ष करने के बाद पटना के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी रामधनी यादव को घटना के अगले दिन पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। बीते दिनों भागलपुर व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 10,000 से अधिक मामलों का आपसी सहमति से निष्पादन किया गया तो 6,81,00,000 रुपए की राशि का सेटलमेंट हुआ। भागलपुर सहित राज्य के अन्य चयनित शहरों में मल्टीपल ग्रीनफील्ड सेटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना अब धरातल पर उतरने लगी है। 22 अप्रैल को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में भागलपुर सहित 11 शहरों के आसपास ग्रीनफील्ड सेटेलाइट टाउनशिप विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। भागलपुर में बनने वाली नई टाउनशिप का नाम विक्रमशिला रखा जाएगा। सरकार की इस पहल से लोगों में खुशी का माहौल है। राज्य मंत्रिमंडल विस्तार में जिले से बिहपुर विधायक और भाजपा नेता इंजीनियर शैलेंद्र को पथ निर्माण मंत्री तथा गोपालपुर विधायक और जदयू नेता शैलेश कुमार उस बुलो मंडल को ऊर्जा मंत्री बनाए जाने से जिले में खुशी का माहौल है।
1: अभी आप सुन रहे थे भागलपुर जिले की हलचल। भागलपुर जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता विनोद कुमार।
2: आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है सामयिक चर्चा।
3: नमस्कार, सामयिक चर्चा में मैं सविता पारीक आपका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो देश और प्रदेश के एक एक नागरिक से जुड़ा है, जनगणना 2027। जी हां, जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया जो न केवल नागरिकों की गिनती करती है बल्कि देश की योजनाओं, संसाधनों और विकास की दिशा का आधार भी बनती है। देश भर में इस समय जनगणना की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस बार की जनगणना कुछ खास है क्योंकि इसमें तकनीक के बेहतर उपयोग, नागरिकों की सुविधा और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए कुछ नए प्रावधान किए गए हैं ताकि हर व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। तो आखिर क्या है वो खास बातें और प्रावधान और कैसे आप इस महत्वपूर्ण कार्य में भागीदार बन सकते हैं, इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं बिहार में जनगणना कार्य निदेशालय की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी सह निदेशक रंजीता जी। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा की वर्ष 2013 के अधिकारी हैं और इससे पहले आप राज्य में कई अहम विभागों की जिम्मेदारियां भी संभाल चुकी हैं। रंजीता जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत, अभिनंदन।
4: बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी।
3: निदेशक महोदया, कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे जनगणना 2027 के बारे में। संक्षेप में आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि इस जनगणना का उद्देश्य और खासियत क्या है।
4: सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि जनगणना केवल व्यक्तियों की गणना नहीं है। जनगणना में जनसांख्यिकी आंकड़ों के अलावा हम लोग जनसंख्या की संरचना, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के भी आंकड़े एकत्रित करते हैं। जनगणना दो चरणों में संपन्न की जाती है। प्रथम चरण हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस यानी मकान सूचीकरण और मकानों की गणना से संबंधित होता है। बिहार में यह चरण 2 मई से 31 मई तक संचालित है। इस चरण में मकान की संरचना से संबंधित और उस मकान में उपलब्ध सुविधाओं और वहां रहने वाले परिवारों से संबंधित कुछ मूलभूत प्रश्नों की जानकारी ली जाती है। इस प्रकार के कुल 33 प्रश्न अधिसूचित किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। दूसरा चरण हमारा पॉपुलेशन इन्यूमरेशन यानी जनसंख्या गणना का होता है। इसके लिए हमारा जो समय है वो फरवरी 2027 का प्रस्तावित है। इस चरण में व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक जानकारियां ली जाती है। इसके अलावा जैसा आपने कहा कि इस जनगणना की खास विशेषता क्या है, मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि इस बार यह जनगणना

0: पूरे तरीके से डिजिटल मोड में संपन्न की जाएगी। जैसे पूर्व के वर्षों में कई प्रकार के प्रपत्र हुआ करते थे जिसको डिजिटाइज करना पड़ता था, अब इस बार जो हमारे प्रगणक हैं वो फील्ड में जाएंगे, आपके घर जाएंगे, उनके मोबाइल में पहले से ही एक ऐप डाउनलोडेड होगा, उस ऐप के माध्यम से वो सारी जानकारियां एकत्रित करेंगे। तो एक ये विशेषता हो गई। अगली विशेषता की अगर बात करें तो इस बार प्रत्येक गांव और प्रत्येक शहरी वार्ड में डिजिटल जियो रेफरेंस्ड बाउंड्रीज की व्यवस्था की गई है, जिससे ना कोई घर छूट पाएगा और ना किसी घर का दोहराव हो पाएगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव इस बार किया गया है जन सहभागिता को और बढ़ाने के उद्देश्य से। सेल्फ इन्यूमरेशन यानी स्वगणना की सुविधा दी गई है। तो प्रथम चरण के आरंभ होने के 15 दिन पूर्व स्वगणना की सुविधा दी गई है। तो अगर कुल मिलाकर कहें तो इस बार की जनगणना अधिक आधुनिक, पारदर्शी, सटीक होने के साथ साथ समय की बचत करने वाला और जन सहभागिता को बढ़ाने वाली जनगणना है।
1: जी बहुत ही खूबसूरत जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जैसा कि आपने मेंशन भी किया कि एक नई सुविधा दी गई है इस बार नागरिकों को, वो है एसी की, जिसकी अवधि बिहार में खत्म हो चुकी है। तो यही जानना चाहेंगे कि इस एसी के लिए, स्वगणना के लिए राज्य में नागरिकों का कैसा उत्साह आपको देखने को मिला, कितने लोगों ने ये स्वगणना में भाग लिया और आप लोगों की उम्मीद क्या थी, उस अनुसार बिहार के नागरिकों ने अपने आप को कितना डिजिटली साउंड शो किया है।
0: मुझे ये बताते हुए, यह जानकारी साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि बिहार वासियों ने सेल्फ इन्यूमरेशन को लेकर अत्यधिक उत्साह दिखाया है और 46,82,000 से ज्यादा हाउस होल्ड्स ने स्वगणना की है। इसके अलावा हमारा जनगणना को लेकर जो टोल फ्री नंबर है 1855, उस नंबर पे कई प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं जो कि सेल्फ इन्यूमरेशन से संबंधित है। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि लोगों में जनगणना को लेकर न केवल उत्साह है बल्कि लोग जागरूक भी हैं।
1: जी, अगला सवाल इसी से जुड़ा मैं करना चाहूंगी कि कई सारे लोगों ने स्वगणना में भाग लिया, बाद में अगर उनको पता चलता है कि उन्होंने कुछ गलत जानकारी फीड कर दी है, तो उसको वो किस तरह से अपडेट कर सकते हैं? क्या उनके पास ऑप्शन है या फिर उनके आने वाले जो प्रगणक घर पे आएंगे वो ये सुविधा उनको दे सकते हैं?
0: देखिए, इनिशियली जब स्वगणना की अवधि थी उस समय वो स्वयं भी एडिट कर सकते थे, लेकिन चूंकि यह अवधि अब समाप्त हो चुकी है तो चिंता करने की बात नहीं है। जब प्रगणक आपके घर जाएंगे और आप उनको अपना SE ID उपलब्ध कराएंगे तो उसके आधार पर वो डेटा को सत्यापित करेंगे। तो डेटा सत्यापन के दौरान आपसे जब बात होगी तो आप उनको बता सकते हैं कि किसी प्रश्न का आपने गलत उत्तर दे दिया है, उसको संशोधित करना है, तो संशोधन प्रगणक कर देंगे।
1: वो प्रगणना की सुविधा दे देंगे, इसके
0: जी
1: लिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक दूसरा वर्ग वो है जिसने स्वगणना में भाग ही नहीं लिया है, तो क्या उसको घबराने की जरूरत है? क्या वो जनगणना से छूट जाएगा?
0: बिल्कुल नहीं। हमारे प्रगणक हर घर जाएंगे, हर घर को विजिट करेंगे, और अगर आपने स्वगणना कर ली है तो आपको SE ID उनको उपलब्ध कराना है, और अगर स्वगणना नहीं की है तो जो 33 प्रश्नों की अधिसूचित प्रश्नावली है उन प्रश्नों का उत्तर देकर प्रगणक को सहयोग करेंगे और आपके मकान का मकान सूचीकरण, उसकी गणना हो जाएगी।
1: जी, जैसा कि आपने पहले भी बताया कि अभी 2 मई से हमारे राज्य में, बिहार में, मकान सूचीकरण की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया में किस तरह के वो सवाल हैं, 33 सवाल, कुछ आप जिक्र करना चाहेंगी? कोई ऐसा दुविधाजनक सवाल आपकी जानकारी में आ रहा हो जिसको देने से नागरिक परहेज कर रहे हो, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे?
0: नहीं, मैं बताना चाहूंगी कि जो 33 प्रश्न हैं वो प्रश्न बिल्कुल मूलभूत प्रश्न हैं। पहले प्रकार के प्रश्न को हम ये कह सकते हैं कि वो मकान की संरचना से संबंधित है, जैसे यह मकान रहने योग्य है अथवा नहीं है, मकान के दीवार कच्ची ईंट के बने हैं, पक्की ईंट के बने हैं, पत्थर से बने हैं, मकान का फर्श जो है वो किस चीज का बना है, सीमेंटेड है, मिट्टी का है, टाइल्ड है, इस प्रकार के प्रश्न हैं। ये संरचना संबंधित प्रश्न हो गए। दूसरे प्रकार के प्रश्न जो हैं वो उस मकान के अंदर जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उसको लेकर है, जैसे पेयजल की सुविधा है अथवा नहीं, अगर है तो उसका स्रोत क्या है, शौचालय की सुविधा, बिजली की सुविधा आदि से संबंधित प्रश्न है। एक तीसरे प्रकार का प्रश्न है जो कि परिवार से संबंधित है, जो उस घर में रह रहे हैं, परिवार का मुखिया कौन है, कितने सदस्य हैं, दंपत्ति कितने रह रहे हैं इस परिवार में, क्या वे मोबाइल का उपयोग करते हैं या कंप्यूटर, लैपटॉप जैसी मूलभूत सुविधाएं उनके घर में है या नहीं, इस प्रकार के प्रश्न है। तो बिल्कुल मूलभूत प्रश्न है जिनका उत्तर देने में अब तक कहीं से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं है कि लोगों को कठिनाई हो रही है।
1: जी अगले सवाल की ओर बढ़ना चाहेंगे, वो भी जुड़ा हुआ है हाउस लिस्टिंग से ही।

0: हाउस लिस्टिंग के दौरान कुछ घरों में, कुछ परिवारों में ये उलझन देखने को आ रही है, क्योंकि कई लोग माइग्रेट करके दूसरे स्टेट्स में जा चुके हैं
1: जी
0: या फिर इसी स्टेट के किसी और शहर में जाकर के किसी और जिले में जाकर रह रहे हैं, रेंटेड हाउस में रह रहे हैं। तो उन लोगों को क्या अपने मूल निवास और किराए वाला मकान दोनों की गणना देनी होगी या फिर एक ही वैलिड मानी जाएगी?
1: देखिए, इसका नियम ये है कि आप सामान्य रूप से जहाँ निवास कर रहे हैं उसी मकान की जानकारी आपको दर्ज करवानी है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति शहर ए में रहता है और शहर बी में गया है, पढ़ाई के लिए गया हो, काम के लिए गया हो या किसी अन्य उद्देश्य से गया हो और आम तौर पर वही निवास कर रहा है, तो वो जहाँ निवास कर रहा है वह चाहे किराए का ही मकान क्यों ना हो, उसको उस मकान के विषय में मूलभूत जानकारियां उपलब्ध करानी है। अब वो मकान जहाँ जो उसका मूल आवास रहा है, उस मूल आवास में अगर कोई व्यक्ति आपके घर से रह रहे हैं तो वो प्रगणक को जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं, और अगर वह मकान खाली है तो प्रगणक वहां तो जाएंगे अवश्य ही और उस मकान को सूचीबद्ध भी करेंगे, लेकिन उसके सामने ये लिखा जाएगा कि यह मकान खाली है। लेकिन ये मकान सूचीकरण की या मकान गणना का जो कार्य है उससे यह छूटेगा नहीं।
0: जी, कोई भी मकान छूटेगा नहीं, चाहे वो खाली हो या फिर उसमें लोग निवास कर रहे हों,
1: बिल्कुल
0: सभी की आप गिनती
1: जी
0: करेंगे।
1: हाँ
0: अगले सवाल की ओर बढ़ना चाहेंगे हम रंजीता जी। जनगणना 2027 में प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को शामिल करने के लिए निदेशालय ने क्या कुछ खास तैयारियां की हैं? कितनी बड़ी टीम है जो पूरे प्रदेश के एक एक नागरिक को इसमें शामिल करने में लगी हुई है?
1: देखिए, यह तैयारी बहुस्तरीय है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की मशीनरी मिलकर काम करती है, क्योंकि जनगणना एक बहुत बड़ा सांख्यिकीय एक्सरसाइज है, तो समन्वय की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जैसे बिहार राज्य में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है, वो जनगणना हेतु उनके साथ हमें समन्वय करना होता है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी, चार्ज पदाधिकारी, सबके साथ समन्वय स्थापित करना होता है। हमारे निदेशालय के जो कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, वो जिलों में जाकर कैंप करते हैं, चार्ज में जाकर कैंप करते हैं, हैंड होल्डिंग का काम करते हैं, और इस प्रकार से एक बड़े स्तर पे समन्वय की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त चूंकि यह बहुत बड़ा प्रशासनिक कार्य है तो इसमें बड़ी संख्या में कर्मियों और अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है, और चूंकि इसमें आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है और आंकड़ों की सटीकता पर राष्ट्र की नीति का निर्माण निर्भर करता है, तो इसलिए जो कर्मी इसमें संलग्न है उनका प्रशिक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। तो प्रशिक्षण कई फेजेस में किए जाते हैं, तो प्रशिक्षण हम बहुत अच्छे तरीके से देते हैं ताकि आंकड़ों के संग्रहण में त्रुटि ना रहे। इसके अतिरिक्त अगर कहें तो कार्य की प्रगति, चूंकि यह टाइम सेंसिटिव काम है, एक समयबद्ध तरीके से इस काम को करना होता है, तो हम लोग इसका अनुश्रवण कई प्रकार से करते हैं। फिजिकल मीटिंग्स हो गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, उसके अलावा हमारे यहाँ सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल है, उस पोर्टल पर हम यहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं कि किस जिले में कार्य की प्रगति क्या है। इसके अलावा ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसके लिए शिकायत प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है और 1855 जो हमारा जनगणना का टोल फ्री नंबर है उस पर हम शिकायतें दर्ज करते हैं और उसका निदान करते हैं, और जन जागरूकता के लिए बड़े पैमाने पर जन जागरूकता के कार्यक्रम सभी जिलों में चलाए जा रहे हैं। तो एक प्रकार से ये एक स्तर पर इसकी तैयारी नहीं होती, कई स्तरों पर हम लोग पैरेलली काम करते हैं।
0: जी, कुछ स्थानों से रंजीता जी, जनगणना के नाम पर साइबर ठगी के भी मामले हमने खबरें सुनी है, समाचार इस तरह के सामने आए हैं। आप उन नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह के साइबर फ्रॉड से किस तरह से वो बचें?
1: मैं सबसे पहले यह बताना चाहूंगी कि कोई भी जनगणना कर्मी आपके घर आते हैं तो वो आपसे वित्तीय जानकारी या किसी प्रकार का दस्तावेज उसकी मांग नहीं करते, ना वो आपसे आधार कार्ड की मांग करते हैं, ना अकाउंट नंबर, बैंक के डिटेल्स, ओटीपी या किसी लिंक पर जाकर आपको क्लिक करने को नहीं कहते हैं। तो अगर कोई भी इस प्रकार का मैसेज आता है या कोई व्यक्ति आपको इसके लिए संपर्क करता है तो आपको सावधान हो जाने की आवश्यकता है, और साइबर हेल्पलाइन 1930 उस पर संपर्क कर सकते हैं, या जो हमारा टोल फ्री नंबर है 1855 उस पर संपर्क कर सकते हैं, नजदीकी थाने में इसकी सूचना दे सकते हैं या जिला प्रशासन स्थित शिकायत प्रकोष्ठ में इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो आपकी सतर्कता और आपकी जागरूकता यही साइबर ठगी से बचने का महत्वपूर्ण टूल हो सकता है।
0: जी, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच रहे हैं और यहाँ हम जानना चाहेंगे जनगणना का दूसरा चरण जो फरवरी में शुरू होने जा रहा है

0: उसके बारे में क्या कुछ तैयारियां हैं और उसमें क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि उसमें की जनगणना के साथ साथ इस बार कास्ट सेंसस का भी प्रावधान है, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे?
1: द्वितीय चरण हमारा फरवरी 2027 में होने वाला है, लेकिन इससे संबंधित जो प्रश्नावली है वो अभी भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित नहीं की गई है, परंतु आम तौर पर इस चरण में हम लोग जनसांख्यिकीय के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक जो आंकड़े होते हैं उसको एकत्रित करते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं, जैसे लिंग, आयु, भाषा, आर्थिक गतिविधियां, प्रवासन, इस प्रकार की जानकारियां हम लोग इसमें लेते हैं। इसकी तैयारी के संबंध में मैं वही कहूंगी कि इसकी तैयारी भी बहुस्तरीय तैयारी होती है। जिस प्रकार हम लोग प्रथम चरण की तैयारी करते हैं उसी प्रकार द्वितीय चरण की भी तैयारी होती है, और इसमें और भी ज्यादा समन्वय और प्रशिक्षण आदि की आवश्यकता होती है।
0: जी, इसकी शुरुआत का हमें टाइमलाइन पता है, बिकॉज ये फरवरी में शुरू हो रही है, ये कब तक चलेगी इसके बारे में कोई अंदाजा होगा?
1: जब अधिसूचित हो जाएंगे प्रश्नावली और तिथियां आ जाएंगी तो आपको जानकारी, सटीक जानकारी उपलब्ध करवाई
0: जी जी
1: जाएगी।
0: जी कार्यक्रम का आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी, एक तरह से एक संदेश होगा आपका कि आम नागरिक को, बिहार के नागरिक को जनगणना में भाग लेना क्यों जरूरी है?
1: देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि जनगणना के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का संकलन करते हैं, इन आंकड़ों को विश्लेषित करके प्रकाशित करवाते हैं, और इन आंकड़ों का प्रयोग सरकार जो है विकास और प्रगति की रणनीतियों को बनाने के लिए करती है। अगर आंकड़े सटीक नहीं होंगे तो रणनीतियां भी सटीक नहीं होंगी, इसलिए हम सबका दायित्व है कि हम इसमें भाग लें और सही जानकारी दें। और अगर देखा जाए तो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत आपको सही जानकारी देना आपका दायित्व भी है। तो मैं लोगों से अपील करूंगी कि जब हमारे प्रगणक आपके पास जाएं, उनके साथ सहयोग करें, सही जानकारी दें, सजग रहें और राष्ट्र निर्माण के इस कार्य में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।
0: जी, हमें भी उम्मीद है कि आम नागरिक जो है वो बढ़ चढ़ कर इस जनगणना में भागीदारी करेंगे, और ये जो जनगणना है वो अगर सटीक रहेगी तो वो जन कल्याण के मार्ग अवश्य खोलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीता जी, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुई और इतनी उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा की।
1: धन्यवाद सविता जी।

0: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 8:06 हो रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: श्रोताओं, फिल्म संगीत की शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म हमराज के इस गीत से। आवाज है उदित नारायण की, धुन बनाई है हिमेश रेशमिया ने, और लिरिक्स हैं, बोल हैं सुधाकर शर्मा के।
2: तो कयामत से पहले कयामत।

आकाशवाणी पटना पर आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। अगला गीत हमने लिया है सोनू निगम की आवाज में फिल्म संघर्ष से। संगीत दिया है जतिन ललित ने और लिखा है समीर ने।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में उदित नारायण और अलका याग्निक को सुन रहे थे आप फिल्म मृत्युदंड में। आकाशवाणी पटना पर आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में इस खूबसूरत प्यार भरे गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, अगला प्रसारण बस कुछ ही देर में।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: यह आकाशवाणी पटना है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं रूपा सिंह की आवाज में गजल, शायर हैं मोमिन।

आकाशवाणी पटना से कार्यक्रम सुगम संगीत में आप सुन रहे हैं रूपा सिंह से गजल। श्रोता लीजिए सुनिए इन्हीं की आवाज में एक और गजल। शायर हैं निदा फाजली।

निधा फाजली के बोल और रूपा सिंह की आवाज में इस गजल के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 8:45 हो रहे हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है।

0: ताम्रपत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए।

0: परमिश, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ए

एसएमएल के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा बागमारी को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: manufacturing in India. Delhi court sends prime suspect in NEAT paper leak case PV Kulkarni and co-accused Manisha Vaghmare to 10 days CBI custody. New Delhi rejects Indus Waters treaty award at the Court of Arbitration, calling it illegal. CBSE makes study of three languages compulsory for class 9th and 10th. And India Sanjana wins three bronze medals in the women's 77-kilogram category at the Asian Weightlifting Championships in Gandhinagar. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स भरोसेमंद और मुस्तकबिल के लिए तैयार सप्लाई निजाम कायम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वजीर आजम ने 21वीं सदी में भारत को मौकों की सरजमीन करार दिया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की कंपनी ASML ने भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर दस्तखत किए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस के बड़े मुलजिम पीवी कुलकर्णी और साथी मुलजिम मनीषा वाघमारे को 10 दिन के लिए सीबीआई तहवील में भेज दिया है। भारत ने दरिया सिंह से मुतालिक काबी मुआहदे पर सालिसी अदालत के फैसले को गैर कानूनी करार देकर उसे मुस्तरद कर दिया है। सीबीएसई ने 9वीं और 10वीं क्लास के लिए 3 जबानों की पढ़ाई को लाजमी बना दिया है और गांधीनगर में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में खवातीन के 77 किलोग्राम जुमरे में भारत की संजना ने कांसे के 3 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स कई तरह के बुहरान और कुदरती आफात के तनाजुर में आलमी चैलेंजों से निमटने की खातिर एक भरोसेमंद शफाफ और मुस्तकबिल के लिए तैयार सप्लाई निजाम के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जना मोदी ने 5 मुल्कों के अपने दौरे के तहत नीदरलैंड्स के शहर हेग में एक कम्युनिटी प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया मुख्तलिफ तरह के चैलेंजों का सामना करती रही है, जिसमें COVID-19 आलमी वबा, मौजूदा महाजराई और तवानाई का बुहरान शामिल हैं।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: वजीर आजम ने खबरदार किया कि इन चैलेंजों से अगर तेजी के साथ ना निमटा गया तो आलमी सतह पर तरक्की के जो फायदे हासिल हुए हैं वो हाथ से निकल जाएंगे और आबादी का बड़ा हिस्सा गुर्बत में चला जाएगा। इक्तसादी निजाम को मुस्तहकम बनाने के लिए आलमी कोशिशों को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत और नीदरलैंड्स मजबूत सप्लाई निजाम कायम करने पर मुश्तरक तौर पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। जना मोदी ने भारत के बढ़ते हुए आलमी रोल पर भी जोर दिया और मुल्क को 21वीं सदी में मौकों की सरजमीन करार दिया, जहां टेक्नोलॉजी और इंसानी अकदार दोनों को अहम मकाम हासिल है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के शाह विलियम अलेक्जेंडर और मलका मैक्सिमा से मुलाकात की। जना मोदी नीदरलैंड्स के वजीर आजम रॉब जेटन के साथ बाहमी बातचीत करने वाले हैं। उम्मीद है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस दौरे से भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान वसीतर ताल्लुकात उस्तवार होंगे। हाल ही में भारत और यूरोप के दरमियान आजाद तिजारत का समझौता भी हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान तैयार करने वाली कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक और नीदरलैंड्स सेमीकंडक्टर साजो सामान तैयार करने वाली अहम कंपनी

एएसएमएल ने भारत में चिप तैयार करने के सिलसिले में इश्तराक का ऐलान किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड्स के दौरे के दौरान इस माहदे का ऐलान किया गया। एएसएमएल लिथोग्राफी इक्विपमेंट के जुमरे में इजारादारी रखती है, जो छोटे साइज के जदीद सेमीकंडक्टर की तैयारी में अहमियत का हामिल है। ये इश्तराक भारत और नीदरलैंड्स के दरमियान कलीदी शराकतदारी को मुस्तहकम करने की समत एक अहम कदम है, जिसमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी समेत अहम टेक्नोलॉजी शामिल हैं। एएसएमएल के सदर और सीईओ क्रिस्टोफे फोके ने कहा कि भारत के तेजी से वसत पा रहे सेमीकंडक्टर के शोबे से कई अहम मौके नुमाया हो रहे हैं और वो खित्ते में तवील मुद्दती शराकतदारी कायम करने के लिए पुरअज़्म हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने गुजरात के दौरे के दौरान जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने सीनियर अहदेदारान के साथ अहमदाबाद और गांधीनगर में कई मीटिंगें कीं और शहरी बुनियादी ढांचे से मुतालिक प्रोजेक्टों और उनसे वाबस्ता कामकाज का जायजा लिया। जनूब मगरबी जोन के दफ्तर में जनाब शाह ने गांधीनगर लोकसभा हल्के की जानिब से अंजाम दिए जा रहे तरक्याती कामों और पौधे लगाने के काम का जायजा लिया। उन्होंने सरखेज गांधीनगर कॉरिडोर की जदीदकारी और घाट लोदिया, गोटा, चांद लोदिया, थलतीज समेत झीलों के इलाकों को एक दूसरे से मरबूत करने के सिलसिले में अहदेदारान के साथ तबादला ख्याल भी किया और इन कामों में तेजी लाने की हिदायत दी। जनाब शाह ने गांधीनगर लोकसभा हल्के से 9 मुंतखबा 70 म्यूनिसिपल काउंसिलों से भी मुलाकात की। महाराष्ट्र में आज पुलिस के सुप्रिंटेंडेंट एम नरेश ने कहा है कि ऑपरेशन अंतिम प्रहार के नाम से नक्सल मुखालिफ मुहिम के तहत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 दीगर के खुदसुपुर्दगी किए जाने के बाद गढ़चिरौली जिले से नक्सलियों का खात्मा हो गया है। मीडिया को तफसील बताते हुए जनाब नरेश ने कहा कि गिरफ्तार किए गए नक्सलियों पर मजमुई तौर पर 64 लाख रुपए का इनाम था। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने उनके पास से हथियारों समेत 65 लाख रुपए नकद भी जब्त किए। उन्होंने कहा कि डिविजनल कमेटियों के अरकान समेत 5 नक्सलियों ने गढ़चिरौली पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी की। उन पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। इस दौरान पुलिस सुप्रिंटेंडेंट ने वजाहत की कि हालांकि गढ़चिरौली से सरगर्म नक्सली खत्म हो गए हैं, लेकिन नक्सली सोच मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई है। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक केस में बायोलॉजी के सवालात लीक करने से वाबस्ता एक सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। मनीषा गुरुनाथ मंधारे नाम की यह मुलजिम महाराष्ट्र में पुणे की एक सीनियर बॉटनी टीचर है। सीबीआई के मुताबिक वो नीट यूजी 2026 के इम्तिहान के अमल में शामिल थी और इम्तिहानात के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने उसे एक माहिर के तौर पर मुकर्रर किया था। सीबीआई ने कहा है कि उसने पुणे की मनीषा वाघमारी के जरिए नीट इम्तिहान के मुमकिना उम्मीदवारों को यकजा किया था और पुणे की अपनी रिहायशगाह पर इन तलबा के लिए खसूसी कोचिंग क्लासेस का एहतमाम किया था। उसे इस महीने की 14 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। अब तक इस केस के सिलसिले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहल्यानगर से 9 मुलजिमों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 5 मुलजिमों को अदालत में पेश किया गया और तफसीली पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस तहवील और रिमांड पर भेज दिया गया। जिन दीगर 2 मुलजिमों को कल गिरफ्तार किया गया था, उन्हें भी पुणे की अदालत में पेश किया गया और राहदारी रिमांड हासिल करके उन्हें दिल्ली ले जाया गया है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सीबीआई ने मुल्क में 6 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई भी की है। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस में मुबैना बड़े मुलजिम पीवी कुलकर्णी और एक और मुलजिम मनीषा वाघमारे को 10 दिन के लिए सीबीआई की तहवील में भेज दिया है। खसूसी सीबीआई जज अजय गुप्ता ने इन दोनों को सीबीआई की तहवील में दे दिया है। इससे कबल जांच एजेंसी ने यह दलील पेश की थी कि मजीद छानबीन और वसीतर साजिश का पता लगाने के लिए इन दोनों को कौमी राजधानी से बाहर ले जाने की जरूरत है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई ने इस साल 1 जुलाई से 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के लिए 3 जबानों के पढ़ने को लाजमी करार दे दिया है। बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 और स्कूली तालीम 2023 से मुतालिक निसाब के कौमी तरीक़ेकार से मुताबकत रखते हुए 3 में से कम अज़ कम 2 मकामी जबानें होनी चाहिए। सीबीएसई ने वजाहत की है कि 10वीं जमात में तीसरी जबान के लिए कोई बोर्ड इम्तिहान नहीं होगा और उसने मजीद कहा कि R3 के लिए सभी जायजे का अमल मुकम्मल तौर पर स्कूल पर मबनी और दाखिली होगा।
बोर्ड ने कहा कि R3 में तलबा की कारकर्दगी CBSE सर्टिफिकेट में मजकूर होगी। CBSE ने यह भी इत्तला दी कि R3

0: की वजह से किसी भी तालिबे इल्म को 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान देने से रोका नहीं जाएगा। स्कूली तालीम और खानदगी महकमे ने मुल्क में बीच ही में बच्चों के पढ़ाई छोड़ने या स्कूल न जाने के मामले पर तबादला ख्याल के लिए आज एक मीटिंग तलब की, जिसमें खासतौर पर 14 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र के बच्चों के ताल्लुक से इस तरह के रुझान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS की मुजवजा नई पहल के लिए अमल दरामद से मुतालिक हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। स्कूली तालीम और खानदगी महकमे के सेक्रेटरी संजय कुमार की सदारत में ये मीटिंग हुई। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: स्कूली तालीम और खानदगी की महकमे के सेक्रेटरी संजय कुमार ने मीटिंग के दौरान बताया कि दस्तियाब आदद शुमार के मुताबिक पहली क्लास में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से सिर्फ 62 12वीं क्लास तक पहुंचते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 14 से लेकर 18 साल तक की उम्र के 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे सरे 10 स्कूल नहीं जा रहे हैं। सेक्रेटरी मौसूफ ने कहा कि इक्तसादी मुश्किलात, घरेलू जिम्मेदारियां और रोजी रोटी से मुतालिक चैलेंज उन बड़ी वजूहात में शामिल हैं जिनकी वजह से बच्चों को तालीमी निजाम बीच में ही छोड़कर अलग होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि असल तवज्जो बच्चों को बाजाब्ता स्कूलिंग में फिर शामिल करने पर होनी चाहिए और जो रेगुलर स्कूल वापस नहीं आ सकते उनके लिए सीखने के मुतबादिल होने चाहिए जिनमें NIOS और स्टेट ओपन स्कूल शामिल हैं। फौरी इकदामात की जरूरत पर जोर देते हुए जनाब कुमार ने कहा कि कम से कम सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सतह तक हर बच्चे को तालीम तक रसाई होनी चाहिए जो मकामी इक्तसादी मौके के मुताबिक रोजगार मिलने के हुनर से हम आहंग हो। नई दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: भारत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे के तहत गैर कानूनी तौर पर तश्कील दी गई सालिसी की अदालत की जानिब से दिए गए ताजा फैसले को मुस्तरद कर दिया है और इसे बिला जवाब करार दिया है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि नाम निहाद सालिसी अदालत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे की उमूमी तशरीह के मामला पर फैसला सुनाया था और साथ ही उन्होंने ये बात दोहराई कि भारत मजकूरा सालिसी अदारे को कानूनी एतबार से दुरुस्त तस्लीम नहीं करता। वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे को मअतली की हालत में रखने के भारत के फैसले में कोई तब्दीली नहीं आई है। भारत और पाकिस्तान ने सितंबर 1960 में दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे पर दस्तखत किए थे जो दरियाए सिंध के पानी में हिस्सेदारी और इसके इस्तेमाल से मुतालिक था। पिछले साल पहलगाम में दहशतगर्दों के हमले के बाद भारत ने मजकूरा मुआहदे को मअतली की हालत में रखने का फैसला किया था और ये कहा था कि ये कदम बैनुल अक्वामी कानून के तहत उसके इक्तदार आला के हकूक के ऐन मुताबिक है और ऐसा उस वक्त तक नाफिज रहेगा जब तक कि पाकिस्तान सरहद पार से फैलाई जाने वाली दहशतगर्दी के लिए मदद व एआनत बंद नहीं कर देता। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कल के लिए अंडमान और निकोबार जजायर जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और शिमाल मशरक के हिस्सों में भी कल इसी तरह का मौसम रहेगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अगले हफ्ते पेचिंग के अपने 2 दिन के दौरे में चीन के रहनुमा शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। एक बयान में क्रेमलिन ने कहा है कि सदर पुतिन इस महीने के 19 और 20 तारीख को यह दौरा करेंगे और ये चीन और रूस के दरमियान 2001 के दोस्ती के मुआहदे के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर हो रहा है। इसराइल का कहना है कि उसने हमास के मिलिट्री विंग के लीडर इज़ुद्दीन अल हद्दाद को हलाक कर दिया है जिसका 7 अक्टूबर 2023 के हमलों में अहम रोल था जिसके बाद गजा में जंग शुरू हो गई थी। इसराइली फौज ने बताया कि अल हद्दाद कल गजा शहर में एक फिजाई हमले में मारा गया। फौज ने बताया कि वह हमास की मिलिट्री क्यादत में आखिरी सीनियर कमांडर था जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास की जानिब से किए जाने वाले हमलों में कलीदी रोल अदा किया था। गांधीनगर में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की संजना ने खवातीन के 77 किलोग्राम के जुमरे में कांसे के 3 तमगे जीते। संजना ने स्नैच जुमरे में 96 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क जुमरे में 124 किलोग्राम का वजन उठाया और मजमूई तौर पर 220 किलोग्राम का वजन उठाकर कांसे के 3 तमगे हासिल किए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज बैंकॉक में मलेशिया के गो सी जिफई और नूर इजुद्दीन को सेमीफाइनल में 19-21, 22-20 और 21-16 से हराकर मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। कल फाइनल में भारतीय जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया की जोड़ी से होगा। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स भरोसेमंद और मुस्तकबिल के लिए तैयार सप्लाई निज़ाम कायम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

0: वजीर आजम ने 21वीं सदी में भारत को मौकों की सरजमीन करार दिया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की कंपनी ASML ने भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर दस्तखत किए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस के बड़े मुलजिम पीबी कुलकर्णी और साथी मुलजिम मनीषा वाघमारे को 10 दिन के लिए सीबीआई तहवील में भेज दिया है। भारत ने दरिया सिंध से मुतालिक आबी मुहदे पर सालिसी अदालत के फैसले को गैर कानूनी करार देकर इसे मुस्तरद कर दिया है। और गांधीनगर में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में खवातीन के 77 किलोग्राम जुमरे में भारत की संजना ने कांसे के 3 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
2: साउंड कैमरा एक्शन।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है,
1: मेरे पास माँ है,
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ।
2: जिंदगी कैसी है पहेली,
0: और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को।
3: तारंगा तेरी याद में।
0: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है। कभी वो ताजा तरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। क्योंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आप्टे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ठ पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जी.डी. माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकुड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सेनन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाई चाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1921

1951 एमवी रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म एवी मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं, तो अब यहाँ जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म एस एम श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: खबर है।
1: सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिलेक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल और आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था।
2: दिल एक मंदिर है।
1: इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी। फिल्म दो कलिया एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
3: चल चल चल मेरे साथी ओ मेरे हाथी।
1: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक थी। दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जे ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रीमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन ने बनाया था।

0: चूंकि जिक्र के एस सेतु माधवन का चला है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था जूली।
1: जूली, आई लव यू।
0: सन 1970 में आई फिल्म द ट्रेन, 1967 में आई मलयालम फिल्म कूचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजु का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता के अभिनय वाली फिल्म फर्क
2: मस्त बहा।

फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नाकाईच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है एक दूजे के लिए।

सन 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें

लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगा गारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राज खोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला

0: शिवानंद, मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
0: सन 1966, निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी रीमेक थी।

0: क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया। बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाय का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कही।
1: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी, और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं, और आगे बहुत सी जनरेशन में इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है।
2: मेरे पास माँ है।
0: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटणीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की माँ का सशक्त किरदार।
3: तू न रोना के तू है

मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही है। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर दुख

पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपने बेटे से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा रहमान का किरदार।

0: पर माँ के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में माँ यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाने आजादी पे उनकी मोहर चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती है जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हें मुझे छोड़ के जा रहे हो?
2: विजय, बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके।
0: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है।
4: सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो।
0: फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है। एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है। नए सिरे से अपनी

नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक।

0: 90 के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है। वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो माँ को समर्पित हैं। फिल्म तारे जमी पर।
1: मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ।
0: फिल्म ABCD 2।

0: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार।
1: मेरे पास माँ है।
0: ये था लघु रूपक मेरे पास माँ है, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन।

0: संगीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए।
0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये गाना।

0: मुकेश ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश।
1: दरअसल आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
2: हाँ, कुछ होगा, अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं। क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो LB लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नयन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: ओहो,
2: और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों, कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था, जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नयन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नयन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पे जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था, जो योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना, ऐसा करके बोलता। मैंने मेरे हाथ में किधर है
1: जी।
2: तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी।

0: मुझे खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ। और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और मैंने उन्होंने ट्यून मुझे दी, और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा, और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: और मैं चला जा रहा हूँ, और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना, मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा, मैंने दादा आप कल की बात कर रहे थे मुखड़ा आप देख लो दादा ये कैसा है क्या है, कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन दिन, इतना बड़ा मुखड़ा। मुझे पता नहीं कैसे क्यों कैसे याद हो जाता था दादा के साथ, मालूम नहीं।

0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग स्मृति शेष। एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा, इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे।
1: सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन।
0: आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम हैं मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया।

0: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। पंडित कैवल्य कुमार गुरव सुप्रसिद्ध संगीत तज्ञ पंडित संगमेश्वर गुरव के सुपुत्र हैं। उन्होंने अपने संगीत की शुरुआत 15 वर्ष की आयु में मराठी नाट्य संगीत से किया। इसके उपरांत उन्होंने ख्याल गायकी के ओर रुख किया और अपने पिता एवं गुरु पंडित संगमेश्वर गुरु के मार्गदर्शन तथा वर्षों की कठिन एवं निरंतर साधना के माध्यम से किराना घराने की परंपरा को आत्मसात किया। उनकी संगीत साधना केवल एक घराने तक सीमित नहीं रही, उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा कर विभिन्न घरानों की शैली, तकनीक और भावधारा का गहन अध्ययन किया तथा उसे अपने गायन में सफलतापूर्वक समाहित किया। उनकी इसी विशिष्ट साधना के परिणाम स्वरूप उन्हें 32 वर्ष की आयु में भारत सरकार द्वारा टॉप ग्रेड कलाकार का सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बीकॉम, संगीत में बीए तथा कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड से संगीत में एमए स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त किया है और आपको कर्नाटक सरकार का राज्य पुरस्कार, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी राष्ट्रीय सम्मान ऐसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप देश और विदेश में कई प्रमुख मंचों पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित कैवल्य कुमार गुरव। पंडित कैवल्य कुमार गुरव इज अ रिनाउंड म्यूजिशियन एंड डिसाइपल ऑफ पंडित संगमेश्वर गुरव। ही स्टार्टेड हिज म्यूजिकल जर्नी एट द एज ऑफ 15 विद मराठी नाट्य संगीत। After that, he turned towards khayal singing and through the guidance of his father and guru, Pandit Sangameshwar Gurav, absorbed the traditions of Kirana Gharana through rigorous practice and dedication. His musical practice was not limited to just one gharana. He travelled across India, deeply studying the styles, techniques and emotional expressions of various gharanas and successfully incorporated them into his singing. As a result of this exceptional dedication, he was honored with the title of Top Grade Artist by the Government of India at the age of just 32. Pandit Kaivalya Kumar Gurav has performed his music not only across India but also in many countries around the world. He has been awarded an honorary doctorate by Sorbonne University, Paris of France. Dr. Kaivalya Kumar Gurav has been honored with more than 200 awards worldwide.
0: आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर पंडित जडेश होगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे हैं। पंडित कैवल्य कुमार गुरव अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग दुर्गा से कर रहे हैं। इसमें तीन रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल, रस कानारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पिया से। उसके बाद द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर। आइए सुनते हैं राग दुर्गा।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय पंडित जडेश हुगार एंड ऑन द हारमोनियम बाय डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी। पंडित कैवल्य कुमार गुरव बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विथ राग दुर्गा, रूपक ताल, रस कान्हारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पिया से, द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग दुर्गा। पंडित कैवल्य कुमार गौरव जी अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग आभोगी। इसमें दो रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।
1: दैट वॉज राग दुर्गा। नाउ यू विल लिसन टू राग अभोगी। रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित जडेश हुगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया गया।
1: That was Raag Abhogi. With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to a vocal recital by Pandit Kaivalya Kumar Gurav. He was accompanied on the tabla by Pandit Jadesh Hugar and on the harmonium by Dr. Sudhamshu Kulkarni. This program was recorded earlier in the studios of Akashwani Dharwad and relayed from Akashwani Delhi.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और

0: भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि ये सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। विशेष CBI न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को CBI हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता CBI की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान CBI ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। CBI ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथा कथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथा कथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build